FM बैंड 103.7 MHz पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 13 सितंबर 2026। इस समय पूर्वाह्न के 8:55 होने को हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। श्रोताओं, लीजिए सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

आज सुबह 9:10 से आप सुन सकेंगी दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस गान और 9:20 से कार्यक्रम वंदना। आज सुबह 9:40 से आप सुन सकेंगे झलकी शादी का इश्तिहार।

ठीक 10 बजे से हम आपको सुनवाएंगे गाने पुराने ज़माने के, और 10:30 से गाने नए तराने नए।

शाम 4:30 बजे से आप सुन सकेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी। तत्पश्चात शाम 5 बजे से आप सुन सकेंगे युववाणी कार्यक्रम और 5:30 बजे से बालवाड़ी कार्यक्रम।

FM बैंड 103.7 MHz पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली, घोषणा पत्र 2026 जारी। सभी देशों ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का संकल्प दोहराया। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के तहत सभी 309 निकायों के लिए वोटों की गिनती कल की जाएगी। लोक देवता बाबा रामदेव की जयंती आज। जैसलमेर के रामदेवरा में ध्वजारोहण के साथ मेले की विधिवत शुरुआत हुई और सक्रिय मॉनसून के असर से कुछ पश्चिमी जिलों को छोड़कर आज प्रदेश भर में बारिश का येलो अलर्ट। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में चल रहे 18वें ब्रिक्स सम्मेलन का दूसरा और अंतिम दिन आज है। सम्मेलन में कल पहले दिन ब्रिक्स देशों के समर्थन से नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 जारी किया गया। ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी इस दौरान कड़ी निंदा की गई और आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों से निपटने के अपने संकल्प को फिर से दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत कार्य प्रणाली में सुधार से करनी होगी।
1: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए

0: आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि मतगणना शांतिपूर्ण और समयबद्ध तरीके से कराने के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने बताया कि गणेश चतुर्थी के पर्व को देखते हुए मतगणना की व्यवस्थाओं में आंशिक बदलाव किया गया है। जयपुर नगर निगम की मतगणना भवानी निकेतन कॉलेज में होगी, जबकि जिले के अन्य 18 निकायों में संबंधित निकाय मुख्यालय पर बनाए गए स्ट्रांग रूम में मतगणना होगी। वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मतगणना के दिन विजय जुलूस निकालने पर रोक रहेगी। हालांकि प्रत्याशी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद अपने घर पर समर्थकों के साथ जश्न मना सकेंगे। आयोग के अनुसार भड़काऊ नारों और माहौल खराब होने की आशंका को देखते हुए विजय जुलूस पर रोक लगाई गई है। जैसलमेर के पोखरण रेंज में भारतीय वायुसेना कल से ड्रोनाथॉन 2026 आयोजित करेगी। 3 दिन के इस ड्रोनाथॉन में भारतीय उद्योग जगत की कंपनियां स्वदेशी ड्रोन और ड्रोन रोधी तकनीकों का विकास, परीक्षण और प्रदर्शन करेंगी। इस आयोजन का उद्देश्य घरेलू निर्माताओं को मानव रहित हवाई प्रणालियों और ड्रोन रोधी प्रणालियों में अपनी क्षमताओं और तकनीकी प्रगति को प्रदर्शित करने का अवसर देना है। ड्रोनाथॉन के जरिए मौजूदा जरूरतों के अनुरूप तकनीकी समाधान तलाशने और उनकी युद्धक प्रभावशीलता का आकलन करने में मदद मिलेगी। आयोजन को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, YouTube चैनल राजस्थान AIR न्यूज और Facebook AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। जैसलमेर के रामदेवरा में आज लोक देवता बाबा रामदेव मेले की विधिवत शुरुआत हुई। भादवा शुक्ल द्वितीया पर बाबा रामदेव की जन्म जयंती के अवसर पर भरने वाले इस मेले का आगाज आज सुबह पंचामृत अभिषेक और शिखर पर ध्वजारोहण के साथ हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया कि देश भर में प्रसिद्ध इस मेले में राजस्थान के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु बाबा रामसा पीर के जयकारों के साथ पहुंच रहे हैं।
1: मेले में देश भर से आए श्रद्धालुओं को देखते हुए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं मेला प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा एवं सुगम दर्शन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की गई है। कानून एवं शांति व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। चिकित्सा, पेयजल, विद्युत, सफाई, यातायात, पार्किंग एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। मेले की प्रत्येक गतिविधि पर प्रभावी निगरानी के लिए क्लोज सर्किट कैमरे लगाए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विद्युत विभाग द्वारा मेले में 24 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नए ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
0: बाबा रामदेव के प्राकट्य दिवस पर जोधपुर के मसूरिया स्थित गुरुवाली नाथ जी की समाधि पर भी मेला भर रहा है। बाड़मेर, पाली, भीलवाड़ा सहित सभी जिलों में बाबा रामदेव जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं के उमड़ते सैलाब को देखते हुए कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। गणेश चतुर्थी का पर्व कल देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। राजधानी जयपुर स्थित मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पर्व को देखते हुए प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं। यातायात पुलिस ने शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया है। श्रद्धालुओं को जाम से राहत और पार्किंग की जानकारी देने के लिए पहली बार विशेष QR कोड जारी किया गया है। इसे स्कैन कर नजदीकी पार्किंग, यातायात डायवर्जन और लाइव ट्रैफिक की जानकारी जा सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये पवित्र ग्रंथ सदियों से मानवता को निस्वार्थ सेवा, मानवीय गरिमा और एकजुटता का मार्ग दिखाता आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये पावन अवसर लोगों को इन मूल्यों को मजबूत बनाने और अधिक करुणामय तथा सौहार्दपूर्ण विश्व के निर्माण में प्रेरित करेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी प्रदेशवासियों से सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव जी के गुरु गद्दी दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। और अब मौसम। प्रदेश में मॉनसून सक्रिय रहने से कल राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में बारिश हुई। अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, कोटा, दौसा और माउंट आबू में हल्की बरसात दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान जताया है। आज कुछ पश्चिमी जिलों को छोड़कर समूचे प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट है। उदयपुर

0: भाग और आसपास के जिलों में कहीं कहीं मध्यम से भारी बरसात का अनुमान है। इस दौरान राज्य के शेष हिस्सों में भी कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र से राज्य में बारिश का नया दौर शुरू हो गया है। इसका असर 16 सितंबर तक बने रहने की संभावना है। पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों यानी जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में हल्की से मध्यम बरसात होने के आसार हैं। उदयपुर संभाग और आसपास के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश का पूर्वानुमान है। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार दुबई में रात 8 बजे से खेला जाएगा। भारत ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराया था। 7 बार का चैंपियन भारत ग्रुप ए में अपने सभी मैच जीतकर शीर्ष पर रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 जारी। सभी देशों ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का संकल्प दोहराया। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के तहत सभी 309 निकायों के लिए वोटों की गिनती कल की जाएगी। लोक देवता बाबा रामदेव की जयंती आज। जैसलमेर के रामदेवरा में ध्वजारोहण के साथ मेले की विधिवत शुरुआत हुई। और सक्रिय मानसून के असर से कुछ पश्चिमी जिलों को छोड़कर आज प्रदेश भर में बारिश का येलो अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM बैंड 103.7 MHz पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। अब आप सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस गान।

भरत के आचरण तथा विचारों से मुनि वशिष्ठ अत्यंत प्रभावित थे। उनकी अंतरात्मा को भरत बहुत भले लगे थे। अतः चित्रकूट की सभा में एक बार फिर वशिष्ठ जी ने श्री राम से भरत की विनती सुन लेने और उसके बाद साधुमत, लोकमत, राजनीति तथा शास्त्रों की व्यवस्था के अनुसार कार्य करने का परामर्श दिया। भरत धर्म धुरंधर तथा तन मन और कर्म से राम को समर्पित थे। श्री राम को ये ज्ञान था, इसलिए उन्होंने मुनि की सौगंध तथा मृत पिता के चरणों की दुहाई देते हुए कहा, विश्व में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। छोटे भाई के मुंह पर उसकी बड़ाई करते राम को संकोच होता है, किंतु उन्होंने स्वीकार किया कि भरत जो कहें वही करने में भलाई है। तब वशिष्ठ जी ने भरत को संकोच त्याग कर अपने हृदय की बात कहने का आदेश दिया, किंतु गुरुजन को अपने अनुकूल पाकर भी भरत जी सहसा कुछ न कह सके और सोच में पड़ गए। बचपन से उन्होंने श्रीराम के प्रेम की रीति देखी है, उनसे उन्हें इतना दुलार मिला जो कदाचित विधाता को सहन नहीं हुआ और उसने माता को माध्यम बनाकर स्वामी और सेवक के बीच अंतर डाल दिया।

अभी आप सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस गान एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम वंदना।

भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो। प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदना FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे झलकी, शादी का इश्तिहार।

0: एक अमीर घराने में शादी बजरिए खतो किताबत तय होती है। दूल्हा मियां मंगेतर को देखने के लिए इश्तिहार में दिए हुए पते पर तशरीफ लाते हैं और गलती से अपनी ससुराल के घर की बजाय उसके पड़ोस में पहुंच जाते हैं।
1: ये मेरी शहजादी का घर है, लेकिन लेकिन वो तो सामने कहीं दिखाई नहीं दे रही। हाँ, बरामदे में वो एक औरत है, गालिबन उसकी माँ होगी, यानी कि मेरी होने वाली सास। उसका चेहरा खूबसूरत है और इस बात का सबूत है कि मेरी शहजादी खूबसूरत होगी। मेरी ये सास काफी बाइज्जत औरत जान पड़ती है, मैं इसे नहायत अदब से कहूंगा, अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम। वो कहेंगी, जीते रहो मेरी बेटी के सुहाग। नहीं नहीं, इस तरह से तो उसे पता चल जाएगा कि मैं अपनी शहजादी के लिए बहुत बेताब हूं। तो फिर मैं एक मजिस्ट्रेट की तरह रौबदार चेहरा बनाकर अपनी होने वाली सास के पास जाता हूं। आदाब अर्ज है मोहतरमा।
2: आप कौन हैं?
1: मैं वो जिसकी आप मंतजर रही। मुझे मकान का बहुत देर से पता चला, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे आखिरकार पता चल ही गया।
2: जी हाँ, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। बस पता तो मैंने साफ दिया था,
1: लेकिन वो मुझे याद ही नहीं रहा था। कोई एक मुसीबत है? खैर, मैं आधा वर्ष करता हूँ, मैं आधा वर्ष करना तो भूल ही गया था।
2: कोई बात नहीं, आखिर इतनी तकल्लुफ की जरूरत भी क्या थी?
1: जरूरत क्यों नहीं मोहतरमा, फौरन दूसरा ये ख्याल कर लेता है कि मुझे आधा वर्ष किया ही नहीं। अगर मुझे नहीं तो फिर किसको करना है? हालांकि मुझे मालूम था कि आपके यहाँ तकल्लुफ की इतनी जरूरत नहीं होगी।
2: आपको बहुत तकलीफ हुई। खैर, पहले मुझे ये बताइए कि आप कुछ पिएंगे?
1: मैं पीऊंगा।

0: वो मैंने कभी कुछ नहीं पिया, सिर्फ पानी पीता हूं, और शराब तो मैंने कभी कभी कभी भी नहीं छुई, कभी पी नहीं।
1: ओ, शराब? तो इसका मतलब है कि आप शराब ही पी सकते हैं। खैर ठहरिए, मैं अभी पानी लाती हूँ।
0: ओफो, बाकी की सारी बातें तो मैं भूल ही गया, और फिर वही लुकनत। ठीक है, अब मैं अपनी जबान को पकड़ कर बातें करूंगा, लेकिन लेकिन ये लोग काफी अमीर दिखाई देते हैं, मुझे होश आवाज साथ कर बात करनी चाहिए। हमारी बातें सुनकर शहजादी जनानी से चली आएगी, अटखेलियां करती हुई सर्दी के मौसम के बादल की तरह आहिस्ता आहिस्ता। वो यकीनन पर्दा की इतनी कायल नहीं होगी, आजाद लड़की होगी, आजाद। आहा, आहा, ससुराल में इंसान की कितनी इज्जत होती है। अम्मी जान पूछती हैं क्या पियोगे, वरना कौन पूछता है आजकल।
1: लीजिए पानी पी लीजिए। तो अच्छा ये बताइए कि मैं आपको कितने रुपए दूं?
0: रुपए? क्या आप मुझे रुपए पैसे का बंदा समझती हैं? वो मोहतरमा, मेरे पास खुदा का दिया हुआ सब कुछ है। जी हाँ,
1: ताज्जुब है, अगर आप रुपए नहीं लेते तो खाते कहाँ से हैं?
0: खाता कहाँ से हूँ मोहतरमा? देखिए, हमारी अचार की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है।
1: अचार की भी फैक्ट्रियां होती हैं क्या? मुझे नहीं मालूम था।
0: कोई बात नहीं मोहतरमा, कोई बात नहीं, फिर भी रुपए पैसे की कतई जरूरत नहीं है।
1: शायद आप तकल्लुफ से काम ले रहे हैं, ये लीजिए रुपए। और आप तो
0: नहीं मोहतरमा, मैं इन रुपयों के हाथ नहीं लगाऊंगा। मैंने अर्ज किया ना कि दरअसल मैं इन रस्मों का कायल नहीं हूँ।
1: क्या कह रहे हैं आप, रस्मों का कायल नहीं हूँ? अच्छा अच्छा, शायद ये रुपए थोड़े हैं।
0: जी ये बात नहीं है, दरअसल मैं इन रस्म रिवाज का कायल नहीं हूँ, और फिर आपको तकल्लुफ भी नहीं करना चाहिए। सच पूछो मोहतरमा, तो मैं तो दहेज तक नहीं चाहता।
1: दहेज?
0: जी
1: क्या मतलब है आपका? खैर आप चाहें दहेज ना ले, ये आपकी मर्जी, ये पैसे तो आपको जरूर लेने पड़ेंगे।
0: नहीं नहीं मातृमा नहीं, देखिए मैं सख्त शर्मिंदा हो रहा हूँ, मुझ पर घड़ों पानी पड़ रहा है, और मैं जमीन में गड़ा जा रहा हूँ मातृमा। अगर आप इसरार करेंगी तो मैं रो दूंगा। मैं कहता हूँ कि मैं दहेज वहेज का ख्याल नहीं हूँ।
1: खूब, फिर तो आपसे बहुत से लोग खुश होंगे, खासकर आपके ससुराल वाले जिनके यहाँ आपका रिश्ता तय।
0: जी जी जी हाँ, नहीं जी नहीं, मेरा मतलब है कि वो मेरे लब सूख रहे हैं, मुझे पानी का एक गिलास ला दीजिए।
1: फिर पानी चाहिए
0: जी?
1: अच्छी बात है, अभी लाइए।
0: अच्छा वो

0: कसम वो गा रही है, मेरी शहजादी मेरी दुल्हन क्या गाती है, मजा आ गया। उसे मेरी मौजूदगी का एहसास है, उसे क्या मालूम कि उसके दुख दर्द का मदावा आ पहुंचा है और बहुत जल्दी उसकी खिसके गले से बाहर मिलना चाहती है। ओफो, मैं अम्मी जान के सामने हरफे मतलब की बात कहना तो भूल ही गया। अब कहूंगा, अब जरूर कहूंगा। ठीक है,
1: ये लीजिए पानी। हाँ, आप खुश कैसे हो रहे हैं?
0: ठहरिए ठहरिए मातरी माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, यानी कि मैं आपका बहुत ही फर्जंदी हूँ और आपने मुझे ममनूनी में ले लिया। नहीं नहीं, मैं कुछ गलत कह गया, मैं आपका ममनूनी हूँ कि आपने
1: ये आप क्या कह रहे हैं, मैं कुछ समझी नहीं।
0: बस जो कुछ मैंने कहा ना उसका उल्टा समझ लीजिए, बस समझ गई ना आप। और हालांकि आप हरगिज इज्जत के काबिल नहीं है। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि हालांकि पैदा हो जाती है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये कोई पैदाइशी नुक्स नहीं है। मेरा मतलब था कि मैं हरगिज इस इज्जत के काबिल नहीं हूँ, बिल्कुल अहमक हूँ, लेकिन हूँ आपकी ममनूनी के काबिल और फर्जंदी।
1: माफ कीजिए, मैं आपकी बहुत सी बातें समझ नहीं सकी।
0: अभी मुझे याद कर लेने दीजिए। हालांकि मैं इस इज्जत के काबिल नहीं हूँ, लेकिन आप चूंकि मैंने खिदमत आपके सुपुर्द की है तो मैं उसे निहायत खुश असलूबी से सर अंजाम दूंगा और उसे अपनी ऐन वो क्या लफ्ज होता है, फरमा बरदारी, हाँ ठीक है, फरमा बरदारी के लिए सआदत मंदी समझूंगा।
1: ये मामला टेढ़ा सा है, आप तो बस मुझे
0: तो फसक हो जाएगा, ये मेरी मौत होगी।
1: मौत? हाँ? हाय अल्लाह, ये क्या कह रहे हैं आप? बात ऐसी है कि वो दरअसल बहुत बीमार है।
0: क्या वो बहुत बीमार है? हाय, वो मर गई तो मैं यकीनन मैं भी मर जाऊंगा।
1: हाय, आप क्या मर जाएंगे?
0: मैं तकल्लुक का कायल नहीं हूँ मौतरी माँ, दरअसल मुझे उससे बहुत मोहब्बत है।
1: है? मोहब्बत है?
0: जी हाँ, मोहब्बत बिन देखे भी हो सकती है।
1: बिन देखे खाक आराम आएगा? परसों से उसने कुछ नहीं खाया, मुश्किल से चार सिर खाया होगा, उसे भूख भी नहीं लगती।
0: क्या भूख भी नहीं लगती और बिना भूख के चार शेर खा जाती है?
1: खा जाती है? अरे क्या मतलब, आपके यहाँ इज्जत और इफ्तिखार के बहुत से अल्फाज हैं क्या?
0: हाँ, मुझे इज्जत करनी ही चाहिए। और मैं पूछता हूँ, जब भूख लगती है तो और कितना खा जाती होगी?
1: जाती होगी, मेरा अंदाज है कि डेढ़ मन के करीब खा जाती होगी।
0: हाँ?
1: और फिर भी भूखी की भूखी।
0: मोहतरे माँ, क्या आप मुझसे मजाक कर रही हैं?
1: उल्टा मुझे मालूम होता है कि आप मेरी हंसी उड़ा रहे हैं।
0: हाँ? वो उनकी प्यास भी बहुत होगी।
1: उनकी प्यास? समझ लीजिए कि तीन चार मटके पानी पी ही जाती है।
0: तीन चार मटके? बड़ी अजीब लड़की है।
1: हैं? लड़की? खैर, आपके यहाँ लड़की कहते होंगे।
0: हैं? तो आपके यहाँ क्या कहते हैं?
1: मियाँ, वही एक ही नाम है।
0: तो फिर वो बहुत मोटी होगी।
1: मोटी होगी? खैर हाँ, बहुत मोटी है।
0: माफ कीजिए, आपने तो मुझे बहुत पतली बताया था।
1: मैंने कभी आपको इस गलत फहमी में मुब्तला नहीं किया। अब फिर क्या आप सिर्फ दुबली पतली को ही देखते हैं?
0: जी नहीं जी नहीं, मैं देखने को तैयार हूँ, लेकिन लेकिन वो शर्माएगी। दरअसल मुझे खुद शर्मा जाती है।
1: शर्मा जाओगे?
0: आप जरा उन्हें इस कमरे में ले आइए।
1: हाय अल्लाह, इस कमरे में ले आऊं? माफ कीजिए, आप भी कुछ अनोखे आदमी है।
0: माफ कीजिए मातरी माँ, मैं आपके रस्म और रिवाज से वाकिफ नहीं हूँ।
1: इसमें रस्म और रिवाज का क्या सवाल है? बात यह है कि पिछवाड़े से यहाँ तक बहुत सी सीढ़ियाँ हैं, वरना वो
0: क्या वो सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ सकती?
1: चढ़ सकती है, चढ़ सकती है, पर कमरा भी तो खराब हो जाएगा।
0: ताज्जुब है, भला उसकी उम्र क्या है? गाती तो बहुत अच्छा है।
1: ये क्या कह रहे हो, गाती अच्छा है? अरे आप तो मुझे पागल कर दोगे। और उम्र शायद 4-4.5 बरस की होगी। 5 सफेद हैं और फिर
0: 4 बरस, माफ कीजिए मातरमा, 1.5 मन के करीब खाती है, 4 मटके पानी पीती है, 5 सफेद है। नहीं नहीं नहीं मातरमा, मैं आपका दामाद बनने से बाज आया।
1: दामाद? निकल यहाँ से बदमाश, शोहदे लुच्चे। कैसे बैकी बैकी बातें करता है? गंगू, अरे गंगू, निकाल इस जानवर के डॉक्टर को गाल पकड़ के बाहर निकाल दे। अच्छा, मेरी बीमार भैंस को देखने आया है?
0: बीमार भैंस
1: क्या कहेगा?
0: लेकिन इश्तहार में तो लगता है मैं गलती से दूसरे के घर में घुस आया।

अभी आप सुन रहे थे झलकी, शादी का इश्तिहार। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे पंकज उदास की आवाज़ में गैर फिल्मी गज़ल।

अभी आप सुन रहे थे पंकज दास की आवाज़ में गैर फिल्मी गज़ल। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए गाने पुराने ज़माने के।

लता मंगेशकर और सुरेश पाडेकर की आवाज़ों में प्रेम रोग फिल्म का एक गीत अभी आपने सुना। अगला गीत सुनिए लता मंगेशकर और साथी की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है नसीब।

0: नसीब फिल्म का एक गीत अभी आपने सुना, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अगला गीत सुनने से पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
2: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
1: अरे वही अपना 60 रुपया।
2: अरे यार, अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
1: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
2: और दूसरा?
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर यूपीआई से।
2: ये लो यार, यूपीआई ने तो बचा लिया।
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले की आवाज़ों में ये गीत अभी आपने सुना। फिल्म थी प्रोफेसर प्यारेलाल। अगला गीत सुनिए लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ों में, फिल्म का नाम वो सात दिन।

वो 7 दिन फिल्म का गीत अभी आपने सुना। अगला गीत सुनिए किशोर कुमार और सपना की आवाज़ों में, जाबांज फिल्म से। इंदिवर के लिखे बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

अभी आप सुन रहे थे गाने पुराने ज़माने के, FM बैंड 103.7 MHz पर। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। श्रोताओं, लीजिए सुनिए गाने नए, तराने नए।

नुसरत फ़तेह अली खान और राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ों में बादशाहो फिल्म का यह गीत अभी आपने सुना। अगला गीत सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज़ में यंगिस्तान फिल्म से।

0: कार्यक्रम गाने नए ताराने नए जारी रहेंगे इस अंतराल के बाद।
1: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं। ओ, जैसे UPI से।
2: अच्छा।
1: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
2: वो क्या है मम्मी जी?
1: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
2: आम भी ना मम्मी जी।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।

अरिजीत सिंह और पलक की आवाज़ों में आशिकी 2 फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। अगला गीत सुनिए आमिर जमाल की आवाज़ में मर्डर फिल्म से।

आमिर जमाल की आवाज़ में मर्डर फिल्म का एक गीत अभी आपने सुना, जिसे लिखा सईद कादरी ने और संगीतबद्ध किया अनु मलिक ने। अगला गीत सुनिए सोनू निगम और तुलसी कुमार की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है दबंग 2।

सोनू निगम और तुलसी कुमार की आवाज़ों में दबंग 2 फिल्म का एक गीत अभी आपने सुना, जिसे लिखा इरफान कामिल ने। अगला गीत सुनिए आतिफ असलम की आवाज़ में, बजरंगी भाईजान फिल्म से।

बजरंगी भाईजान फिल्म के लिए आतिफ असलम के गाए इस गीत के साथ गाने नए तराने नए का सफ़र अब यहीं समाप्त होता है। FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे विविध भारती।
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं,
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: दोस्तों, हिंदी दिवस केवल हिंदी बोलने या हिंदी में भाषण देने का दिन नहीं है। ये दिन हमें एक छोटा सा सवाल पूछने का अवसर देता है। क्या हम अपनी भाषा से उतना ही प्रेम करते हैं जितनी अपनी भाषा पर गर्व करते हैं? भाषा तभी जीवित रहती है जब वो बोली जाती है, लिखी जाती है, पढ़ी जाती है और अगली पीढ़ी तक पहुंचाई जाती है। 14 सितंबर हमारे लिए केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी लिपि में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इसी ऐतिहासिक निर्णय की स्मृति में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 343 में राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी निर्धारित की गई है। हिंदी की कहानी सिर्फ 1949 से शुरू नहीं होती, उसकी जड़ें तो बहुत गहरी हैं। इतनी गहरी कि उन्हें तलाशते तलाशते हम संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तक पहुँच जाते हैं। समय बदला, बोलियाँ बदली, शब्द बदले और भाषा भी अपना रूप संवारती गई। ब्रज ने इसे माधुर्य दिया, अवधि ने उसे लोक की आत्मा दी।
5: पिपरा के पतवा सर के डोले मनवा कि हियारा में उठत हिलो।
4: खड़ी बोली ने आधुनिक हिंदी को स्वरूप दिया। उर्दू, फारसी, अरबी, अंग्रेजी और भारत की अन्य भाषाओं से आए शब्दों ने उसके शब्द भंडार को और विस्तार दिया। यही तो हिंदी की खूबसूरती है, वो अपने भीतर बहुत सारी भाषाओं को समेट कर चलती है, इसलिए हिंदी भाषा से बहुत जल्द प्यार हो जाता है।

0: എം വജീർ.
1: किसी पीढ़ी के मन से जुड़ने के लिए किसी साहित्य या कहानी की भाषा में कोई बदलाव नहीं किया जाता. पीढ़ी से जुड़ना महत्वपूर्ण नहीं है, ना कि ये कि कहानी या कि साहित्य अपने आप में समर्थ, प्रभावी और विस्तृत हो. भाषा को आप पीढ़ी के हिसाब से या समय के हिसाब से नहीं बदल सकते. बेशक कथ्य को बदल सकते हैं. कथ्य इसलिए बदल जाता है कि समाज बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, राजनीति बदलती है और चीज़ों के विश्लेषण और उसके अर्थ बदलते हैं. यदि नई पीढ़ी इनको समझती है तो वो अपने आप साहित्य से और कहानी से जुड़ेगी, और यदि मुद्दों को नहीं समझती तो वो कुछ भी करने पर इससे नहीं जुड़ेगी. प्रचार और प्रसार तो किसी भी भाषा का तब होता है जब वो रोजी रोटी से जुड़े या कामकाज की भाषा बने, या फिर लोग उस भाषा को स्वयं बनाए और स्वीकार करें, जैसा कि उर्दू के साथ उसने किया. और जिसे अब हम हिंदुस्तानी के नाम से जानते हैं, ये वही भाषा है जिसे लोग ने खुद गढ़ा. इसमें विदेशी शब्द भी हैं, इसमें फ्रांसीसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली भी हैं, इसमें बंगला, मराठी भी हैं, संस्कृत के शब्द भी हैं, अवधी, भोजपुरी, ब्रज, इनके शब्द भी हैं. ये भाषा लोक की भाषा है और इसका प्रचार प्रसार अपने आप होता चलेगा. बाकी इसके अलावा सिनेमा ये काम करता है, रेडियो ये काम करता है, दूरदर्शन ये काम करता है, मनोरंजन के साधन ये काम करते हैं जो सब जगह पहुंचते हैं. साहित्य का ये काम मुख्य रूप से नहीं होता और वो ये काम इसलिए करता भी नहीं.
0: हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने में भारतेंदु हरिश्चंद्र की बहुत बड़ी भूमिका है. उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है. उन्होंने केवल कविता नहीं लिखी, केवल नाटक नहीं लिखे, बल्कि उन्होंने भाषा को सामाजिक जागरण का माध्यम बनाया. पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उनका योगदान बड़ा महत्वपूर्ण रहा. उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी जैसी पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी में नए विचारों के लिए मंच तैयार किया. उनकी प्रसिद्ध पंक्ति हम सबको याद आती है, निज भाषा उन्नति यह है, सब उन्नति को मूल. आज भी हिंदी के प्रति हमारे दृष्टिकोण को मजबूत बनाती है. भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद भी हिंदी की मशाल बुझी नहीं. सन 1993 में क्वींस कॉलेज वाराणसी के तीन विद्यार्थियों श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह ने हिंदी भाषा, साहित्य और देवनागरी लिपि की उन्नति के लिए नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की. नागरी प्रचारिणी सभा के प्रयासों से हिंदी के विकास को नई दिशा मिली. देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार, हिंदी साहित्य के संरक्षण और शब्द संपदा को समृद्ध करने में इस संस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. हिंदी के अनेक दुर्लभ ग्रंथों का संग्रह और प्रकाशन हुआ यहीं से. शब्दकोश और साहित्यिक सामग्री तैयार की गई. इस तरह नागरी प्रचारिणी सभा ने हिंदी को केवल बोलचाल की भाषा से आगे बढ़ाकर ज्ञान, साहित्य और विचार विमर्श की सशक्त भाषा बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया. हिंदी के विकास में पत्रकारिता ने बड़ी भूमिका निभाई. उदंत मार्तंड को हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है. इसके प्रकाशक और संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल. 1826 को कलकत्ता से इसका पहला अंक निकला. कल्पना कीजिए, उस समय न इंटरनेट था, न सोशल मीडिया, न टेलीविजन. एक छपा हुआ पन्ना ही विचारों को दूर दूर तक ले जाने का माध्यम था. इसलिए हिंदी पत्रकारिता का इतिहास केवल समाचारों का इतिहास नहीं है, ये जागती हुई भाषा और जागते हुए समाज का इतिहास भी है. हिंदी की यात्रा में कितने ही साहित्यकार आए. कबीर, सूर, तुलसी से लेकर मुंशी प्रेमचंद तक का हिंदी में रचा गया साहित्य आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह था. मुंशी प्रेमचंद ने किसान, मजदूर, स्त्री, गरीब और मध्यम वर्गीय जीवन की पीड़ा को साहित्य की आवाज बनाई. गोदान का होरी हो या कफन का संसार, प्रेमचंद ने हिंदी को केवल मनोरंजन की भाषा नहीं रहने दिया, उन्होंने उसे समाज का आईना बना दिया. मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान पर फिल्म बनी गोदान, जिसके निर्देशक थे त्रिलोक जेटली. आइए यहाँ पर गोदान फिल्म का गाना सुनते हैं.

इसके बाद हिंदी में आई एक नई संवेदना, महादेवी वर्मा। उनकी लेखनी में करुणा थी, संवेदना थी और स्त्री मन की गहरी अनुभूति। महादेवी वर्मा का एक गीत फिल्म त्रिकोण का चौथा कोण में शामिल था, जिसे बड़े ही सुंदर ढंग से छाया गांगुली ने स्वर दिया और जयदेव का संगीत था।

मैथिली शरण गुप्त ने राष्ट्र और समाज की चेतना को स्वर दिया। रामधारी सिंह दिनकर ने ओज भरा। सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन सब ने हिंदी कविता को अलग अलग रंग दिए और इसीलिए हिंदी साहित्य कोई एक रंग की तस्वीर नहीं, ये तो रंगों से भरी एक विशाल चित्रशाला है। यहाँ आपको सुनवा रहे हैं जयशंकर प्रसाद की रचना, जिसे आशा भोसले ने गाया है।

आज हिंदी भारत की सीमाओं से बहुत आगे पहुंच चुकी है। मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद, टोबैको जैसे अन्य कई देशों में भारतीय मूल के समुदायों के बीच हिंदी की अपनी अहम उपस्थिति है। डिजिटल युग ने तो हिंदी को एक नया आकाश दे दिया। आज मोबाइल के स्क्रीन पर हिंदी पढ़ी जा रही है, हिंदी में ब्लॉग लिखे जा रहे हैं, हिंदी के पॉडकास्ट सुने जा रहे हैं, फिल्में और वेब सीरीज हिंदी में देखी जा रही है। हिंदी किताबों के साथ साथ फिल्मी गीतों में भी सांस लेती है। फिल्मी गीतों ने हिंदी के शब्दों को उन श्रोताओं तक भी पहुँचाया जिन्होंने शायद कभी कविता की किताब भी न खोली हो। और यहाँ हमें याद आते हैं एक ऐसे कवि जिनकी कविता मंच से लेकर सिनेमा तक पहुँची, वो है बाल कवि वैरागी। उनके साहित्य में मालवा की मिट्टी की खुशबू थी, लोक जीवन की सहजता थी और शब्दों में आत्मीय मिठास। फिल्म रेशमा और शेरा के लिए उन्होंने लिखा ये गीत।

0: गीत केवल एक फिल्मी गीत बनकर नहीं रह गया दोस्तों, उसमें राजस्थान की लोक संस्कृति, प्रेम और प्रकृति का ऐसा सम्मोहन था कि गीत सुनते ही लगता है जैसे रेगिस्तान की रात में चांद उतर आया हो। बाल कवि बैरागी ने दो बूंद पानी, वीर छत्रसाल, क्षितिज, रानी और लालपरी, जादू टोना और अनकही जैसी फिल्मों के लिए भी गीत लिखे। अनकही में उनका गीत मुझको भी राधा बना ले नंदलाल बहुत ही पसंद किया गया। हर दौर में कवियों का कविता के साथ साथ गीतकारी का सफर चलता रहता है और कवि अपनी उपस्थिति दर्ज करते रहते हैं। जाने माने लेखक, फिल्म समीक्षक, गीतकार और लता सुरगाथा के रचयिता यतीन्द्र मिश्र ने अपने विचार साझा किए हैं।
1: जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है, हिंदी में हजारों किताबें आई। थोड़ा सा अगर बढ़ के हम 25 से 30 साल का दायरा करें तो मैंने कुछ कैटेगरीज में विभाजित किया जो मुझे हमेशा प्रेरित करती हैं किताबें। उसमें अगर हम नॉन फिक्शन या कथेतर के लिए जाएं तो मुझे लगता है कि सर्वाधिक जो अच्छी किताबें थी, जिनका आज भी असर है भाषा के स्तर पर, जिनका एक सकारात्मक संदेश है, जो किसी समाज के किसी तबके की या किसी विचार की बात करती हैं, उनमें सबसे बड़ी किताब मुझे लगती है आज भी खड़े हैं तालाब अनुपम मिश्र की, जो जल संरक्षण पर है और जो शायद पहली किताब है उस पर।
0: जी जी।
1: दूसरी किताब शिखर पाठक की दास्ताने हिमालय मुझे लगती है भाषा के स्तर पर भी और हिमालय को समझने के लिए, उस वनखंड को और उस पूरे पहाड़ को समझने के अर्थ में।
0: जी।
1: और तीसरी किताब जो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगती है वो है स्वदेश दीपक की मैंने मांडू नहीं देखा।
0: क्या बात है।
1: और अगर हम कविता संग्रह पे आए, दो मास्टरपीसेस मुझे लगते हैं, एक केदारनाथ सिंह का टॉलस्टॉय और साइकिल और दूसरा कुंवर नारायण का कुमार जीव, बहुत बड़ा दार्शनिक ढंग का आख्यान है। और बिल्कुल इधर हाल के कुछ वर्षों में प्रकाशित डॉक्टर विनय कुमार की श्रेयसी, जो सरस्वती नदी को आधार बना के ढेर सारी कविताएं उस पर लिखी गई। इसी तरीके से अगर हम चले उपन्यासों की ओर तो मुझे तीन उपन्यास बहुत बहुत समझ में आते हैं। पहला है अलका सरावगी का शेष कादंबरी, दूसरा है अनामिका जी का त्रिनधरी ओट, जो सीता को सीता पत्र लिखती हैं और राम के संदर्भ में पूरा रामायण का आख्यान बताती हैं, और मनीषा कुलश्रेष्ठ का त्रिमाया, जो मात्र सत्तात्मक समाज को लेकर के पूरी बात करती है। इसके अलावा और आलोचनात्मक किताबें या नॉन फिक्शन किताबों में मुझे अनंत विजय की मार्क्सवाद का अर्धसत्य बहुत समझ में आती है, इस अर्थ में कि मार्क्सवाद की एनालिसिस है वो और वो कोई आलोचना नहीं है, लेकिन वो एक पूरे ढंग से एक पड़ताल करती है, वो सारी बातें दिखाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सोपान जोशी की एक किताब है जल थल मल, और वो पूरी तरह से गांधीवादी रहे हैं और किस तरीके से मैला ढोने को लेकर के पूरी किताब लिखी गई है। दो किताबें मुझे बहुत पसंद आती हैं, हालांकि दोनों हिंदी में अनुवादित हुई और बेहद चर्चित हुई। एक आत्मकथा है बेबी हालदार की आलो अंधारी, दूसरा हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर का अनुवाद अग्नि की उड़ान, जिसका उर्दू तर्जुमा भी और ऑडियो बुक भी बनाई गुलजार साहब ने परवाज के नाम से। तो मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसी किताबें हैं जो तुरंत याद आती हैं। बाकी दार्शनिक पक्षों को लेके, राजनीतिक पक्षों लेके बेहद सुंदर किताबें लिखी गई हैं। राम बहादुर राय ने एक किताब लिखी थी रहबरी के सवाल, तो वो किताब है पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से संवाद पर। तो मुझे लगता है कि वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट किताब है, एक बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है पॉलिटिक्स के थ्रू पूरे भारतीय परिदृश्य को समझने का। और वैसे तो हमेशा से जो महान किताबों का मामला है, मैं मैलांचल, गोदान, राग दरबारी, निर्मल वर्मा की वेदिन, धुन से उठती धुन, मेरी सबसे फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट हिंदी किताब अगर कोई है तो निर्मल वर्मा की डायरी और संस्मरणों की किताब है धुन से उठती धुन। मैं उसे बिल्कुल गीता या रामायण की तरह भाष्य के तरह देखता हूँ। और अगर क्लासिक लिटरेचर में चले जाए तो भारत सावित्री वासुदेव शरण अग्रवाल की जो तीन वॉल्यूम में टीका है महाभारत की, उसे जरूर पढ़ना चाहिए कम से कम नई जनरेशन को, जिसे जेनजी कहते हैं। और उसी तरीके से रामायण का काव्य मर्म या हिंदी भाषा दर्शन की टीका विद्यानिवास मिश्र की पढ़नी चाहिए, और सारी किताबें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पढ़नी चाहिए और राहुल जी की किताब वोल्गा से गंगा। तो ये सब किताबें ऐसी हैं जो हिंदी का परिदृश्य बुलती हैं। और एक बहुत इम्पोर्टेंट किताब है अच्छी हिंदी डॉक्टर रामचंद्र वर्मा की, अच्छी हिंदी कैसे सीखें, पढ़ें, समझें, ये बातें। जैसे हम सांस लेते हैं तो जीवन पाते हैं, किताबें पढ़ते हैं तो हमारी सांसें परिष्कृत होती हैं।
0: बिल्कुल। और हमें नैनन में आन बान के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए।
1: नैनन में आन बान मैंने बिल्कुल युवा पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए एक किताब लिखी, उसमें 12 मूर्धन्य शास्त्रीय संगीतज्ञों पर लेख हैं, जिसमें पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर, कुमार गंधर्व, भीमसेन जोशी, केसर भाई केरकर, रसूलन भाई, बेगम अख्तर, उस्ताद अमीर खां, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां के बारे में निबंध है। और 100 पेज का उसमें नोट्स है भारतीय संगीत को, फोक म्यूजिक को, ज्यादातर शास्त्रीय संगीत और सेमी क्लासिकल की बात है। ये समझने की दृष्टि देने के लिए उस किताब के लिखने के पीछे का ध्येय था कि हम गाना सुनते क्यों हैं और गाना सुन के सराहते क्यों हैं। उस किताब को लिखने की प्रेरणा जॉन बर्जर की किताब वेज ऑफ सिंग के ऊपर आधारित है, किस तरह से पेंटिंग को देखना समझना चाहिए, किस तरह से शास्त्रीय संगीत को सुनना चाहिए। और अगर मेरी किताब पढ़ते हुए किसी युवा व्यक्ति में, किसी विद्यार्थी में, किसी संगीतज्ञ में, जो बच्चा सीख रहा है, जो गाने की तैयारी कर रहा है, भले वो प्लेबैक सिंगर बन रहा हो या शास्त्रीय संगीत रागदारी में सीख रहा हो, उसे ये मन कर जाए कि हमें रसूलन भाई की ये ठुमरी सुननी चाहिए, या हमें बड़े गुलाम अली खां का ये दादरा सुनना चाहिए, या हमें पंडित कुमार गंधर्व का ये निर्गुण सुनना चाहिए, तो वो किताब एक रीडर की तरह, एक सहायिका की तरह आपके साथ चलती। और मैं ये जरूर कहूंगा जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा कि किसी भी किताब को, किसी भी कलाकृति को, किसी भी संगीत को, किसी भी सिनेमा को, किसी भी रचनात्मक कार्य को खारिज करने से पहले उसे एक बार देखें, उसे पढ़ते, उसके साथ हम कदम चले, सुनी सुनाई बातों पर, रिव्यू पर, या इसे इसलिए कि फला ने इसकी चर्चा नहीं की तो हमें नहीं देखना चाहिए, इस तरह का कोई निर्णय ना ले। किताबें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, आपके अकेलेपन की साथी, और वो आपको कहीं ना कहीं से संस्कारवान बनाती है।
0: एक अच्छी कविता जब गीत बनती है तो वो किताब के पन्ने से निकलकर लाखों लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। एक ऐसे ही कवि हुए गोपाल दास नीरज, जिन्हें गीतों का राजकुमार कहा जाता था। नीरज के गीतों में ललित काव्य दृष्टिगोचर होता है। नीरज के गीतों में कविता थी, दर्शन था, प्रेम था और जिंदगी को देखने का एक बेहद खूबसूरत अंदाज। फिल्म मेरा नाम जोकर हो या फिर हो प्रेम पुजारी, उनके गाने कालजयी होते हैं। उनके गीत जब हम गुनगुनाते हैं तो हमारे जीवन से जुड़ते हैं। आइए सुने प्रेम पुजारी फिल्म का ये गीत।

0: नीरज का ही लिखा ये गीत आपको सुनवा रहे हैं, जिसने न जाने कितने लोगों को जीवन की क्षण भंगुरता पर सोचने के लिए विवश किया।
1: स्वप्न झरे फूल से।

गीतकार नीरज ने सिद्ध कर दिया कि साहित्य और सिनेमा दो अलग अलग संसार नहीं हैं। हिंदी साहित्य में कुछ कवि ऐसे हैं जिनकी पंक्तियां किताबों से निकलकर जन जन की आवाज बन गई। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन उन्हीं में से एक थे। 1920 और 30 के दशक में हिंदी कविता के मंच पर बच्चन जी की आवाज ने एक अलग ही आकर्षण पैदा किया। उनकी काव्य पंक्तियों में दर्शन था, जीवन का उत्सव भी था और मनुष्य की पीड़ा भी।

0: उनकी कृति मधुशाला ने उन्हें घर घर में लोकप्रिय बनाया। मृदु भावों के अंगूरों की आज बना।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
0: पीढ़ी की जबान पर चढ़ गई। इस फिल्म में उनके सुपुत्र अमिताभ बच्चन ने मुख्य भूमिका निभाई। यही तो हिंदी की ताकत है। कविता किताब से निकलती है, गीत बनती है, सिनेमा तक पहुंचती है और फिर लोगों के दिलों में बस जाती है। दोस्तों, विविध भारती के संग्रहालय में कुछ ऐसे अनमोल मोती हैं जिन्हें हम आप तक आज पहुंचा रहे हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कविता उन्हीं के स्वर में।

0: इस कार्यक्रम में अब जरा चर्चा कर ले ज्ञानपीठ पुरस्कारों की। आपको जानकारी दे दें, सन 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया, 1972 में रामधारी सिंह दिनकर, 1978 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को मिला ज्ञानपीठ, 1982 में महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 1992 में नरेश मेहता को, 1999 निर्मल वर्मा, 2005 में कुंवर नारायण को मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार, 2009 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को, 2013 में मिला केदारनाथ सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार, 2017 में कृष्णा सोबती को, 2024 में मिला विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार। हिंदी भाषा हमें किताबों से किस तरह जोड़ती है, इन दिनों कौन कौन सी किताबें पढ़ी जा रही हैं, बता रहे हैं एक विलक्षण कथाकार मनोज रूपड़ा।
1: पच्चीस साल का वक्त तो काफी लंबा है, बहुत सारे लोग इसमें हो सकते हैं। अगर मैं ये करूं कि भाई मेरी अपनी जो पसंद है या जो मैंने बहुत मन से जो बहुत गहराई से जिन किताबों को पसंद किया, तो उसमें मंजूर एहतसाम की किताब है बशारत मंजिल, काशीनाथ सिंह का उपन्यास है काशी का अस्सी, फिर रणेंद्र का उपन्यास है ग्लोबल गांव के देवता, और शिवमूर्ति का तो अभी हाल ही में आया है, मतलब बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, फिर भी मैं इन 25 सालों के, क्योंकि वो एक क्लासिकल उपन्यास है वो।
0: जी जी बिल्कुल।
1: और मैं उन उपन्यासों का जिक्र कर रहा हूँ जो समकालीन होते हुए भी क्लासिकल दर्जा पा चुके हैं। तो शिवमूर्ति का उपन्यास है गंभ है दरियाओ, और नासिरा शर्मा का एक उपन्यास है पारिजात। तो ये पांच उपन्यास पसंद के जो मैंने जिक्र किया, और उसके अलावा क्योंकि मेरा अध्ययन जो है ना अनुवादों पर भी बहुत ज्यादा मैं फोकस करता हूँ, तो पांच ऐसी किताबें जो सबको पढ़नी चाहिए, उसमें हंगरी की एक लेखिका है मागदो साबा, उसका उपन्यास है दरवाजा। नॉर्वेजियन राइटर है थारियो वेसास, बहुत प्यारे लेखक हैं, और उसका बहुत खूबसूरत अनुवाद तेजी ग्रोवर ने किया है। उपन्यास का शीर्षक है परिंदे। समरसेट मॉम का उपन्यास है चांद और छह आने, ये कला की दुनिया के बहुत अलग तरह के जो कश्मकश होती है उसका उपन्यास है ये। फिर उसके बाद मार्गो वर्सेस लोसा का उपन्यास है किस्सा वो, और हमारे जो सबसे बड़े इन 25 सालों के बीच के जो अंतराल के जो मास्टर हैं गैब्रियल गार्सिया मार्केस, उनका उपन्यास है एकांत के 100 वर्ष। ये तो सबको पढ़ने चाहिए, मैं ये रिकमेंड करूंगा। इन उपन्यासों को पढ़कर कई तरह के मतलब परिप्रेक्ष्य खुलते हैं।
0: आपने एकांत के 100 वर्ष का जो जिक्र किया मार्केस, तो इसका अनुवाद उमा शर्मा जी ने किया, बहुत ही बेहतरीन किताब है। एक किताब और आपको याद दिला रही हूँ मैं, काला बछड़ा सफेद बर्फ,
1: हाल ही में अनुवादित हुआ है, पढ़ा है मैंने वो भी, मतलब अगर इन 25 सालों में उसको हम रखें तो वाकई वो एक क्लासिकल उपन्यास है। हमारे यहाँ इस तरह की राइटिंग है नहीं, हमारे यहाँ अंदरूनी जो संश्लिष्ट यथार्थ है उसकी जो बारीक परतें हैं उसको खोलने का हुनर अभी तक हमारे लेखक में नहीं है। इसलिए हिंदी के लेखक को खास तौर से उपन्यास पढ़ना चाहिए कि अंदरूनी जो परतें होती है यथार्थ की उसको कितनी महीनता से कितनी बारीकी से एक लेखक खोलता है, ये अगर जानना है तो ये उपन्यास पढ़ना चाहिए काला बछड़ा। इसका अनुवाद भी बहुत खूबसूरत हुआ है। मैं तो हमेशा ये मानता हूँ कि एक लेखक का काम सिर्फ लिखना नहीं होता, एक लेखक का काम रचनात्मक माहौल बनाना भी होता है। अगर हम अपना लेखन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अपने बाद के लेखकों के लिए कोई माहौल नहीं बना पा रहे हैं तो हमारा रचना कर्म भी अधूरा है, मैं ऐसा मानता हूँ। ये मैंने सीखा है मेरे से जो सीनियर थे, मंजूर एहतसाम, सत्येन कुमार थे, कमला प्रसाद जी थे, इन लोगों ने हमेशा युवा लेखकों को जिनको कुछ भी नहीं आता था, जैसे मैंने लिखना शुरू किया था एक वर्कशॉप में शुरू किया मैंने, वो वर्कशॉप यानी कहानी का एक छोटा सा मतलब एक प्रशिक्षण। अब आप सोचेंगे कि भाई लेखन का भी कोई प्रशिक्षण शिविर होता है, हाँ मैंने प्रशिक्षण शिविर में कहानी लिखना सीखी है, वो युवाओं के लिए था जिन्होंने एक कहानी भी नहीं लिखी थी, पहली कहानी उसमें लिखी गई उस प्रशिक्षण शिविर में। तो हमारे यहाँ परंपरा है मतलब युवा लेखन को प्लेटफॉर्म देने की, ये कोशिश होती रहनी चाहिए।
0: अभी आप सुन रहे थे जाने माने कथाकार मनोज रूपड़ा के विचार। दोस्तों, किताबों से नाता जोड़कर हम समाज से जुड़ते हैं, हम संवेदनशील होते हैं, कल्पनाशीलता का विस्तार होता है। इन दिनों कौन कौन सी जरूरी किताबें आई जिन्हें पढ़ना चाहिए, बता रहे हैं भारतीय प्रशासनिक अधिकारी और जाने माने साहित्यकार कैलाश वानखेड़े। आइए सुनते हैं कैलाश वानखेड़े के विचार।
2: ये एक बेहद मुश्किल सवाल है कि एक किताब का नाम बताया जाए और भारत में जिस तरह से जटिलता है और जो सामाजिक परिवेश है, मुझे लगता है कि पाठकों ने ओम प्रकाश वाल्मीकि की झूठन नाम की जो आत्मकथा है वो जरूर पढ़ना चाहिए, जिसमें कि भारतीय समाज की जो अंतर्निहित व्यवस्था है और जिसमें जो प्रताड़ना और उपेक्षा के साथ साथ एक संघर्ष का हिस्सा है वो इस किताब में है। और मुझे लगता है कि हर पाठक को भारतीय समाज को समग्र रूप से समझने के लिए जरूरी है कि वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की किताब जरूर पढ़े। उसी तरह से तुलसीराम की मुर्दहिया भी एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है, जो कि हमारे परंपरागत समझ और जो हमें विरासत में मानसिकता मिलती है उसकी जड़ता से प्रहार करने के लिए और समग्र समाज को समझने के लिए जरूरी है कि हम इस किताब को भी जरूर पढ़े। एक भारतीय समाज के उस रूप को और व्यवस्था को उजागर करती है जिससे कि अमूमन सामान्य पाठक अछूता रहता है। इन किताबों को इस लिहाज से पढ़ा जाना चाहिए कि समग्र भारत, समग्र समाज किस तरह से है और उसकी क्या क्या दिक्कतें, परेशानी, संघर्ष और सपने क्या क्या है। सारे पाठकों को हिंदी की किताबें जरूर पढ़ना चाहिए, जो उसकी पसंद सुविधा हो उस दिशा में उन्होंने अपना एक कदम बढ़ाना चाहिए। अपनी पसंदीदा किताब इसी तरह से बनती जाएगी, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, किताबों के संसार में दाखिल होते जाएंगे तो नई नई किताबों का भी उन्हें दर्शन होगा और वो इन किताबों को देख सकेंगे, पढ़ सकेंगे और अपने मानस को समझने के लिए, अपने दृष्टिकोण को व्यापक, उदार और समतामूलक बनाने के लिए वो इस दिशा में जरूर एक प्रभावी कदम उठा सकेंगे। कुछ मराठी साहित्यकार है जिनको की बचपन के समय में पढ़ा था, वामन निंबाड़कर हो, नामदेव ठसाल हो, मनोहर वाकोड़े हो, या फिर अगर मैं बात करूं दया पवार की, इन लोगों को बचपन और किशोरावस्था में पढ़ा था, बाद में प्रेमचंद से जो है कहना चाहिए कि एक अच्छी मुलाकात हुई जिनके की समग्र साहित्य को पढ़ा गया, राजेंद्र यादव को पढ़ा, तरह के लेखक रहे हैं जिन्होंने मेरे अपने लिखने और समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हर व्यक्ति को जो है किताब जरूर पढ़नी चाहिए, अपने साथ अपनी यात्रा में किताबों का साथ रहना चाहिए, जब भी मौका मिला वो किताबों के पन्ने उल्टे और उसको पढ़ने में अपना वक्त दे। किताबें सबसे अच्छी दोस्त होती है, उससे दोस्ती जो करेगा वो आदमी, वो इंसान जिंदगी भर व्यस्त रहेगा, खुश रहेगा, यही मुझे लगता है।
0: आप सुन रहे थे भारतीय प्रशासनिक अधिकारी और जाने माने कथाकार कैलाश वानखेड़े के विचार। अब एक ऐसे साहित्यकार के विचार जिन्होंने कहानियां भी लिखी हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, संस्मरण भी लिखे हैं, यात्रा वृत्तांत भी लिखा है और अनुवाद भी किया है, ये है उर्मिला शिरीष।
3: हिंदी साहित्य में कहानी कहने के नए माध्यम आ गए हैं। मुझे लगता है कि बदलाव की जरूरत इसलिए है कि आज जो भी पाठक हैं, श्रोता हैं, वो इस तरह के साहित्य की तरफ उन्मुख हो रहे हैं जिसका कट सीधे सीधे भाषा के माध्यम से उनके दिल दिमाग में उतर जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना कसाव होगा कथ्य में और भाषा जितनी रोचक होगी, संप्रेषणीय होगी, उतने ही अच्छे ढंग से किसी भी कहानी को आत्मसात किया जा सकता है। बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाकर और कहानी को यदि हम कहते हैं तो जो मूल कहानी का भाव है वो कहीं ना कहीं बाधित होता है। और मुझे लगता है कि आज के इस बदलाव के समय में जब मीडिया और सोशल मीडिया चारों तरफ हमारे है और हम उन माध्यमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे में हमें कथ्य के कसाव पर कथ्य पर बहुत ध्यान देना चाहिए और भाषा पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए, जो भाषा सीधे सीधे हमारे श्रोताओं को और हमारे पाठकों को हमारी रचना का जो मूल भाव है, जो केंद्रीय भाव है, हम कहानी में जो कुछ भी कहना चाहते हैं वो रोचकता के साथ उनके अंतरतम में पहुँच सके। दूसरी बात ये कि साहित्यकार, मीडिया और नई पीढ़ी, ये बिल्कुल सही बात है कि तीनों आज बराबर से साहित्य जगत में अपने अपने स्तर पर सक्रिय हैं और इन लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी कहानी या कविता जब हम लिखते हैं तो यदि वो श्रोताओं या दर्शकों तक नहीं जाती है तो उसका कोई मायने नहीं रहता है। लेकिन मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि हमें अपनी जो परंपरा है उस परंपरा का निर्वाह करते हुए जो आधुनिक नए माध्यम आए हैं उनको भी अपनाना जरूरी है। तो दोनों परंपरा और आधुनिकता नए माध्यमों के बीच इस तरह का तालमेल बैठाकर हम चल सकते हैं कि उसकी भाषा और शैली अक्षुण रहे और हमें ये लगे कि हम स्तंभ में जो हमारी कहानी की परंपरा चली आ रही है उस परंपरा का निर्वाह करते हुए आधुनिक माध्यमों के रूप में भी हम कहानी को सुन रहे हैं। जैसे मैंने अनुभव किया है कि प्रेमचंद की कहानियां आज भी उतने ही अच्छे ढंग से नए माध्यमों के द्वारा सुनी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं। तो आधुनिकता का और परंपरा का दोनों का समन्वय मैं मानती हूँ कि होना चाहिए।
0: तो ये थे जानी मानी कथाकार उर्मिला शिरीष के विचार। दोस्तों, हिंदी साहित्य में बहुत सारे ऐसे कवि रहे जिन्होंने कविता के क्षेत्र में प्रतिष्ठा पाने के साथ साथ हिंदी सिनेमा को भी यादगार गीत दिए। कुछ कवि और गीतकारों का जिक्र हमने पहले किया। एक जाना माना नाम है कवि और गीतकार शैलेंद्र, प्रगतिशील कवि और गीतकार जिन्होंने गीत लिखा आवारा हूँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, सजन रे झूठ मत बोलो।

शकील बदायूनी, नक्श लालपुरी, शायरी के साथ साथ फिल्मी गीतों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। कवि प्रदीप का नाम भला हम कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने कवि के रूप में प्रसिद्धि पाई और बाद के दिनों में उन्होंने ललित गीत लिखे।

0: लीजिए अब सुनिए उनकी बात, जो पेशे से प्रोफेसर हैं, सुधी पाठक हैं और हैं रेडियो प्रेमी विनीत कुमार।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आकाशवाणी, शुक्रिया ममता जी। पिछले 15-20 साल में जो किताबें जो मुझ पर बहुत असर कर पाई, उसमें सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा तुलसीराम जी की मुद्दैया और मणिकर्णिका, ये दोनों किताबें उनकी आत्मकथा है। और एक तो ये जीवन संघर्ष और जीवटता की किताब है। इसके बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जो तुलसीराम जी के बचपन के जीवन संघर्षों को बताती है। छात्रों को ये किताब हर हाल में, या फिर युवाओं को जो संघर्ष कर रहे हैं करियर बनाने की, छोटे शहरों से आकर बड़े शहरों में जद्दोजहद करें, उन्हें ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि उससे बहुत एक हौसला उनका बढ़ता है, मिलता है। और तुलसीराम ने उत्तर प्रदेश के जिस छोटे से गांव से अपना सफर शुरू किया और बाद में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर तक हुए, लेखक हुए, पूरी किताब की यात्रा से जब गुजरेंगे हमारे युवा और युवा पीढ़ी के लोग, बहुत हिम्मत मिलेगी। दूसरी किताब आई दाता पीर, और पटना की पूरी पृष्ठभूमि पर लिखी हुई सुलभ का ये उपन्यास है। ये किताब इसलिए भी पढ़ी जानी चाहिए क्योंकि इसमें जो भाषा की मिलावट और घुलावट है, आमतौर पर हम भाषा में मिलावट शब्द को बड़े ही निगेटिव, बहुत नकारात्मक ढंग से देखते हैं, कितनी अलग अलग खित्ते की भाषा बड़ी ही खूबसूरती के साथ आती है। और ये किताब इसलिए पढ़ी जानी चाहिए क्योंकि गलत और सही की बहस से अलग, कैसे अलग अलग जनपद की भाषा, उसकी बुनावट एक मुकम्मल, एक बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमारे ऊपर असर करती है। तो ये किताब मैं चाहूंगा दाता पीर लोग पढ़ें, और मुझ पर असर करती है ये किताब बहुत गहरे जाकर। चौथी किताब रेडियो कोसी, पुष्यमित्र ने लिखी है, पेशे से पत्रकार। रेडियो कोसी के बहाने एक मार्मिक कथा बिहार की तो लिखते हैं, लेकिन साथ ही साथ सोशल मीडिया और न्यू मीडिया के जो थोड़े उजास पक्ष हो सकते हैं, जो उजले उसके रूप हो सकते हैं, और उससे कैसे जिंदगी बेहतर हो सकती है, एक तरफ वो कहानी बताती है और दूसरी तरफ इसके जो स्याह पक्ष है उसकी कहानी बताती है। तो नए लोगों को ये किताब बहुत पसंद आएगी और पढ़ी जानी चाहिए। कविता में ईश्वर और बाजार मैंने काव्य संग्रह जयंतिता कृतिका की पढ़ी है, और जो तार्किक समझ होती है जल जंगल जमीन के बीच की, हमारी जो जिंदगी है उसे किस तरह से बचाया जाना चाहिए, उसके क्या तर्क हो सकते हैं, और कैसे वो हमारे पैदा होने के साथ ही सवालों के साथ ये चीजें जुड़ती है, इसके लिए ईश्वर और बाजार किताब मुझे बहुत पसंद आई। एक आखिरी किताब की मैं चर्चा करना चाहूंगा, तुम चुप क्यों रहे केदार। ये हृदयेश जोशी हैं जो पेशे से पत्रकार रहे हैं, टीवी पत्रकार रहे हैं, और हृदयेश जोशी ने 2013 में जो उत्तराखंड में भारी तबाही हुई, साइक्लोन जाने गई, उस दौरान वो कवर करते रहे, और तब से लेकर कई सालों तक बार बार फॉलो अप करते रहे, उस देखते रहे उस घटना के बाद की जिंदगी को। तो उस सिरे से इस किताब को पढ़ने की जरूरत है, तुम चुप क्यों रहे केदार। और यहाँ केदार एकदम बिल्कुल मानवीकृत रूप में हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं, और लगता है कि जितनी जिंदगी हमें कीमती लगती है, उतनी जिंदगी पहाड़ की भी, जंगल की भी, खेतों की भी, नदियों की भी है, और होनी ही चाहिए।
0: जी क्या बात है, बहुत अच्छा लगा इतनी सारी किताबों का आपने जिक्र किया। यहाँ पर दो किताबें हम भी अपनी ओर से जोड़ दें, एक तो ऋषिकेश सुलभ जी की दाता पीर का आपने जिक्र किया, तो उन्हीं की किताब जूठी गली, उन्हीं का उपन्यास है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें कैलाश वानखेड़ी की किताब उजला अंधेरा, ये किताब भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आप खुद एक युवा हैं, तो आप युवाओं और आपसे बाद की जो पीढ़ी आ रही है उनके लिए हिंदी पखवाड़े पर, हिंदी दिवस पर क्या संदेश देंगे, कैसे आप हिंदी से जोड़ना चाहेंगे उन युवाओं को जो पढ़ने से, किताबों से कहीं दूर जा रहे हैं।
1: ममता जी, मैं जिस पेशे से जुड़ा हुआ हूँ, टेलीविजन रेडियो और क्लासरूम के बीच जो मेरी दुनिया है, मैं उनको यही संदेश देना चाहूंगा कि चाहे किसी भी रूप में आपको मीडिया और अभिव्यक्ति दिखाई देती है, लेखन और भाषा के बिना कुछ भी नहीं है। आपके पास भाषा नहीं होगी तो आप दुनिया की तमाम चमकीली चीजों को ऊपरी ऊपरी तौर पर समझ पाएंगे, उसके अंदरूनी दुनिया को आप कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हिंदी की जो पूरी बनने की यात्रा रही है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही संघर्ष है इसमें। मैं चाहूंगा कि रील्स, वीडियो और नए माध्यमों की चमक के बीच इसे खोने मत दें, वापस मुड़कर पुस्तकालय की तरफ जाएं, किताबों की तरफ जाएं, लेखक पत्रकारों की लिखी दुनिया भर की चीजें हैं, आप एक बार जरूर देखें।
0: जी
1: से गुजरे,
0: बिल्कुल, बहुत बढ़िया बातें आपने बोली हैं, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत जी। आप सुन रहे थे प्रोफेसर और सुधी पाठक, रेडियो प्रेमी विनीत कुमार के विचार, हिंदी साहित्य कल और आज। आप सुन रहे थे ये विशेष रूपक। आज के विविधा कार्यक्रम में जिन साहित्यकारों को हमने शामिल किया उनके नाम हैं प्रियमवद, यतीन्द्र मिश्र, मनोज रूपड़ा, कैलाश वानखेड़े, उर्मिला शिरीष और विनीत कुमार। शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का। संपादन सहयोग मनीषा सिंह। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। तो अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये है विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आपदाओं और व्यवधानों ने यह साबित किया है कि आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आज दूसरे और अंतिम दिन भागीदार देशों के मुख्य सत्र में श्री मोदी ने ये बात कही।
2: महामारियां, क्लाइमेट डिजास्टर्स और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन ने दिखाया है कि आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है। चुनौतियों को समय रहते पहचानना और तुरंत कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों की जरूरतों को पूरा करेगा।
2: ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों के लिए नई संभावनाएं तैयार करेगा। इसके माध्यम से AI, जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को किसानों की वास्तविक आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाएगा। टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स का वेपनाइजेशन हमारी साझा प्रगति में बाधा बन सकता है। इसलिए हमने टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन में इंक्लूसिविटी पर बल दिया है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है।
2: भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास रहा है कि ब्रिक्स कोऑपरेशन केवल सरकारों तक सीमित न रहे। हमारे एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स, रिसर्चर्स, विमेन, यूथ और सामान्य नागरिक भी इसके सक्रिय भागीदार बने।
1: और जानकारी के लिए चलते हैं भारत मंडपम में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित के पास। अंकित, ब्रिक्स सम्मेलन भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है और आज अंतिम दिन सम्मेलन में क्या कुछ खास होने वाला है?
3: जी कनक, आपको बता दूं कि भारत चौथी बार ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता कर रहा है। वर्ष 2006 में चार देशों के साथ शुरू हुए इस समूह में अब 11 सदस्य देश और 10 साझेदार देश शामिल हैं। भारत का ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार पिछले 5 साल में दोगुने से ज्यादा बढ़ा है, जो ये दिखाता है कि ब्रिक्स समूह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक और व्यापारिक साझेदार के रूप में उभर रहा है। इस शिखर सम्मेलन के पहले दिन कल सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया।
1: जी,
3: इसमें ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। कनक, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर बाद कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा वह नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति से भी वार्ता करेंगे। जी कनक,
1: जानकारी के लिए धन्यवाद अंकित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ईरान के वित्त मंत्री सैयद अली मदनी जादे से मुलाकात की। श्रीमती सीतारामन ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ईरान की भागीदारी और फाइनेंस ट्रैक की चर्चाओं में सकारात्मक योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वतंत्रता सेनानी जतेंद्र नाथ दास की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा है कि जतेंद्र नाथ दास ने छोटी उम्र में ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष का रास्ता चुना था और जेल की यातना भी उनके हौसले को नहीं डिगा सकी। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में भी तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर में भी आज तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली में भी अगले 3 दिन के दौरान बारिश के आसार हैं। दुबई में एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के फाइनल में भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से आज रात 8 बजे होगा। सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टी20 क्रिकेट मैच आज शाम

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

तन्हा दिल एल्बम से ये गीत अभी आप सुन रहे थे शान की आवाज में, राम संपत का म्यूजिक। प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में गीत दाग द फायर फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। समीर ने इस गीत को लिखा।
1: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
2: पिताजी का जो जो फिल्में बनी हैं, सभी लिटरेचर बेस्ड है। सबका कहानी लिटरेचर, बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी, जेल की कहानी से।
1: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितम्बर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती आरोप।

0: सोनू निगम की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे, चंदा की डोली एल्बम का नाम। नुसरत बद्र ने इसे लिखा, संगीत सोनू निगम का।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
1: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

फाल्गुनी पाठक की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे मेरी चुनर उड़ उड़ जाए एल्बम से। ललित सेन ने इसे लिखा और उन्हीं का संगीत था। और इससे पहले जो आपने गीत सुना दीवाना एल्बम से, सोनू निगम की आवाज में, फैज अनवर ने उसे लिखा और साजिद वाजिद का संगीत था।

0: पिनाज मसानी की आवाज में गजल अभी आप सुन रहे थे। इसके साथ ही आज का
1: FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आपस में जुड़ी आज की दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता है, इसलिए ब्रिक्स देशों के समूह ने भीतर लचीलापन और संकटों से निपटने की क्षमता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के खुले सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित सत्र में प्रधानमंत्री ने चुनौतियों की समय पर पहचान करने, उनके लिए पहले से तैयारी करने और तुरंत कदम उठाने पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि छोटे उद्यमों को ज्ञान, वित्त और नए बाजारों से जोड़ने के लिए ब्रिक्स एमएसएमई सहयोग पोर्टल स्थापित करने की पहल का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा शहरों के बीच बेहतर तौर तरीकों को साझा करने की सुविधा के लिए ब्रिक्स अर्बन मोबिलिटी हब का गठन किया गया है।
1: अर्बन मोबिलिटी हब की स्थापना की गई है। भारतीय सभ्यता में प्रकृति को माँ का दर्जा दिया गया है। सदियों से हमारी मान्यता रही है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विकल्प नहीं, पूरक है। ब्रिक्स में भी हमने मानव विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन पर बल दिया है। यही सस्टेनेबिलिटी का आधार है। ये भावी पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। इस दिशा में हमने कई पहलुओं पर प्रगति की है।
0: विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स देशों द्वारा अपनाए गए नई दिल्ली घोषणा पत्र की सराहना की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानम घेब्रेयेसस ने सोशल मीडिया पोस्ट में तपेदिक को समाप्त करने, स्वास्थ्य कार्यबल को मजबूत करने, डिजिटल स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा को एकीकृत करने और सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के ब्रिक्स देशों के प्रयासों की सराहना की। केंद्र सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की ओर से यंग लीडर्स डायलॉग 2027 का राष्ट्रीय आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य विकसित भारत 2047 के निर्माण में युवाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाना है। ये आयोजन अगले साल 10 से 12 जनवरी तक नई दिल्ली में होगा। कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को अपनी सोच, नवाचार, नेतृत्व क्षमता और रचनात्मक प्रतिभा प्रस्तुत करने तथा अपने विचारों को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का अवसर मिलेगा। इसमें 15 से 29 वर्ष की आयु के युवा माय भारत पोर्टल के माध्यम से भाग ले सकते हैं। हनुमानगढ़ में जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशाल यादव ने इस संबंध में युवाओं को जागरूक करने के लिए आज पोस्टर का विमोचन किया। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 29 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात हुई, वहीं पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं बहुत हल्की बारिश दर्ज हुई। इससे पहले झालावाड़ में 8 सेंटीमीटर, निम्बाहेड़ा में 5, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में 4 तथा चित्तौड़गढ़ में 3 सेंटीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई। राज्य के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में बारिश का दौर 16 सितंबर तक जारी रह सकता है। अगले 2 से 3 दिनों में कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार दुबई में रात 8 बजे से खेला जाएगा। भारत ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराया था। 7 बार का चैंपियन भारत ग्रुप ए में अपने सभी मैच जीतकर शीर्ष पर रहा। वहीं श्रीलंका ने भी सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराकर फाइनल में जगह बनाई। भारत 7 बार ये खिताब जीत चुका है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत अफगानिस्तान के साथ 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। दूसरा मैच मंगलवार को और तीसरा अंतिम मुकाबला गुरुवार को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भेज सकते हैं। ये सुझाव 25 सितंबर तक स्वीकार किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: FM बैंड 103.7 MHz पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे खानदान फिल्म से, खयाम का संगीत था। इस गीत को लिखा था नक्श लालपुरी ने। और अब संदेशों की बारी आती है। आपने बहुत से संदेश हम तक पहुंचा दिए हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी जिंदगी के सफर में कोई अजनबी यूं मिलता है कि छोटी सी मुलाकात भी दिल पर उम्र भर की छाप छोड़ जाती है। उनसे कहना बहुत कुछ होता है लेकिन शब्द कम पड़ जाते हैं, और ऐसा ही एहसास आज की इबारत में उनको पढ़ने को मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही कुछ एहसास के साथ सजी है आज की इबारत। एक और श्रोता लिखते हैं कि छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, ये गीत उन्हें लगता है कि इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहिए। देखते हैं लिस्ट में आता है ये गीत या नहीं। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज महफिल में अजनबी की मुलाकात और उसके बाद की संगीत में जुगलबंदी सुनने का बढ़िया आनंद मिलेगा, और इसे आनंद कहना भी अतिशयोक्ति होगी। फिलहाल वो इस प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जिस खूबसूरत अनुभूति से लिखा गया है, प्रेम की यात्रा और स्मृति सौंदर्य का ये सुंदर रूपक है जिसमें राग भी शामिल होंगे, और प्रेम आत्मा का एक सुंदर ठहराव है जो जिंदगी के सफर में राह में मिले किसी अजनबी को आपकी जिंदगी का हम सफर बना देता है। वो चेहरा बार बार याद आने लगता है तो समझिए कि प्रेम का अंकुर फूट चुका है। इकरार होते ही मुलाकातों का सिलसिला प्रेम को परवान चढ़ाते हुए मंजिल की ओर हम सफर बनकर हमदम हो जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि कुछ मुलाकातें तारीखों में नहीं मिलती, बस दिल की किसी खामोश तह में ठहर जाती है।

वो भी एक सफर था। कुछ पल साथ चले, फिर रास्ते अपने अपने हो गए। जी हाँ, ऐसा भी होता है कि मुलाकात मुलाकातें नहीं बन पाती और बस एक मुलाकात बन जाती है, लेकिन वो जो एक मुलाकात होती है वो बड़ी सारी मुलाकातों पर भारी पड़ जाती है, जिंदगी भर ताउम्र याद रहती है। बिल्कुल। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि वो हम सफर था या मेरी कोई खूबसूरत दुआ, जो मिला तो लगा जिंदगी मिल गई और बिछड़ा तो जाना कुछ लोग साथ नहीं सिर्फ एहसास बन जाते हैं। जी हाँ, बहुत खूबसूरत लिखा है आपने। और चलिए, जब मुलाकात की बात हुई और इस तरह से सुंदर संदेश आए, क्यों ना आज के इस प्रोग्राम में कुछ ऐसे संदेश लिखे जाएं जहां एक ही मुलाकात काफी है जिंदगी भर याद रखने के लिए। वो मुलाकात जरूरी नहीं कि प्रेमी के संग हो या फिर कुछ रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन वो मुलाकात किसी के साथ भी हो सकती है। एक ऐसी मुलाकात जिसने आपकी जिंदगी बदल दी और फिर वो मुलाकात या उनसे मिलना दोबारा नहीं हुआ, इस तरह का कुछ अनुभव आप लिख भेजें तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे पढ़ने में और हमारे साथी श्रोताओं को भी सुनने का मौका मिलेगा। फिलहाल ये अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं

अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: प्रेम पुजारी फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर की आवाज में, नीरज के बोल और एसडी बर्मन की तर्ज।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियां।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
3: बिल्कुल।
1: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे प्रोग्राम सुरीला सफर। हमारे श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी के लंबे और अनजाने सफर में कई राहगीर मिलते हैं, पर कुछ अजनबी दिल पर अपनी अमिट छाप छोड़ देते हैं। और कभी किसी शांत मोड़ या सफर में जल्दबाजी में भी हुआ अगर छोटा सा संवाद होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं आपकी आत्मा को, रूह को सुकून पहुंचाता है। फिर वो इंसान दोबारा मिले या ना मिले, लेकिन वो जो प्यार की गर्माहट है वो कहीं ना कहीं रह जाती है। जी हाँ बिल्कुल। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि एक छोटी सी मुलाकात उन्हें याद आती है, उसका चेहरा आज तक याद आता है, बार बार याद आता है। और इस इबारत से मुलाकात शब्द पर ये जो पहला गीत हमने सुनवाया वो ही उन्होंने गेस किया था। बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि दो अजनबियों का आपस में टकराना, ये छोटी सी मुलाकात, यादों में बस जाना, धीरे धीरे मुलाकात बढ़ती गई और लगा यही पल सबसे अनमोल है। इस रंग बिरंगी जिंदगी में मिलन के कुछ दिन जो आते हैं, लेकिन फिर बिछड़ना भी होता है, लेकिन वो सुनहरे पल हमेशा यादों में बस जाते हैं। बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि इबारत जो है प्यार के उस सबसे पावन और परिपक्व रूप को दर्शाती है, जहां पा लेने से ज्यादा महत्व है महसूस कर लेने का। और इस कहानी में मिलना, बिछड़ना और फिर तड़प तो है ही, लेकिन आखिर में कोई शिकायत नहीं है। ये इस बात का प्रतीक है कि सच्चा प्यार जवाब या हक नहीं मांगता है, वो सिर्फ मौजूदगी का एहसास मांगता है। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने एक्सप्लेन किया इसे, बहुत ही सुंदर मैसेज आपने हम तक पहुंचाया है। एक और श्रोता लिखते हैं कि वक्त अपनी रफ्तार से चला जा रहा है, वो उसके प्यार के रंग में कुछ यूं रंग गया कि हर मौसम में उसे उसी की छवि दिखाई देने लगी। ये इबारत से उन्होंने पंक्ति उठाई है और कहा है कि इस इबारत में ये जो रंग शब्द है, इससे हमने ये रंगीला रे गीत जो है अभी आपको सुनवाया। जी हाँ बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही समझा और सही लिखा है। और आपके जो अनुभव उस पहली मुलाकात, या यूं कहिए कि एक मुलाकात के, वो किसी से भी हो सकते हैं जिसने आपकी जिंदगी को बदल दिया हो, आपको बदल दिया हो, आपके सोचने के नजरिए को बदल गया, बदल दिया हो। इस तरह के संदेश आप मुझ तक पहुंचाएं। हम चलते हैं अपने दूसरे गीत की तरफ, दूसरे यानी कि अगले गीत की तरफ इस प्रोग्राम के।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में गीत शक्ति फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, आर डी बर्मन की तर्ज। और मुलाकात जिसने बदल दिया हो या जो याद रह जाए, उसमें एक संदेश आया है हमारा, हमारे श्रोता का। लिखते हैं कि कुछ साल पहले, बहुत साल पहले वो सिंगापुर गए थे और वहां 3 साल की मासूम जापानी बच्ची साशा से मुलाकात हो गई थी, जिसने उस सफर में अपनी बाल लीलाओं से दिल लुभा दिया था। और अब तो साशा काफी बड़ी हो गई होगी, 20-25 साल की युवती हो गई होगी, लेकिन हमारे पास सिर्फ उसकी सुंदर तस्वीर और यादें ही रह गई है। जी हाँ, बहुत ही सुंदर संदेश। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जब वे स्कूल में थे तो एक लड़की जिसका न्यू एडमिशन हुआ था, वो 1 सप्ताह तक स्कूल आई, लेकिन फिर उसको स्कूल में नहीं देखा। शायद वो लोग दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए हों और उस समय तो नंबर्स भी एक्सचेंज नहीं कर सकते थे। 1 सप्ताह में हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी, आज तक उन्हें वो बात याद है। हमारे एक श्रोता लिखती हैं कि कुछ लोग जरा देर से खुलते हैं तो पहली मुलाकात से मायूस नहीं होना चाहिए। जी हाँ, लेकिन वो अगली मुलाकात आनी भी तो चाहिए। अगले हमारे श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि पहले सफर में किसी अजनबी से मुलाकात का एहसास दिल में एक अनूठी हलचल, अनजाना सा अपनापन और एक खूबसूरत याद छोड़ जाता है। बिल्कुल। एक और श्रोता का लिखना है कि परिपक्व प्रेम मुलाकातों का मोहताज नहीं होता, अदृश्य रहकर भी समर्पित प्रेम किया जा सकता है। जी हाँ, बहुत ही सुंदर भाव। हमारे एक और श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि सभी को यथा योग्य सप्रेम अभिवादन करते हुए उन्होंने लिखा है कि आज जागो सुबह हो गई से जगे कुछ अपने ही पग में पगे, संगीतमय सुरों की सरिता में घुलकर, भूले बिसरे गीतों की चांदी में नहाकर और हम है राही प्यार की आंधी में त्रिवेणी तट से सुबह कालीन चित्र लोग के साथ फिर आज के फनकार से मिलते हुए और गीतों के पिटारे को खोलते हुए साहित्य परिचर्चा यादों की महफिल से उबरते हुए अपने सुरीली धड़कन के सुरीला सफर कार्यक्रम तक वो पहुंच चुकी हैं, वो शामिल हैं हमारे साथ। जी हाँ, हमारे सभी सुबह से जो प्रोग्राम आप सुन रहे हैं उनका एक सुंदर, कहते हैं एक सुंदर माला बना दी है आपने इन शब्दों को जोड़कर, उन शीर्षक को जोड़कर। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यार के लिए। फिलहाल हम ये गीत आप तक पहुंचाते हैं।

0: फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। बेमिसाल फिल्म से आनंद बख्शी ने इसे लिखा, आर डी बर्मन की तर्ज। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मुलाकात की जब बात चली है तो एक बहुत ही खास मुलाकात उन्हें याद आती है और वो अपनी शादी का जिक्र कर रहे हैं कि उनकी जो शादी हुई है वो भी विविध भारती के जरिए ही हुई है। ये बड़ी दिलचस्प बात है, आपको सुनवाते हैं कि ये भी विविध भारती के फैन रहे हैं और इनकी जो अर्धांगिनी है वो भी विविध भारती की दीवानी थी और बस ऐसे ही धीरे धीरे विविध भारती से जुड़ाव होता रहा और नजदीकियां हुई और फिर शादी हो गई। आज हम साथ साथ हैं और साथ साथ में ही ये हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको और बहुत अच्छा लगा ये मैसेज पढ़कर हमें। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि कुछ मुलाकातें बस याद बनकर रह जाती है। आज लगता है उस धुंधली यादों से कोई चादर हटा दे और हम खो जाएं उन पुरानी मुलाकातों में। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि अहमदाबाद जाते हुए परिवार से ट्रेन में हुई, जो सामने की बर्थ पर जा रहे थे वहां उनसे मुलाकात हुई और वे सज्जन तो भद्र पुरुष थे ही, उनकी श्रीमती जी बड़ी हंसमुख और मिलनसार महिला थी और वो अकेले जा रहे थे। मैगजीन में डूबने की कोशिश कर रहे थे लेकिन दोनों से इतने घुल मिल गए कि बात हुई बातों में घंटों का सफर कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। ऐसा होता है अक्सर। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि मुलाकात तो सभी करते हैं लेकिन मुलाकातों में जीते भी हैं, लेकिन ये मुलाकातें कैसी हैं और उसके मूल्यांकन क्या हैं ये कितने सोच पाते हैं। किंतु ये बहुत अच्छी बात है कि कुछ मुलाकातें याद बनकर हृदय में बस जाए तो उसका क्या ही कहना। सदियों से विभिन्न मुलाकातों के बीच ऐसी मुलाकात की तो प्रतीक्षा रहती है हमेशा। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि ट्रेन में सफर करते हुए एक लड़की और उनकी सहेलियों से मुलाकात हुई और अंताक्षरी वगैरह खेली और अभी उन्हें वो याद आती है, वो सुनहरी मुलाकात आज तक भुलाए नहीं भूलती है। हमारे एक और श्रोता है, उनका कहना कुछ अलग तरीके से है। वो कहते हैं कि सफर में न जाने कितने लोग साथ आते हैं, कितने साथ छोड़ देते हैं, कभी हिसाब नहीं रखा, क्योंकि चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला, वो इसमें बिलीव करते हैं। कोई बात नहीं, सफर तो हमें करना ही है, कभी कोई साथ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिले तो हमें अकेले ही चलना है, लेकिन ये सफर जो है वो जरूर तय करना है। फिलहाल सुरीला सफर में आप मेरे साथ हैं और हम बढ़ते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

0: अभिमान फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे, किशोर कुमार की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, एस डी बर्मन की तर्ज थी।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियां।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
1: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
1: बिल्कुल। वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम याद, प्रोग्राम सुरीला सफर। यादों की बात चली है तो यादों की महफिल बोलने वाली थी, लेकिन सुरीला सफर इस वक्त आप सुन रहे हैं मेरे यानी अनुराधा के संग। आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच चुके हैं और एक श्रोता लिखते हैं कि ट्यूशन पढ़ते समय शिक्षक द्वारा मेरी गलतियों पर मुझे डांटते देखकर उसकी नज़रें उठाना और फिर मुस्कुराना और फिर मुझसे नज़रें मिलते ही नज़रें झुकाकर बस मंद मंद मुस्काना, जाने कैसी बिजली सी कौंध गई थी दिल में और दिल रोशन हो गया था। संवाद का लेन देन तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ये सुनहरी यादें बनकर अब तक दिल में बसी हुई है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मुलाकातों का मौसम आ गया है तो गाने तो बनते हैं। बिल्कुल, गाने हम आपको सुनवा रहे हैं, लेकिन आप कौन से गीत का इंतजार कर रहे हैं ये जरूर लिख भेजिए। देखते हैं अब फेहरिस्त जो बाकी की बची है उसमें वो गीत आता है या नहीं। एक और श्रोता लिखते हैं कि वो अजनबी था मगर कुछ जाना पहचाना सा लगा, जैसे कोई भूला हुआ ख्वाब अचानक सामने आ गया। मुलाकात तो बस चंद लम्हों की थी पर उसकी खामोशी देर तक मेरे साथ चलती रही। जी हाँ, बिल्कुल, कुछ मुलाकातें एकदम खामोश रहती हैं, संवाद भी बहुत कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं, लेकिन वो एक चेहरा, वो एहसास कभी नहीं भूल पाता। चलिए बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

किशोर कुमार की आवाज में गीत धर्मात्मा फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। इंदिवर ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि एक ऐसी मुलाकात का जिक्र करना चाहूंगा जिसने मेरी सोच और शख्सियत को ही बदल दिया है। कुछ साल पहले अपने दोस्तों के साथ मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर एलिफेंटा केव्स जाने के लिए बोट की कतार में खड़े थे और वहां उन्होंने देखा कि एक बहुत ही मशहूर उद्योगपति अपने दोस्तों के साथ खड़े हैं और ठीक उनके पीछे खड़े हैं, और इन्होंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि आप लाइन में खड़े होने के बजाय पहले बोट में बैठ जाइए, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए मना किया और ये कहा कि मैं यहाँ एक आम नागरिक के तौर पर हूँ और मैं लाइन में ही खड़े रहूँगा। ये कहीं का जो बातें हैं कहीं ना कहीं उन्हें झकझोर के रख दिया और तब से उनकी सादगी के और भी ज़्यादा फैन हो गए। जी हाँ, ये तो है कि सादगी तो हमें ज़रूर सीखनी चाहिए जहाँ से भी हमें सीखने को मिले, और ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा हमें ऊंचाइयों तक लेकर जाती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती इस वक्त न जाने कितने सारे करोड़ों की तादाद में लोग सुन रहे होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए पेश हो रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा वो रिलेट कर पा रहे हैं गीतों से और बातों से। बहुत बहुत धन्यवाद। एक श्रोता लिखती हैं कि वो और उनके पति भी उन्हें रेडियो से ही मिले। सूरत FM पर उन्होंने ये गीत पसंद किया था और सामने जो बैंक में बैठे उनके पति हैं उन्होंने सुना था और बात भी पैसों पैसों की हुई थी क्योंकि वो बैंक में काम करते हैं, और इस तरह से कहीं ना कहीं उनका मिलना हुआ, बातचीत हुई और आगे उनकी शादी हुई। बहुत अच्छा लगा कि रेडियो के मार्फत आप मिले। हम चलते हैं आगे इस प्रोग्राम में।

0: किशोर कुमार की आवाज में गीत गोलमाल फिल्म से अभी आप सुन रहे थे, गुलजार ने इसे लिखा आर डी बर्मन की तर्ज। हमारे श्रोता लिखते हैं कि ये जो सुरीला सफर है इसमें गीत तो सुनने को मिलते ही अच्छे अच्छे, लेकिन साथ ही साथ हम संदेश भेजें या ना भेजें, लेकिन जो बाकी श्रोता लोग हैं उनके संदेश पढ़कर कहीं ना कहीं उनसे जुड़ाव महसूस होता है और ऐसा लगता है कि इस प्लेटफॉर्म पर आकर हम अपने संदेश अगर यहाँ पर लिखें तो कहीं ना कहीं उनसे एक रिश्ता बन जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे को श्रोता लिखते हैं कि मोहब्बत का अर्थ हमेशा साथ पाना नहीं, कभी कभी मिले हुए खूबसूरत पलों को मुस्कुराकर संजो लेना भी है, और ऐसा ही कुछ इबारत में एक छोटी सी मुलाकात के द्वारा बताया गया है। बिछड़ने की कसक तो है, लेकिन जाते जाते उन खूबसूरत याद जो है वो दिल में हमेशा जीवित रहनी चाहिए, ये भी बताया हुआ है। हमारी एक और श्रोता लिखती हैं कि जिंदगी के सफर में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो मंजिल नहीं बनते मगर सफर को यादगार बना जाते हैं। वक्त उन्हें दूर कर देता है लेकिन उनकी यादें दिल के किसी कोने में हमेशा महकती रहती है, और बस जब मन करता है हम उन्हें याद कर लेते हैं। ऐसे पलों को हमेशा याद करते रहना चाहिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि सफर के दौरान किसी अजनबी से सिर्फ एक मुलाकात होने के बाद कभी दोबारा मिलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो जो मुलाकात होती है वो बहुत से खूबसूरत पलों से जिंदगी को भर देती है। बिल्कुल सही कहा आपने।
1: अरे हे ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला

किशोर कुमार की आवाज में पड़ोसन फिल्म का ये छोटा सा गीत का छोटा सा हिस्सा हमने आपको सुनवाया। फिलहाल वक्त की कमी की वजह से हमें अलविदा कहना पड़ेगा। आपने आज का ये सफर, सुरीला सफर, तय किया अनुराधा के संग।

त्रिवेणी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा अगरकर देसाई। नमस्कार। दीवाना, ये शब्द सुनते ही मन में सबसे पहले प्रेम और जुनून की तस्वीर उभरती है। किसी के प्रति ऐसी गहरी

0: चाहत जिसमें इंसान अपने आसपास की दुनिया को कुछ देर के लिए भूल जाए उसे दीवानगी कहा जाता है। प्यार में डूबा व्यक्ति अपनी प्रिय की एक झलक के लिए बेचैन रहता है और उसकी मुस्कान में अपनी खुशियां तलाशता है। दीवानगी केवल प्रेम तक सीमित नहीं होती, किसी सपने।
1: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

दीवानगी में एक अजीब सी खूबसूरती होती है। जब इंसान किसी के प्यार में दीवाना होता है तो उसे हर तरफ उसी का चेहरा दिखाई देता है। मौसम सुहाना हो या उदास, हर एहसास उसी व्यक्ति से जुड़ जाता है। कभी उसकी आवाज दिल को सुकून देती है तो कभी उसकी दूरी बेचैन कर देती है। हिंदी फिल्मों और पुराने गीतों ने इस दीवानगी को बेहद खूबसूरती से शब्द और संगीत दिए हैं। इसलिए दीवाना शब्द सिर्फ पागलपन का पर्याय नहीं, बल्कि ऐसी भावनात्मक अवस्था भी है जहां दिल अपनी बात दिमाग से ज्यादा मानता है और प्रेम की अनुभूति जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाती है।

कई बार दीवानगी किसी इंसान के लिए नहीं बल्कि अपने सपनों के लिए होती है। कोई गायक संगीत का दीवाना होता है, कोई कलाकार अपनी कला का, तो कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को हासिल करने के जुनून में दिन रात मेहनत करता है। ऐसी दीवानगी इंसान को कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की ताकत देती है। यही कारण है कि दुनिया के कई बड़े काम उन लोगों ने किए जिन्हें अपने सपनों पर असाधारण विश्वास था। प्रेम की दीवानगी हो या सफलता की, इसकी असली खूबसूरती तब है जब वो इंसान को बेहतर बनने की प्रेरणा दे। शायद इसी एहसास को पुराने गीतों ने बार बार अपने अंदाज में आवाज दी है।

0: ये है विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को हथियार बनाने के खिलाफ चेतावनी दी। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त महीने में माल ढुलाई में 5.4% की वृद्धि दर्ज की। गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। इंडोनेशिया में 240 से अधिक यात्रियों वाली नौका के पलटने से लगभग 140 लोग और चालक दल लापता। और दुबई में एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के फाइनल में आज रात भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आज दूसरे और अंतिम दिन भागीदार देशों के मुख्य सत्र में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभों को विकासशील देशों की जरूरतों के अनुसार ढाला और उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
2: कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियलिटीज बट टुगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी। हमारी विविधता हमारी पहचान रहे, हमारा सहयोग हमारी प्रेरणा बने और हमारी प्रगति पूरी मानवता के काम आए।
1: प्रधानमंत्री ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों यानी क्रिटिकल मिनरल्स का हथियार की तरह प्रयोग प्रगति के मार्ग में बड़ी बाधा बन सकती है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों ने नई तकनीकों को अपनाने में समावेशिता पर विशेष जोर दिया है। श्री मोदी ने कहा कि आपदाओं और बाधाओं ने यह साबित किया है कि आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता।
2: आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है। चुनौतियों को समय रहते पहचानना, उनके लिए तैयार रहना और तुरंत कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक है। इसी सोच के साथ इन्फेक्शियस डिजीज के प्रिवेंशन और रिस्पॉन्स के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सहमति बनी है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अर्ली वार्निंग डेटा इंटीग्रेशन गाइडलाइन तैयार की गई है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे उद्यमों को ज्ञान, वित्त और नए बाजारों से जोड़ने के लिए ब्रिक्स एमएसएमई सहयोग पोर्टल स्थापित करने की पहल का प्रस्ताव रखा गया है। उन्होंने बताया कि शहरों के बीच बेहतर तौर तरीकों को साझा करने की सुविधा के लिए ब्रिक्स अर्बन मोबिलिटी हब का गठन किया गया है।
2: अर्बन मोबिलिटी हब की स्थापना की गई है। भारतीय सभ्यता में प्रकृति को माँ का दर्जा दिया गया है। सदियों से हमारी मान्यता रही है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विकल्प नहीं पूरक है। ब्रिक्स में भी हमने मानव विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन पर बल दिया है। यही सस्टेनेबिलिटी का आधार है। ये भावी पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। इस दिशा में हमने कई पहलुओं पर प्रगति की है।
1: श्री मोदी ने बताया कि स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण के लिए ब्रिक्स से डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है।
2: स्मार्ट ग्रिड्स और एनर्जी स्टोरेज के लिए हमने ब्रिक्स डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया है। यह हमारे क्लीन एनर्जी सिस्टम्स को अधिक रिलायबल, एफिशिएंट और एक्सेसिबल बनाने में मदद करेगा। एग्रो इकोलॉजी और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस पारंपरिक ज्ञान को मॉडर्न साइंस से जोड़ेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों की जरूरतों को पूरा करेगा।
2: ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों के लिए नई संभावनाएं तैयार करेगा। इसके माध्यम से एआई, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को किसानों की वास्तविक आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाएगा। टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स का वेपनाइजेशन हमारी साझा प्रगति में बाधा बन सकता है, इसलिए हमने टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन में इंक्लूसिविटी पर बल दिया है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है।
2: भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास रहा है कि ब्रिक्स कोऑपरेशन केवल सरकारों तक सीमित न रहे। हमारे एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स, रिसर्चर्स, विमेन, यूथ और सामान्य नागरिक भी इसके सक्रिय भागीदार बने।
1: अब चलते हैं भारत मंडपम, जहां हमारे संवाददाता दीपेंद्र मौजूद हैं। दीपेंद्र, सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की मुख्य बातें क्या हैं?
3: देखिए जिसका आपको बता दूं कि वर्ष 2006 में चार देशों के साथ शुरू हुए ब्रिक्स समूह में अभी 11 सदस्य देश और 10 साझेदार देश शामिल हैं। ब्रिक्स देश दुनिया की करीब 50% आबादी और वैश्विक व्यापार के लगभग 25% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के लिहाज से बात करें तो ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार जो है पिछले 5 सालों में दोगुने से ज्यादा बढ़ा है, जो दर्शाती है कि ब्रिक्स समूह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक और व्यापारिक साझेदार के रूप में उभर रहा है। ब्रिक्स की स्थापना की बात करें तो 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं और भारत चौथी बार जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है और इस

0: दिल्ली में अलग अलग विषयों पर लगभग 350 से अधिक बैठकें हो चुकी हैं। शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन कल सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया, जो भारत के लिहाज से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। इसमें ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। आपको बता दूं कि भारत की अध्यक्षता में हो रहे इस शिखर सम्मेलन में भारत ने ग्लोबल साउथ की एक प्रमुख आवाज और समर्थक के रूप में अपनी वैश्विक भूमिका को और मजबूत किया है। जी कनक,
1: संबोधन की मुख्य बातें क्या थी प्रधानमंत्री की?
0: देखिए, संबोधन में प्रधानमंत्री ने कई सारे बातें की, जिसमें सभी देशों को साथ लेकर चलने की बात थी। उसमें सबसे जो प्रमुख बात थी वो थी साउथ की आवाज, जो वैश्विक भूमिका जो है ग्लोबल साउथ, उस पर उनकी रही। जी,
1: जानकारी के लिए धन्यवाद दीपेंद्र। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। श्री मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों सहित नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। और जानकारी के साथ है हमारे संवाददाता अक्षित वैद्यान। अक्षित, इन बैठकों में किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है?
2: जी कनक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आज भी कई अहम द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पिछले दो दिनों से लगातार दुनिया के अलग अलग नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं और आज भी बैठकों का ये सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी आज कजाकिस्तान, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों से के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। वहीं नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपतियों के साथ भी प्रधानमंत्री की अहम बैठकें निर्धारित हैं। यानी आज का दिन भी कूटनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इन बैठकों पर सबकी नजर टिकी है, जिनके माध्यम से भारत को द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने और क्षेत्रीय और वैश्विक विकास के विषयों पर अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। कुल मिलाकर ब्रिक्स के मंच से इतर प्रधानमंत्री मोदी की ये द्विपक्षीय मुलाकातें भारत की कूटनीति सक्रियता और वैश्विक साझेदारियों को नई दिशा देने के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। जी कनक,
1: धन्यवाद अक्षित। पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि ब्रिक्स की सफल बैठक और नई दिल्ली घोषणा पत्र का अपनाया जाना भारत और वैश्विक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपने सभ्यतागत मूल्यों में दृढ़ विश्वास रखते हुए एक बार फिर अपनी कूटनीति की शक्ति का प्रदर्शन किया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ब्रिक्स में ऐसे कई ठोस कदम उठाए गए जिससे भारत विकसित देश बनने की राह पर तेजी से अग्रसर होगा।
3: भारतीय हितों की सर्वाधिक रक्षा हो, भारतीय हितों का संरक्षण हो, यही मूल उद्देश्य होता है किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का, कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये भारत के लिए गर्व का विषय है कि भारत में 11 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए और बहुत से विषयों पर चर्चा हुई। भारत विकसित भारत बने, इस दिशा में बहुत से ठोस कदम भी ब्रिक्स में भी उठाए गए।
1: भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ब्रिक्स में भारत की विदेश नीति सफल हुई है।
4: ये बहुत ही ऐतिहासिक सफलता है ब्रिक्स सम्मेलन की। इतनी बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं, उन्होंने एक वैकल्पिक बहुत प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय मंच रखा है। और राष्ट्रपति पुतिन ने एक बहुत बड़ी बात कही कि आज ब्रिक्स का जीडीपी पूरे यूरोप अमेरिका के जीडीपी से ज्यादा है। और जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ पहलगाम में जो हुआ, एक जबरदस्त कंडेमनेशन हुआ है, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो भारत की विदेश नीति बहुत ही सफल हुई।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त माह के दौरान माल ढुलाई में सालाना आधार पर 5.4% की वृद्धि दर्ज की है। इस अवधि में रेलवे ने 137.9 मिलियन टन माल की ढुलाई की, जबकि अगस्त 2025 में यह आंकड़ा 130.9 मिलियन टन था। अगस्त 2025 की तुलना में इस बार माल ढुलाई से मिलने वाले राजस्व में भी 6.27% की वृद्धि हुई है। मिजोरम में बैराबी सैरांग रेलवे लाइन को शुरू हुए आज एक वर्ष हो गया है। इस रेलवे लाइन का उद्घाटन पिछले वर्ष आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने आज मुंबई में श्री गणेश ज्ञानरात्रि शीर्षक वाली पांडुलिपियों की एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि भारत एक समृद्ध और तेजस्वी ज्ञान परम्परा का स्वामी है।
5: तो जो राष्ट्र अपनी स्मृति, इतिहास, संस्कार, भाषा, अभिलेख, परंपराओं की रक्षा नहीं कर सकता, वो कितना भी शक्तिशाली हो उसको समाप्त होने में देर नहीं लगती है। और जो राष्ट्र अपनी स्मृति, इतिहास, परंपराएं, संस्कार, अभिलेख, भाषाएं, व्याकरण की रक्षा करता है वो कितने भी साल गुलाम रहे उसको कोई गुलाम नहीं बना सकता है। भारत इसका उदाहरण।
1: गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई है। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात के नवसारी, वलसाड़ और केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दादरा और नगर हवेली में अत्यंत भारी बारिश की आशंका जताई है। अमरेली, भावनगर, भरूच, सूरत, तापी और डांग जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान किया गया है। अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और गिर सोमनाथ सहित 13 अन्य जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। आज सुबह 6 बजे तक राज्य के 193 तहसील में बारिश दर्ज की गई। हर्षल पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। आज मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ, तेलंगाना, विदर्भ और मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस दौरान महत्वपूर्ण नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समापन समारोह में प्रतिभागी देशों की सहभागिता के लिए उनका आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए चीन को शुभकामनाएं भी दी। भारत ने नेपाल के बाढ़ प्रभावित बेतरावती क्षेत्र में यातायात और संपर्क व्यवस्था को बहाल करने के लिए 70 मीटर लंबे बेली ब्रिज के पुर्जों की पहली खेप भेजी है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने बताया कि पुल के पुर्जों की ये पहली खेप कल हेटौड़ा में नेपाल के सड़क प्रभाग को सौंप दी गई। इंडोनेशिया में आज जावा सागर में खराब मौसम के कारण 240 से अधिक यात्रियों वाली एक नौका के पलटने से लगभग 140 लोग और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल ने बताया कि कम से कम 102 लोगों को बचा लिया गया है और एक यात्री का शव बरामद किया गया है। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से आज रात 8 बजे होगा। सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को हथियार बनाने के खिलाफ चेतावनी दी। 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त महीने में माल ढुलाई में 5.4% की वृद्धि दर्ज की। गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। और दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में आज रात भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: ये है विविध भारती। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

जब जब फूल खिले, ये था फिल्म का नाम। मोहम्मद रफी की आवाज में गीत आप सुन रहे थे। नंदा ने साथ दिया, आनंद बख्शी ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज।

0: मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में ये गीत तेरे घर के सामने फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा, एस डी बर्मन की तर्ज।
1: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
2: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर, बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
1: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत अभी आप सुन रहे थे। तीन देवियां फिल्म का नाम मजनू सुल्तानपुरी ने से लिखा, एस डी बर्मन की तर्ज थी।
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा,
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

0: मधुमति फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर मन्ना डे और साथियों की आवाजों में। शैलेंद्र ने इसे लिखा, सलिल चौधरी का संगीत।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियां।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
1: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

मुकेश की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे हिमालय की गोद में, फिल्म का नाम आनंद बख्शी ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे यहीं संपन्न होता है।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

अमित कुमार की आवाज में ये गीत तेरी कसम फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और आरडी बर्मन का संगीत था। इस गीत को सुनना चाहा था समलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, इशिका यादव ने। नेपाली पारा नाजिरगंज, हावड़ा वेस्ट बंगाल से दीपक स्वीटी, उषा ज्योति, किरण दिरशा, रितेश लिंबू और उनका परिवार। तेलंगाना से मोहम्मद बुरहाद्दीन और यूसुफुद्दीन ने। अब्दुल बाबा अंजाना ने भी इसे सुनना चाहा था। वाड़ी वडोदरा गुजरात से गिरीश बाम, वैशाली बाम, अजिंक्य और

किशोर कुमार को आप सुन रहे थे इस गीत में। अनुरोध फिल्म का नाम आनंद बख्शी ने से लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। और इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी कोल सिटी बरका गाना से अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू, तस्नीम, निप्पी साहनी, मोहम्मद अफजाल इब्राहिमी, पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्विनी और गोविंद चुग ने, परसा टोला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसीहा, सिलोचनी मसीला और तुषारिणी, साथ ही साथ खुमेंद्र मसीहा ने से सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी। फ्रेंड्स कॉलोनी बेंगलोर से आरिफ हुसैन और मोहम्मद हुसैन ने, साथ ही पटवा हिम्मतलाल हरकचंद ने, वर्धमान नगर जैन सोसाइटी भचाऊ कच्छ भुज से।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे इज्जत फिल्म से। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण ने। उल्हास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति और चेतन शामतकर ने। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डेनी पवार, मनीष पवार। गांव चलाना काठियावाड़ से सुलेमान भाई दल, इकबाल खलील और महबूब दल ने। पुराना तालाब डुमराव से वली अल्लाह अंसारी, आसमा नाज अंसारी, वसीम अकरम, अजीम वकार और बिटिया सोनम ने। इंदिरा विहार दिल्ली से डब्लू अंसारी और बेबी अंसारी ने इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में गीत आप सुन रहे थे साजन बिना सुहागन फिल्म से, इंदिवर ने से लिखा, उषा खन्ना का संगीत। और इस गीत को सुनना चाहा था लावरिया भेरू इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमिला बामनिया, नंदिनी, मुस्कान, नीलम और उनका समस्त परिवार, कपाई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी, हर्षिता और अभिषेक, वरोड़ा चंद्रपुर से लवकुश खाडिलकर, उमा देवी खाडिलकर, रोहित और प्रणीत ने, डबवाली हरियाणा से जेके बोकोलिया, सुनीता बोकोलिया, संजय, अनिल, मीनू ने, और अकोला महाराष्ट्र से इस गीत को सुनना चाहा था गजानन कुम्हार, पद्मावती कुम्हार, विशाल, ज्योति, मधुर और उनके परिवार ने।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
1: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मन चाहे गीत।

चलते चलते ये गीत पाकीज़ा फिल्म से हमने आपको सुनवाया और इस गीत को सुनना चाहा था गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़ और विशाल नेशा ने, पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार झाझोरिया, गीता रानी, गगनदीप और आरजू ने, रामनाहली बेंगलुरु से महमद आरिफ, अरफा फातिमा, एमएच शरीफ और आरिफ हुसैन ने, तालुका उमरखेंड ढांकी से राम गाड़ेकर, सुनीता गाड़ेकर और अभिजीत, साथ ही कोमल अभिषेक, रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक और शोभा नायक, साथ ही उनका समस्त डागला परिवार इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम मनचाहे गीत यहीं संपन्न होता है।

0: यह है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग, श्रोताओं, नाट्य तरंग में आज आपको सुनवाते हैं नाटक साबुन की टिकिया। साकी के लिखे नाटक का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण है। रूपांतरकार शैलेंद्र, निर्देशक विजय दीपक छिब्बर। तो आइए सुनते हैं नाटक साबुन की टिकिया।

0: छोटी, मेरी तो समझ में नहीं आता हम इस पार्क में क्यों चले आए।
1: क्यों, तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा फिलिप?
0: अच्छा लगने को यहाँ क्या है, क्या मैं जान सकता हूँ?
1: फिलिप, यहाँ कुछ नहीं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ।
0: अच्छा, मिस्टर नॉर्मन गॉड्स बाय, आप जरा उस बहुत कुछ पर रोशनी डालेंगे जिसे आपकी सूक्ष्म दृष्टि ने देखा है और ये नाचीज अपनी खुली आंखों से भी नहीं देख पाया।
1: देखो फिलिप, इस शहर में सभी लोग सुखी और सफल नहीं। बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो जीवन के संघर्ष में अभी तक असफल रहे हों और निराशा का मुंह देख रहे हैं, लेकिन वो अपनी निराशा और असफलता को दूसरों के सामने जाहिर नहीं करना चाहते। ऐसे लोग शाम के धुंधलके में यहाँ आकर बैठ जाते हैं ताकि कोई भी उन्हें पहचान ना सके।
0: लेकिन गोटी, इसमें पार्क की खूबी कहाँ से आ गई?
1: देखो देखो देखो, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। जिंदगी में थके हारे ये लोग अपने दुखी मन को थोड़ी सी शांति, थोड़ा सा आनंद देने के लिए यहाँ आ जाते।

0: इस शांत वातावरण में, चंद्रमा की चांदनी में कुछ देर बैठकर उन्हें बहुत सुकून मिलता है। वो अपना दर्द, अपनी परेशानी सब भूल जाते हैं और जब यहां से जाते हैं तो चेहरे पर उदासी की जगह ताजगी और निराशा की जगह आशा झलकने लगती है। अब बताओ फिलिप, क्या ये कम बड़ी बात?
1: वाकई वाकई बहुत बड़ी बात है। और गौश भाई साहब, अब मेरी समझ में आया कि आप आज यहां क्यों तशरीफ लाए हैं।
0: मैं?
1: हाँ, तुम। आज के दिन तुम्हारी मानसिक स्थिति भी किसी निराश और हारे हुए आदमी जैसी ही है।
0: कैसे?
1: तुम्हारी प्रेमिका ने अचानक तुमसे मुंह फेर लिया और उधर बिजनेस में भी थोड़ा घाटा हो गया। ऐसी निराशा में, जैसा कि तुम्हारा कहना है, यहां आकर ही तुम्हें कुछ सुकून मिल सकता था, है ना?
0: नहीं नहीं नहीं दोस्त, ये बात नहीं है। रोजली ने मुझसे मुंह नहीं मोड़ा, बस थोड़ा सा नाराज हुई है, जो कि उसकी आदत है। दो दिन बाद गुस्सा थूक कर खुद ही मुझसे मिलने चली आएगी।
1: अच्छा, ऐसा?
0: हाँ, हमारी दोस्ती इतनी आसानी से टूटने वाली नहीं है। अब रही बात बिजनेस की, तो तुम जानते ही हो कि बिजनेस में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते। आज घाटा हुआ तो कल मुनाफा हो सकता। सच मानो फिलिप, यहाँ आने की वजह मेरी निराशा कतई नहीं है। हाँ,
1: तो फिर कौन सी वजह तुम्हें आज यहाँ खींच लाई और तुम मुझे खींच लाए?
0: फिलिप, शायद मैंने तुमसे कभी जिक्र नहीं किया, मैं अक्सर इस पार्क में आता हूँ।
1: अच्छा?
0: जहाँ आते जाते लोगों के चेहरे पढ़ना मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। अब तुम ही देखो, वो उस बेंच पर अभी अभी जो साहब आकर बैठे ना, उनका चेहरा देखकर ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने मकान का किराया नहीं दिया और मकान मालकिन के डर से यहाँ चिपे बैठे।
1: अच्छा, वो देखो, वो औरत जो उधर घास पर बैठी है, उसका चेहरा क्या बता रहा है?
0: साहब बता रहा है कि उसकी मैडम ने उससे महीने भर काम कराया, लेकिन तनख्वाह देते समय इधर उधर के नुकसान थोप कर सिर्फ 15 दिन के पैसे पकड़ा दिए। लेकिन तुम देखना, थोड़ी देर बाद ही इनके चेहरों के भाव बदल जाएंगे। किराएदार कल का पक्का वादा करके आत्मविश्वास के साथ अपने कमरे में जाएगा और वो औरत अपना दब्बूपन छोड़कर मालकिन से पूरी तनख्वाह वसूल करने का निश्चय लेकर घर जाएगी। हाँ, देखना।
1: तुम्हारी संवेदनशीलता की दाद देनी पड़ेगी यार। तुम्हें तो कोई लेखक या चित्रकार होना चाहिए था।
2: पता नहीं यार, तुम लोहे के धंधे में कैसे पड़ गए।
0: नहीं दोस्त, नहीं, बिजनेस से तो मुझे शुरू से ही लगाव रहा है, ये सब तो खाली वक्त के शगल है।
1: अरे घोटी, हाँ। भाई तुम्हारा शगल पूरा हो गया हो तो अब चलें यहां से।
0: हाँ चलो।
1: देखो भाई, मैंने तुम्हें इतना वक्त दिया है, अब चलकर मुझे कहीं कुछ बढ़िया सा खिलाओ ना।
0: नहीं नहीं नहीं, आज नहीं, कल या किसी और दिन।
1: क्यों भाई?
3: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
4: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
1: थोड़ा इंतजार कर लोगे क्या?
0: नहीं नहीं नहीं फिलिप, नहीं, डॉक्टर के क्लिनिक में दूसरे मरीजों की शक्ल घूरते रहने से अच्छा है कि मैं यहीं बैठकर तुम्हारी राह देखूं।
1: ठीक है, मैं जल्दी ही वापिस आता हूँ।
0: हाँ।
1: लेकिन ध्यान रहे, इस बीच अपना और नुकसान मत कर लेना। हाँ।

0: बेटा क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ?
1: जी जरूर जरूर बुजुर्गवार, बेंच में बहुत जगह है, आप आराम से बैठिए। आइए आइए।
0: आराम अब कहाँ, अब तो ऊपर जाकर ही आराम नसीब होगा।
1: पर जाने की उम्र से तो ये अभी बहुत दूर लगते हैं, फिर ऐसी निराशा की बातें क्यों कर रहे हैं? ऐसा मत कहिए। अच्छा आप यहाँ रोज आते हैं?
0: और कहाँ जा सकता हूँ, किसी तरह वक्त तो काट नहीं है।
1: लगता है आपके घर में कोई और सदस्य नहीं है, आप अकेली रहते हैं क्या?
0: हाँ ऐसा ही समझो, मेरी पत्नी पिछले साल निमोनिया से चल बसी। घर में दो शादीशुदा बेटे जरूर हैं, लेकिन किसी के पास मेरे लिए वक्त नहीं है। मुझे घर में अकेला छोड़कर बेटे बहुएं सब बाहर चले जाते हैं।
1: अब कहाँ कहाँ चले जाते हैं?
0: अपनी अपनी नौकरी पर।
1: अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, कोई निठल्ला नहीं बैठा रहता और इस तरह घर में कुछ पैसा भी आ जाता है, गृहस्थी और अच्छी तरह चलने लगती है।
0: लेकिन मैं तो अकेला रह जाता हूँ, रिटायर होने का ये मतलब तो नहीं कि मुझसे कोई बात करने वाला ना हो, कोई हंसने बोलने वाला ना हो। मैं किस चीज से अपना दिल बहलाऊं, सच मानो ये उपेक्षा मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। ये क्या सहानुभूति दिखाने की बजाय तुम हंस रहे हो?
1: अरे क्या करूं बुजुर्गवार, आपने तो तिल का ताड़ बनाकर रख दिया, जरा सी बात को लेकर आप इतने उदास हैं? है?
0: ये जरा सी बात है, है? इस उम्र में इतना अकेलापन?
1: श्रीमान इस अकेलेपन का इलाज भी आप ही के पास है, आजमा कर देखिए।
0: मैं समझा नहीं तुम कहना क्या चाहते हो।
1: श्रीमान आप अपने आप को घर में बंद क्यों करते, बाहर निकलिए, अपने पुराने दोस्तों से मिलिए, अपनी उम्र के कुछ नए लोगों से जान पहचान बढ़ाइए, कोई ऐसा हल्का फुल्का काम शुरू कीजिए जिसमें आपकी दिलचस्पी हो, फिर देखिए ना आपको वक्त का पता चलेगा ना ही अकेलेपन का एहसास होगा। क्यों क्या सोचने लगे श्रीमान?
0: नौजवान तुम्हारी बात में वजन है, इस पर अमल करके देखता हूँ कितनी कामयाबी मिलती है। अच्छा अब चलूंगा।
1: अरे ऐसी जल्दी क्या है, अभी अभी तो आप आए हैं।
0: आज कुछ जल्दी है, ये थैला देख रहे हो ना?
1: हाँ
0: यहाँ आते हुए बाजार से कुछ जरूरी चीजें खरीदी थी।
1: अच्छा अच्छा
0: इन्हें घर पहुंचाना है। अच्छा
1: हाँ जरूर जरूर जरूर। फिलिप अभी तक नहीं आया, कह रहा था डॉक्टर की क्लिनिक से जल्दी ही लौटूंगा, इतनी देर हो गई लेकिन उसका इंतजार तो कर नहीं पाया। एक जगह बैठे बैठे पांव सोने लगे, पार्क का एक चक्कर लगाकर आता हूं।

0: बेंच पर अब ये कौन जनाब आकर विराजमान हो गए? लगता है इस बेंच में कोई खास बात है, तभी जिसे देखो आकर यहीं बैठ जाता। इस बार गुन बुजुर्गवार की जगह एक खूबसूरत नौजवान ने ले ली, लेकिन इसके चेहरे पर उन साहब से ज्यादा उदासी छाई। अरे ये तो जैसे अपने आप से कुछ बोलता भी जा रहा है। सुनना चाहिए ये नौजवान क्या बड़बड़ा रहा है।
1: साइमन साहब, आप तो अपने आप को बहुत समझदार और होशियार समझते थे, आज देख लिया आप कितने होशियार हैं। आप जरा भी सावधान रहते तो ये नौबत नहीं आती। अब भुगतिए अपनी लापरवाही का नतीजा। और जैसा बुरा दिन तो
0: माफ करना जेंटलमैन, पूछ सकता हूँ आप किससे बातें कर रहे हैं?
1: और किससे करूंगा साहब, नील साइमन से, यानी अपने आप से ही बात कर रहा हूँ। बात नहीं कर रहा बल्कि अपने आप को कोस रहा हूँ।
0: साइमन साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप जरूर किसी परेशानी में हैं।
1: जिस भंवर जाल में

0: मैं फंसा हूँ, अगर आप फंस जाते तो मेरी ही तरह परेशान मिलते।
1: अच्छा,
0: समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होगा।
1: ओ, किसी ने आपको धोखा दिया है क्या?
0: अरे नहीं साहब, अपनी इस दुर्दशा के लिए और कोई दूसरा नहीं, मैं खुद जिम्मेदार हूँ। मैंने एक बहुत बड़ी बेवकूफी कर डाली, उसी का नतीजा भुगत रहा हूँ।
1: आखिर बात क्या हो गई, जरा मुझे बताएंगे?
0: अरे क्या बताऊँ, दरअसल बात यह हुई कि मैं आज दोपहर लंदन आ गया था।
1: अच्छा।
0: और क्योंकि मैं यहाँ पहली बार आ रहा था, इसलिए मेरे दोस्त ने मुझे एक अच्छे होटल का पता दे दिया था।
1: हाँ, वो कौन सा होटल?
0: अब वो होटल क्या, हाँ, पेंटागोनियन होटल, वर्कशायर स्क्वायर।
1: पेंटागोनियन होटल? लेकिन वो होटल तो शायद अब नहीं रहा।
0: हाँ वही तो, स्टेशन से टैक्सी लेकर मैं सीधा वर्कशायर स्क्वायर पहुंचा, लेकिन वहां जाकर पता चला कि होटल को कुछ दिन पहले गिरा दिया गया और उसकी जगह वो सिनेमा घर बना रहा है। कुछ देर मैं यूं ही खड़ा उस इमारत को देखता रहा, समझ में नहीं आ रहा था कि कहां जाऊं, कहां ठहरूं।
1: वहां तो आसपास कई अच्छे होटल हैं, आप कहीं भी चले जाते।
0: अब ये सब तो आप जानते हैं ना, अब मैं तो इस शहर में बिल्कुल अनजाना था। खैर, मैंने टैक्सी वाले से किसी अच्छे होटल में ले चलने को कहा तो वो मुझे आसपास नहीं बल्कि काफी दूर ले गया।
1: आपको जानबूझकर दूर ले गया ताकि टैक्सी का अच्छा भाड़ा बन जाए।
0: हो सकता है, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, पैसे की मुझे कोई कमी नहीं है, बल्कि मैंने टैक्सी ड्राइवर को अच्छी खासी टिप भी दी। वो इसलिए कि वो होटल बहुत अच्छा और आरामदायक था।
1: अच्छा अच्छा।
0: खैर, होटल पहुंचकर मैंने अपने घर वालों को चिट्ठी लिखी और उन्हें अपना नया पता भी लिख दिया, और फिर एक कप चाय पीकर मैं साबुन खरीदने बाहर बाजार की ओर निकल पड़ा।
1: साबुन खरीदने?
0: जी
1: साइमन साहब, मैं कुछ समझा नहीं।
0: वो आप समझेंगे भी कैसे, मैं आपको क्या बताऊं मिस्टर, वो सॉरी, आपका शुभ नाम जान सकता हूं?
1: हाँ, गोट्स बाय, नॉर्मन गोट्स बाय। वैसे आप मुझे गोटी कहकर बुला सकते हैं।
0: ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ तो मिस्टर गोटी, मैं आपको क्या बताऊं, मैं जब भी कहीं बाहर जाता हूं साबुन अपना ही इस्तेमाल करता हूँ। होटल का साबुन इस्तेमाल करना मुझे पसंद नहीं है।
1: अजीब आदत है।
0: हाँ है तो अजीब ही। वैसे शुरू से ही मैं अपना अलग साबुन रखता हूँ, इस बार मैं सामान में साबुन रखना भूल गया। खैर, मैंने होटल में एक प्याला चाय पी और साबुन खरीदने निकल पड़ा। साबुन खरीदा और घूमता फिरता दूर तक निकल गया। सोचा बाजार की रौनक ही देख लूं।
1: लगता है आपको हमारा शहर बहुत पसंद आ गया। वैसे लंदन बुरा शहर नहीं है, आपका क्या ख्याल?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप, लंदन बड़ा ही अच्छा शहर है, लेकिन मैंने अपनी बेवकूफी से यहाँ रहने का सारा मजा किरकिरा कर दिया।
1: वो कैसे?
0: अब वही बता रहा हूँ। अब देखिए, काफी दूर निकल जाने के बाद मैंने सोचा कि अब लौटना चाहिए। बस मैं वापस जाने के लिए मुड़ा, अचानक मुझे ख्याल आया कि मैं उस होटल का नाम ही भूल गया हूँ।
1: अरे
0: अब होटल का नाम ही नहीं, मैं उस सड़क उस एरिया का नाम भी नहीं जानता था जहाँ वो होटल था।
1: तो फिर आपने क्या किया?
0: क्या करता, कभी कभी एक सड़क पर चला जाता, कभी दूसरी तरफ निकल जाता, लेकिन ना तो वो होटल मिला और ना ही उसका नाम याद आया। तब से मैं यूं ही भटक रहा हूँ। मिस्टर गोटी, जो आदमी लंदन पहली बार आया, जिसका यहाँ ना कोई दोस्त हो ना रिश्तेदार, अब उसकी परेशानी का आप अच्छी तरह अंदाजा लगा सकते हैं।
1: हाँ वाकई परेशानी की बात तो है साइमन साहब।
0: हाँ,
1: मैं क्या आपकी समस्या का कोई हल नहीं है?
0: समस्या का एक ही हल है, वो ये कि मैं अपने घर पर तार कर दूं और उनसे होटल का नाम पता भेजने को कहूं। लेकिन वो इसमें भी एक मुश्किल है।
1: वो कैसी मुश्किल?
0: अब देखिए, घर वालों को मैंने आज ही चिट्ठी भेजी है, उन्हें 2-3 दिन बाद चिट्ठी मिलेगी, तब तक मैं कहां रहूंगा, कहां जाऊंगा? सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा है।
1: देखिए, इस तरह परेशान होने से क्या होगा, शांत रहिए और सोचिए कि इस उलझन से निकलने का अब क्या रास्ता हो सकता है। अरे हाँ हाँ साइमन साहब, एक रास्ता तो है।
0: क्या?
1: आप अपने घर तार भेजिए और कल परसों तक जब तक उनका जवाब आता है।

0: आप किसी दूसरे होटल में चले जाइए। आपके बटुए में फिलहाल इतने पैसे तो होंगे कि आप कोई सस्ता सा होटल।
1: मिस्टर गोटी, वही तो समस्या है। इस वक्त मेरी जेब बिल्कुल खाली है।
0: ओह,
1: दरअसल मैं एक शिलिंग जेब में डालकर होटल से बाहर निकला था, जो मैंने साबुन में खर्च कर दिया। अब तो जेब में बस ये दो पेंस पड़े हुए हैं। ये देखिए, काश मैं होटल से अपना बटुआ लेकर चलता।
0: कहीं ये आदमी छूट तो नहीं बोल रहा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये आदमी कपड़ों से, बोलचाल से संपन्न ही दिखाई देता है। बेचारा आज कैसी परेशानी में पड़ गया।
1: मिस्टर गोटी,
0: हाँ,
1: आप क्या सोचने लगे?
0: जी वो
1: समझ गया। आप सोच रहे हैं कि मैंने अपने मन से किस्सा गढ़कर आपको सुनाया है। नहीं, इसमें आपका दोष नहीं। ये वाकया है ही इतना अजीब कि कोई आसानी से यकीन नहीं करेगा।
0: नहीं, साइमन साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने जो कहानी सुनाई है उसका एक एक शब्द सच हो सकता है। मेरे साथ एक बार बिल्कुल ऐसी ही घटना हो चुकी है। हाँ।
1: अच्छा?
0: हाँ, एक बार पेरिस में मैं भी कुछ ऐसी ही भूल कर बैठा था।
1: हो,
0: और मजेदार बात यह है कि मैं अकेला नहीं था।
1: हा?
0: मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था।
1: अच्छा?
0: हाँ, हम दोनों ही भुलक्कड़ निकले। गनीमत थी कि हमें इतना याद रहा कि हमारा होटल नहर के किनारे। बस नहर के साथ साथ चलते रहे और किसी तरह होटल पहुंच ही गए।
1: चलिए, तब तो आपको मेरी बात पर पूरी तरह विश्वास हो गया। क्या है मिस्टर गोटी, के अगर मैं आपकी तरह विदेश में रास्ता भूल गया होता तो इतना घबराता नहीं, लेकिन अपने ही देश में मैं।
0: अरे ये आप क्या कह रहे हैं, पराए देश में तो आदमी और भी ज्यादा घबरा जाता है।
1: नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए, अगर मैं विदेश में होता तो ऐसी स्थिति में अपने दूतावास से जरूर मदद ले सकता था।
0: हाँ,
1: लेकिन यहाँ तो मैं अपने ही देश में हूँ। गोटी साहब, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस वक्त मैं अपने आप को कितना असहाय महसूस कर रहा हूँ।
0: साइमन साहब, मुझे आपसे पूरी सहानुभूति है। क्या आपका होटल ढूंढने में मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ?
1: नहीं, इस तकलीफ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। मेरे साथ आप भी खामखा इधर से उधर भटकते रहेंगे। अब तो थेम्स के किनारे मैदान में रात गुजारने के सिवाय और कोई चारा नहीं। अब मिस्टर गोटी,
0: हाँ, कहिए।
1: हाँ, आप अगर मेरी मदद करना ही चाहते हैं तो।
0: हाँ, बताइए, संकोच मत कीजिए, बताइए ना।
1: क्या आप मुझ पर विश्वास करके मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? सिर्फ एक दो दिन के लिए, जब तक मैं अपने होटल नहीं पहुंच जाता। बहुत ज्यादा नहीं, बस इतने कि दो दिन अच्छी तरह बिता सकूं, बस।
0: सचमुच ये आदमी मुसीबत में है, इसकी मदद करनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है ये मेरे पैसे जरूर लौटा देगा।
1: मिस्टर गोटी, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। बिल्कुल नहीं।
0: नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए साइमन साहब। मुझे पूरा विश्वास है मैं आपकी मदद जरूर करूंगा।
1: शुक्रिया।
0: हाँ, शुक्रिया।
1: इस भलमन साहब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप फिर कुछ सोचने लगे?
0: हाँ, इस बार जरूर कुछ सोच रहा हूँ। साइमन साहब
1: जी,
0: आपने कहानी तो विश्वास करने लायक सुनाई है।
1: कहानी?
0: लेकिन इसमें एक कमजोर कड़ी है। वो खासी कमजोर कड़ी है।
1: मैं कुछ समझा नहीं।
0: साइमन साहब, आप वो साबुन नहीं दिखा रहे हैं जो आपने खरीदा था? मैं वो साबुन देख सकता हूँ?
1: वो साबुन की टिकटिकिया? हाँ, मेरी जेब में होनी चाहिए। अभी दिखाता हूँ। यहाँ इस जेब में?
0: हाँ,
1: इसमें भी नहीं है।
0: कोट की सारी जेबें अच्छी तरह देख लीजिए। हाँ,
1: वही देख रहा हूँ। नहीं।

0: नाम नहीं है, कहीं नहीं है, लगता है वो साबुन की टिकिया भी कहीं खो गई है।
1: खो गई, एक ही दिन में अपना होटल भूल जाना और साबुन भी खो देना,
0: जी
1: ये कुछ विश्वसनीय नहीं लगता साइमन साहब।
0: लेकिन मेरी बात
1: आपको कोई ठोस कहानी गढ़नी चाहिए थी जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती, ये कहानी तो पिस हो गई साइमन साहब। अब किसी और आदमी से पैसे ऐंठना चाहो तो कोई ठीक बहाना बनाइएगा वरना। अरे कहाँ चल दिए साइमन साहब, कहाँ चल दिए, अरे रुकिए तो। बेचारा, कहानी तो बहुत बढ़िया गढ़ी थी, एक एक हिस्सा ऐसा था जिस पर कोई आंख मूंद कर विश्वास कर लेता, लेकिन साबुन खरीदने के प्रसंग ने सब गड़बड़ कर दिया। अरे ये प्रसंग ना होता या साबुन की एक टिकिया भी जेब में डाल लाता तो धोखा धड़ी के धंधे में आज उसकी प्रतिभा का सिक्का जम जाता। लगता है इस धंधे में अभी नौसिखिया है।
2: अरे ये मेरे पांव से क्या चीज टकराई, क्या है ये कागज में लिपटी हुई कोई गोल सी चीज, साबुन की खुशबू भी आ रही। अरे ये तो साबुन की टिकिया है, अरे ये जरूर साइमन की जेब से गिर गई होगी, इसका मतलब उसने सचमुच साबुन खरीदा था, ये तो अनर्थ हो गया। मैं अभी जाकर उस मुसीबत जदा की मदद करता हूं, अभी वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, अभी जाता हूं।
3: अरे साइमन साहब, साइमन साहब रुकिए,
2: साइमन साहब।
3: मिस्टर गोटी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मेहरबानी करके मुझे जाने दीजिए।
1: अरे नहीं नहीं साइमन साहब, गलती आपसे नहीं मुझसे हुई है, मैं आपसे माफी मांगता हूँ।
3: ये आप क्या कह रहे हैं?
1: देखिए आप जैसे भले आदमी पर शक किया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। दरअसल मुझे आपकी कहानी की सच्चाई का मुख्य गवाह मिल गया है।
3: ये
1: देखिए साबुन की टिकिया आपकी कोट से गिर गई होगी, देखिए मुझे ये वहीं उसी बेंच के पास पड़ी मिली।
0: वो पता नहीं कब जेब से गिर गई, वो परेशानी में कुछ ध्यान ही नहीं रहा।
1: खैर जो हो गया सो हो गया, अब मुझे आपकी मदद करने में देर नहीं करनी चाहिए।
0: जी
1: मैं एक गिन्नी उधार देता हूँ मैं आपको, ये इससे काम चल जाएगा आपका।
0: जैसा आप ठीक समझे।
1: नहीं नहीं नहीं, आपको दिक्कत हो सकती है। मैं आपको दो गिन्नियां दे देता हूँ, उम्मीद है अब आपका काम आराम से चल जाएगा। ये लीजिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे भारी मुसीबत से बचा लिया। अब मैं जान, अरे हाँ आप अपना पता दे दीजिए, मैं जल्द से जल्द आपके घर आकर ये उधार चुका दूंगा।
1: अरे नहीं नहीं साइमन साहब, ऐसी कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से मेरे पैसे लौटा दीजिएगा। अच्छा, ये लीजिए, ये रहा मेरा कार्ड।
0: थैंक यू वेरी मच। अच्छा अब इजाजत दीजिए।
1: अच्छा, अरे अरे साइमन साहब, ये साबुन तो लेते जाइए।
0: अरे लाइए। थैंक यू वेरी मच।
1: और देखिए अब इसे दोबारा मत खो देना, ये आपके आड़े समय में काम आया है। बाय बाय बाय। बेचारा मेरे इस व्यवहार से कितना खुश हो गया, चेहरे पर निराशा की जगह उत्साह दिखाई देने लगा था। शुरू में मैं उसके साथ कुछ ज्यादा ही होशियारी बरत रहा था, ये अच्छी बात नहीं थी, मैंने अपनी गलती सुधार ली, ये अच्छा ही हुआ। अरे बाप रे, 8 बज गए, अरे वहां पार्क में फिलिप पता नहीं कब से मेरा इंतजार कर रहा होगा, मुझे फौरन वहीं पहुंचना चाहिए। चलता हूं मैं।

0: हाय, ये तो फिलिप नहीं कोई और ही साहब है। ओह, ये तो वही बुजुर्गवार हैं जो थोड़ी देर पहले मेरे साथ यहाँ बैठे थे। लेकिन ये बेंच के नीचे झुककर क्या ढूंढ रहे हैं? बुजुर्गवार, लगता है आपका कुछ खो गया है।
1: हाँ, मेरी साबुन की टिकिया खो गई है।
0: क्या, साबुन की टिकिया?
1: हाँ, अब मैंने जो सामान खरीदा था,
0: हाँ,
1: उसमें एक साबुन की टिकिया भी थी। वो कहीं गिर गई।
0: लेकिन वो
1: मेरा ख्याल है वो यहीं गिरी है। बेंच पर बैठते समय थैला टेढ़ा मेढ़ा हो गया होगा और टिकिया नीचे गिर गई। चिंता न करो, यहाँ गिरी है तो मिल ही जाएगी।
0: इसका मतलब वो साबुन की टिकिया उस धोखेबाज की नहीं, इन बुजुर्गवार की थी। मैंने ये क्या बेवकूफी कर दी। उस धोखेबाज को साबुन की टिकिया के चक्कर में एक नहीं दो दो गिनियां दे दी। आज ही आज मैं अपना दूसरा नुकसान कर बैठा। इस गलती के लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा।

0: श्रोताओं, नाट्य तरंग में आज आपने सुना नाटक साबुन की टिकिया। साकी के लिखे नाटक का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण था। रूपांतरकार शैलेंद्र, निर्देशक विजय दीपक छिब्बर। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
3: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखिए, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
4: दोस्तों नमस्कार। पिछले दिनों विविध भारती की टीम फिल्मकार विमल रॉय के सुपुत्री रिंकी भट्टाचार्य के घर गई, रिकॉर्डिंग की उजाले उनकी यादों के। तो चलिए सुनते हैं आज वही कार्यक्रम, उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं फिल्मकार विमल रॉय के सुपुत्री रिंकी भट्टाचार्य से मंदाकिनी जोशी की बातचीत।
5: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ हैं जिनके लिए सिनेमा सिर्फ एक पेशा या कला नहीं बल्कि परिवार की विरासत भी है। यानी आज हम बातचीत करने जा रहे हैं महान फिल्मकार विमल रॉय की बेटी रिंकी भट्टाचार्य से। वो विमल रॉय जिन्होंने भारतीय फिल्मों को अलग अर्थों में गढ़ा। तो रिंकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
6: नमस्ते, मैं बहुत खुश हूँ
5: जी।
6: मेरे से जो भी होगा पिताजी के बारे में मैं कहूँगा
5: जी। बिल्कुल। तो रिंकी जी, हम आपकी आंखों से देखने की आज कोशिश करेंगे महान फिल्मकार विमल रॉय साहब को। हम विमल रॉय को एक महान फिल्मकार के रूप में जानते हैं, लेकिन आप उन्हें एक पिता के तौर पर जानती हैं। तो सबसे पहले हम सभी का यही सवाल होगा कि कैसे थे पिता के रूप में विमल रॉय साहब?
6: मैं तो बहुत बहुत ब्लेस्ड हूँ
5: जी,
6: क्योंकि पिताजी का जैसा पिताजी मिलना ये छोटी बात नहीं है, और हम लोगों को कभी

0: पता ही नहीं चला कि इतना बड़ा महान का वो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं। एकदम घर में जैसे साधारण हम लोग मिडिल क्लास फैमिली में सब बड़े हुए हैं
1: जी।
0: उनके साथ, उससे हमको पता ही नहीं चलता था कि पिताजी बाहर उनका एक रूप है, बाहर उनका कोई स्टेटस है। और चाइल्डहुड मेरा, हमारा चाइल्डहुड बहुत ही एकदम सुखदायक था
1: जी,
0: बहुत
1: जी
0: ही बहुत खुश। हम लोग सब बहुत खुश थे, फैमिली मैन थे वो, फर्स्ट फैमिली मैन थे वो।
1: जी
0: घर में आके उनका पूरा यही बदल जाता था,
1: एक रूप ही बदल जाता था।
0: हाँ, रूप ही बदल जाता था।
1: मतलब आपके पिता घर पर फिल्मकार नहीं होते थे, एक पिता ही होते थे।
0: जी सही बात है।
1: जी, तो आपको ऐसा कब महसूस हुआ कि आपके पिता बाकी लोगों से कुछ अलग है, बाहर उनका बहुत बड़ा रुतबा है या वो इतने महान फिल्मकार हैं?
0: ये हमको पता ही नहीं चला कि बाहर उनका क्या रूप है, क्या स्टेटस है, क्योंकि पिताजी को जो उनका बिहेवियर था घर में, तो वो एकदम साधारण जैसे कोई मिडिल क्लास फैमिली में होता है। पिता पुत्री का जो रिलेशनशिप होता है एकदम सहज सरल। हम लोग जो बड़े हुए हैं, हम बहुत ही, इस वेले मैं तो एक ही अंग्रेजी शब्द बोलती हूँ, ब्लेस्ड,
1: जी
0: ट्रूली ब्लेस्ड।
1: जी जी तो आप अपने परिवार के बारे में बताइए, कितने भाई बहन आप लोग थे, और आपकी माता जी के बारे में भी हम जानना चाहेंगे, वो किस तरह से उनकी फिल्मों से जुड़ी रही, उनके व्यक्तित्व से जुड़ी रही?
0: जी, लेकिन मेरी माँ जो थी वो एकदम अलग थी, और उनका जो खुद आइडेंटिटी एक था, शी वॉज ए फोटोग्राफर, और उनके बारे में सब लोग आजकल जानते हैं। उनका जो फोटोग्राफी है वो बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े व्यक्ति के फोटोग्राफ लिया है, जैसे टैगोर का लिया है, और नेहरू का लिया है, इंदिरा गांधी का लिया है। मैंने, मेरी माँ का जो पोर्ट्रेट्स हैं उसमें इन सब लोगों को नाम जुड़ता है
1: जी।
0: तो पिता, और वो बहुत पिताजी के साथ बहुत ही उनका एकदम बहुत सुंदर रिश्ता था
1: जी,
0: बहुत सुंदर रिश्ता था।
1: क्या नाम था आपकी माँ का?
0: मेरी माता का नाम था मनोबीना रॉय।
1: जी
0: जी,
1: तो वो एक बहुत बड़ी फोटोग्राफर थी और उनका, हाँ, एक व्यक्तित्व था। आपके, हाँ, और भाई बहन भी हैं जो उनके बारे में भी हम, हाँ, जानना चाहेंगे?
0: मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे बाद में दो सिस्टर्स हैं और एक भाई है जॉय, जो अभी देखभाल करता है अपना, मेरा पिताजी का जो लेगेसी है उसके साथ हम लोग सभी मिलकर काम करते हैं एक साथ।
1: जी जी, तो रिंकी जी, आपको पहली बार उनकी फिल्मों से जुड़ना आपका कैसे हुआ, किस तरह से आप उनकी फिल्मों से जुड़ी? क्या बचपन में आप अपने पिता के साथ उनकी फिल्में देखने जाया करती थी, या उनकी जो फिल्म बनाने की प्रक्रिया थी उनसे वाकिफ थी, या उनके साथ जाया करती थी, ऐसा कुछ हुआ कभी?
0: नहीं, पिताजी का एक कोशिश ये रहता था कि वो फिल्मी दुनिया से हम लोग को अलग रखे।
1: अच्छा।
0: और हमको अगर बुलाते थे शूटिंग देखने के लिए तो कोई गाना वाना शूट होता तो हमको बुलाते थे, जो बच्चों को जो अच्छा लगता है उसके लिए बुलाते थे, नहीं तो हम कभी स्टूडियो में जाते ही नहीं थे। उनका अलग ही था कि वो दोनों जो दुनिया है ना, फिल्म का दुनिया और घर का दुनिया अलग था हमारे घर में।
1: जी।
0: और वो बहुत एडुकेशनिस्ट थे पिताजी। मैं तो बॉम्बे चली आई, मेरा तब 9-10 साल होगा, तो लेकिन उन्होंने ऐसे कोशिश किया कि मैं बंगला सीखूं, क्योंकि मेरा मातृभाषा बंगाली है
1: जी।
0: तो उन्होंने मेरे लिए सब बंगाली किताब मंगाते थे घर कलकत्ता से, और हमको देखते थे कि हम करते हैं कि नहीं। उनका उत्साह था कि हम बंगला सीखें, बंगला बंगाली कल्चर को भी अपनाएं, ये सब उनका बहुत बहुत उनका देन ये है मेरे जिंदगी में कि पिताजी के लिए मैंने ये सीखा है, नहीं तो मैं शायद नहीं करती थी।
1: पिता का प्रभाव बहुत ज्यादा,
0: बहुत प्रभाव। हाँ,
1: तो एक बेटी होने के नाते रिंकी भट्टाचार्य पर क्या प्रभाव था, कितना प्रेशर था, कितना दबाव था, तो आप क्या कहेंगी?
0: नहीं, दबाव तो मैं नहीं कहूंगी, पिताजी का जो पूरा कल्चर था उससे हमने बहुत कुछ सीखा है कि पिताजी को खाली घर के लिए नहीं, पिताजी को इंडियन कल्चर से बहुत प्राउड थे वो। इंडियन कल्चर, कोई भी कल्चरल ये होता था, वो नेहरू को जानते थे पर्सनली, इंदिरा गांधी को जानते थे पर्सनली, तो ऐसे जो जिंदगी जिसके ये होता है तो उनके लिए तो अलग ही होता ना,
1: बहुत एटीट्यूड,
0: हाँ, उनका एटीट्यूड ही अलग था इस सबके बारे में। और हम लोग ने वो ही सीखा है पिताजी, वो बहुत जल्दी चले गए, पिताजी का उम्र बहुत कम था जब चले गए, तो इसीलिए उनका सबसे बड़ा फिल्म एक जो बनने वाला था वो नहीं बनी, और हमको इसका बहुत दुख है। और जो लिखा था, गुलजार लिख रहे थे उसको, तो उसका नाम था अमृत कुंभ,
1: अच्छा
0: अमृत कुमार।

0: बिमल रॉय एक महान फिल्मकार के रूप में उन्होंने इतनी कालजयी फिल्में हमें दी और गुरु के रूप में उन्होंने एक नई श्रृंखला बनाई उनके जैसी फिल्मों का आगे निर्माण किया लोगों ने। तो एक फिल्मकार के रूप में या एक गुरु के रूप में आप क्या मानती हैं, वो किस तरह से रही होंगी?
1: पिताजी ने जो उनके उनके साथ जो जो काम किया, जैसे गुलजार है, ऋषिकेश मुखर्जी है, आशीष सेन है, इनको सबको उनका प्रभाव से बहुत उत्साहित किया था फिल्म बनाने के लिए और उनको उत्साह देते थे और उनको चांस भी मिलता था कि हमारा प्रोडक्शन बिमल रॉय प्रोडक्शन में उनका फिल्म भी बनती थी। तो इसीलिए मैं बोलूंगी कि असली गुरु का हिसाब जो गुरु दक्षिणा इनको देना चाहिए
0: जी,
1: सबको
0: जी। उनकी कालजयी फिल्में हैं जैसे दो बीघा जमीन है, देवदास है, परिणीता है, मधुमती है, सुजाता है, परख है और बंदिनी। इन मतलब एक एक फिल्म पर अगर हम चर्चा करें तो शायद कितने एपिसोड निकल सकते हैं, कितनी लंबी विस्तृत चर्चा हो सकती है। तो रिंकी भट्टाचार्य उस उम्र में उन फिल्मों को देखकर क्या सोचती थी?
1: पिताजी का क्या था ना, पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है
0: जी,
1: सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता
0: जी,
1: वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, हाँ बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से,
0: बिल्कुल
1: हाँ। तो इसलिए ना पिता खाली दो बीघा जमीन को लिखा था सलील चौधरी ने, तो वो फिल्म के लिए लिखा था, पिताजी के लिए लिखे थे। तो उसको जो फिल्म बनाया पिताजी उसका कोई लिटरेरी वर्शन नहीं था,
0: जी।
1: हाँ उनको लिखा था पिताजी के लिए सलील चौधरी ने और उनको जो फिल्म है आज तो दो बीघा जमीन को सबसे बड़ा मान्यता मिलती है, यहाँ वहाँ फॉरेन कंट्रीज में सब में दिखाया जा रहा है।
0: बिल्कुल सही बात है। तो जब बात चली है दो बीघा जमीन की, तो कैसे इस महान फिल्म की रचना हुई होगी, किस तरह के घटनाक्रम में फिल्म बनी होगी उस जमाने में?
1: ये मुझे कभी कभी लगता है कि दो बीघा जमीन तो से उनका जिंदगी का बहुत असर है
0: जी,
1: क्योंकि पिताजी भी जब छोटे थे उनको घर से उनका जो जमीन था ईस्ट बंगाल, हम लोग ईस्ट बंगाल के हैं ढाका के
0: जी,
1: तो वहाँ से उनको निकाला गया था। तो वो भूल वो उनका जो वो दर्द था, वो ट्रेजेडी था, हाँ तो वो भूल नहीं सके थे। तो मुझे लगता है इससे दो बीघा जमीन में और बहुत बहुत इंटेंसिटी हो गया है। इसके लिए

0: पिताजी के लिए वो जो वो दुर्घटना थी कि उनको घर से निकाला गया था, वो भूल नहीं पाए कभी भी। हमेशा चाहते थे कि जाएं, हम जब ईस्ट बंगाल चलेंगे वो सोचते थे कि हम जाएंगे वहाँ पे। तो उसका वो ट्रेजेडी जो था वो जिंदगी भर उन्होंने उसका ये किया,
1: मन में रहा,
0: वहाँ मन में रहा
1: और उसी पीड़ा का परिणाम दो बीघा जमीन के रूप में उतरा।
0: जी जी
1: जी। तो जब हम उस फिल्म को देखते हैं तो बलराज साहनी और बिमल राय की जोड़ी ने जिस तरह से यथार्थ को पर्दे पर उतारा वो अद्भुत था। तो उस वक्त उस फिल्म की सफलता को घर में आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया होगा?
0: नहीं, हमारे घर में ऐसे सेलिब्रेशन कोई नहीं होते थे फिल्म विल्म को लेके, लेकिन पिताजी का ये जो दो बीघा जमीन है ना, ये मैं कहूँगी कि पिताजी का श्रेष्ठ है, लोग सोचते हैं, लेकिन मैं तो बोलूँगी सब फिल्म सुजाता, बंदिनी, सबको लेके जब लोग देखते हैं ना तभी बोलते हैं कि कैसे कहाँ से आया स्टोरी। हाँ, उनको लिटरेचर पे बहुत ये था, बहुत वो ये थे, प्रभावित थे लिटरेचर, बंगाली लिटरेचर के।
1: जी जी जी। तो फिल्म दो बीघा जमीन के जो शंभू की पीड़ा थी वो आज भी कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में व्याप्त है।
0: जरूर, मैं तो बोलूंगी ये बहुत सच बात है। हमने जो फिल्म दिखाई थी वेनिस फेस्टिवल में लास्ट ईयर, तो वहाँ सब लोग खड़े होते हैं, जैसे ही फिल्म खत्म हुई सब लोग रो रहे थे
1: जी,
0: इतना उसका प्रभाव था।
1: हाँ,
0: एक इंडियन फिल्म, कोई स्टार नहीं उसमें, हाँ, फिर भी वेनिस फिल्म फेस्टिवल जैसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल में उसका क्या भूमिका थी तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। आप वो देखने वाली, एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ थी। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि मैं गई उनके साथ, वहाँ फेस्टिवल मैंने एक अटेंड किया और हम लोग जब वापस आए तो मुझे बहुत बहुत बहुत मुझे प्राउड फील रहा कि इतना बड़ा काम हम लोगों ने किया है, हासिल किया है, बहुत बहुत ही बढ़िया बात है ये।
1: जी, तो रिंकी जी, जब बात दो बीघा जमीन की चल रही है तो क्यों ना इसी फिल्म का एक गीत हम सुन लें। आप बताएंगे कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आप?
0: जो लोरी है जिसमें मीना कुमारी ने एक छोटा सा भूमिका किया है।
1: हाँ,

0: बहुत सुंदर लोरी है ये रिंकी जी, इस लोरी के बारे में कुछ बताना चाहेंगी?
1: जरूर, मैं बताना चाहूंगी कि मीना कुमारी जो मेरे पिताजी के बहुत करीब थे
0: जी,
1: और पिताजी उनको बहुत स्नेह करते थे
0: जी,
1: तो उन्होंने बोला कि दादा आपने फिल्म तो बनाई लेकिन मुझे आपने रोल नहीं दिया कुछ, तो पिताजी ने बोला कि उसमें तो तुम्हारे लिए लायक कोई रोल नहीं था, लेकिन ठीक है हम एक गाना डालेंगे तो उसमें तुमको मैं ले लेती हूँ
0: जी।
1: तो इसीलिए मीना कुमारी ऑन स्क्रीन मीना कुमारी सिंगिंग द लोरी।
0: और ये लोरी और बहुत, हाँ आप बता,
1: ये लोरी बहुत, हम लोग सब गए थे रिकॉर्डिंग के लिए
0: जी,
1: कहाँ मुझे पता नहीं कौन सा स्टूडियो, शायद दादरा में कोई स्टूडियो था, वहाँ बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स हुए और ये लोरी का रिकॉर्डिंग हुआ 4 बजे सुबह चार बजे
0: तो लता मंगेशकर की गाई हुई लोरी है ये, तो सुबह 4 बजे इसकी रिकॉर्डिंग हुई,
1: सुबह 4 बजे रिकॉर्डिंग
0: जी जी,
1: और तब तक लता जी वहीं पे बैठी थी।
0: अच्छा,
1: नेचुरली
0: हाँ,
1: उनका ही गाना है ना,
0: तो बहुत टेक रिटेक हुई होंगी, मतलब
1: नहीं नहीं बहुत टेक नहीं, वो तो एक स्पेशलिस्ट थी।
0: इस तरह के बहुत सारे गीत पर हम बात करेंगे, फिल्म देवदास पर हम आना चाहेंगे, एक ऐसी फिल्म है देवदास जो अमर हो गया ये किरदार,
1: और एक चीज, फर्स्ट टाइम साहिर लिद्वानी ने गाना लिखा था उसमें,
0: हाँ जी जी,
1: और एस डी बर्मन
0: साहब का संगीत है, और इतना यूनिक संगीत है, और गाने के बोल जो है आज भी मतलब
1: मुझे तो एक सीक्वेंस बहुत अच्छा लगता है, मितवा करके गाना है, गीत तो पसंद है और ऑन स्क्रीन मीना कुमारी बहुत सुंदर लग रही है
0: जी जी,
1: उनका जो ये है ना वो सीक्वेंस बहुत सुंदर है।
0: तो फिल्म देवदास की जैसे हमने बात की कि ये एक ऐसा कालजयी फिल्म, और एक ये जो पात्र है ये भी अमर हो गया, और क्या उस वक्त जब ये फिल्म बनाई गई थी तो क्या ये सोचकर बनाई गई थी कि ये प्रेम और विरह की कहानी है, आप क्या सोचती हैं?
1: नहीं, देवदास का क्या है, फर्स्ट देवदास जब बनी थी पिताजी उसके कैमरामैन थे।
0: अच्छा,
1: हाँ, बड़ुआ के देवदास,
0: जब केएल सहगल साहब जिसमें
1: केएल सहगल थे, पिताजी उसका मेन ये थे, कैमरामैन थे।
0: अच्छा,
1: तो उनको तब से उनको लगता है, और पिताजी का सबसे मुझे अजीब लगता है कि पिताजी तो घर में, हमारे घर में दारू शारू का कुछ ये ही नहीं था, लेकिन पिताजी ने फिल्म बनाई एक पियक कड़ के ऊपर
0: जी,
1: लेकिन यो ये आज भी देवदास के लिए लोग बोलते हैं कि कितना अच्छा, और गाने भी बहुत सुंदर,
0: बहुत शानदार,
1: बहुत सुंदर गाने हैं।
0: हालांकि देवदास के आज तो कई फिल्मी संस्करण निकल गए, कई फिल्में कितनी बार बन चुकी है, लेकिन बिमल रॉय की जो देवदास है वो आज भी बिल्कुल अलग लगती है
1: जी। मैं आपसे बहुत सहमत हूँ इसके बारे में।
0: बिल्कुल, तो उस फिल्म के बारे में कुछ बताइए कि क्या बिमल रॉय ऐसा मानते थे कि उस वक्त सिनेमा समाज को बदल सकता है? आप उस वक्त कितनी उम्र की थी और आपने क्या समझा होगा, क्या जाना होगा उस वक्त?
1: मेरा उम्र कुछ ज्यादा नहीं था तब, 15 साल की थी। तो जब देवदास बनी, देवदास का जो ये खास बात मुझे बोलना है कि देवदास के पारो का अभिनय जो है सुचित्रा सेन
0: जी,
1: उसको पिताजी ने पहले रिजेक्ट कर दिया था।
0: अच्छा।
1: दूसरा, हाँ, वो आई थी, वो हमारे घर की बहू समझा जाती थी, उनका शादी हुआ था हमारे घर में
0: जी।
1: तो जब एक दफे वो उनको फिल्म में उतरना था तो पिताजी के पास सबसे पहले आए, तो पिताजी ने बोला तुम घर की बहू हो, तुम कैसे फिल्म में काम करोगे, तो उनको रिजेक्ट कर दिया। फिर उसी को पिताजी ने बुलाया देवदास के लिए, तो हम लोग बहुत हंसते थे कि पिताजी को फिर से दोबारा उनको बुलाना पड़ा, क्योंकि उससे बढ़िया तो कोई नहीं, पारू का ये जो किया था
0: अभी नहीं था,
1: हाँ,
0: वो कोई और कर ही नहीं सकता था, ऐसा बिमल रॉय साहब का मानना था,
1: नहीं सकता था।
0: और वो अद्भुत सुंदर लगी है उसमें, और ये पात्र कितना जीवंत हो गया, पारो की भूमिका कितनी मतलब कालजयी एक भूमिका हो गई है, आज भी याद की जाती
1: जी,
0: है
1: जी,
0: जी, लोगों का रिएक्शन क्या रहा होगा उस वक्त देवदास फिल्म को देखने के लिए?
1: लोग तो एकदम पूरा हाउसफुल जाता था, पूरा हाउसफुल जाता था, लेकिन मेरा हिसाब से पिताजी का देवदास जो इतना बड़ा बना है, क्योंकि उससे पिताजी उसको समझते थे, वो सामाजिक जब ये है ना समस्या
0: व्यवस्थाएं थी उस वक्त,
1: हाँ, उनको समझते थे, इसीलिए उसका इतना प्रभाव आज भी है। आज भी कोई मैं तो आज भी देवदास देखने में मुझे डर लगता है कि इतना इसका जो ये है ना माहौल जो है वो बहुत बहुत इम्प्रेस करता है
0: जी,
1: बहुत ज्यादा
0: जी।

0: आई थिंक मुझे लगता है कि वैजयंती माला भी जस्ट उसके पहले ही बंद होते किया थे उन्होंने, क्योंकि वो डांसर भी थी ना, इसीलिए उसमें देवदास में डांस तो है, इसीलिए
1: बहुत सुंदर है। तो इस फिल्म को जब निर्माण किया जा रहा था, इस फिल्म का जब निर्देशन कर रहे थे बिमल रॉय, तो उनकी दिनचर्या क्या रहती थी, और आप परिवार वालों की दिनचर्या क्या उस वक्त थोड़ी बदल जाती थी?
0: नहीं नहीं नहीं, पिताजी जो काम करते, काम को अलग ही रखते थे वो घर से। हमारा घरेलू जो ये है ना,
1: वो अलग था,
0: अलग था एकदम, और काम का ये बहुत ही अलग था, तो कभी नहीं मिक्स करते थे, कोई तकलीफ नहीं थी। पिताजी बहुत डिसिप्लिन थे एज ए डायरेक्टर, और फिल्मी दुनिया में तो ऐसा इतना डिसिप्लिन मैं देखा नहीं किसी को आज तक
1: जी,
0: कि इतना डिसिप्लिन थे। उनको कहाँ पे कब जाना है, क्या करना है, सब उनको बहुत पता था। हाँ, तो इससे हमको हमारा भी बहुत प्रभाव हुआ कि हमको भी पिताजी का सब शायद समय बिताने को मिला। हाँ, तो इसीलिए ना कि हमको कोई ये नहीं है, कोई कंप्लेन ही नहीं है कि देवदास बनाते थे या कोई बंदिनी बनाते थे। बंदिनी तो उनकी लास्ट फिल्म है, बंदिनी के बाद तो उनका बंद ही हो गया काम
1: जी।
0: हाँ, तो ये बहुत बहुत अहम बात है कि पिताजी कभी दोनों को मिक्स नहीं करते थे।
1: जी जी, तो आप लोग क्या फिल्म हॉल में जाकर इस फिल्म को देखा था?
0: नहीं, जाते थे, देखते थे, हम लोग हॉल में भी जाते थे, लेकिन जो एडल्ट फिल्म है, जैसे देवदास तो एक एडल्ट फिल्म है
1: जी,
0: तो देवदास के लिए हमारा हम लोग को जाना ठीक नहीं लगता था, तो पिताजी हमको देवदास हमने हॉल में कभी नहीं देखा।
1: अच्छा।
0: हाँ, उसमें एडल्ट सर्टिफिकेट नहीं था, लेकिन मैं बोलती हूँ कि उसका स्टोरी का तो एडल्ट, उसका एडल्ट इंटरप्रिटेशन है, तो इसीलिए उनके लिए जो रिलीज हुई थी, मुझे तो याद नहीं कि मैं हॉल में जाके कभी भी देवदास देखा। मैंने फर्स्ट देखा दूरदर्शन में।
1: अच्छा, दूरदर्शन में आपने ये फिल्म देखी होगी। तो इस फिल्म के गानों के बारे में तो हम क्या ही आपसे कहें, एसडी बर्मन साहब का संगीत है, साहिर लुधियानवी के बोल हैं। कौन सा गीत आप हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगी जो आपकी खास पसंद होगा?
0: मेरा खास पसंद है आगे तेरी मर्जी।
1: आगे तेरी मर्जी जी, बिल्कुल।

0: आपके घर में बराबर पढ़ाई का माहौल रहता था, बच्चे घर में पढ़ाई करना
1: पूरा? पिताजी का ये भी था कि हमको ऑक्सफोर्ड में ले जाए पढ़ाए।
0: अच्छा।
1: हमको लेके भी गए थे लंदन
0: जी
1: दिखाने के लिए, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगा कि हम परिवार से इतना दूर रहेंगे, इसलिए मैंने हाँ नहीं किया। नहीं तो आज मैं ऑक्सफोर्ड रिटर्न होती थी
0: जी,
1: अगर मैंने उनका इस पर
0: बात को माना था। घर से दूर जाना आपको पसंद नहीं था। तो घर में एक आपसी सब में एक तारतम्य था, सामंजस्य था, प्रेम की भावना, सब एक दूसरे से गूंथे हुए थे।
1: एकदम
0: बहुत बड़ी बात होती है कि सभी लोग मिलजुल कर रहे और
1: फिल्म दुनिया में स्पेशल
0: सबसे बड़ी बात है फिल्मी दुनिया में रहकर एक दूसरे की विचारधारा का सम्मान करना और मिलजुल कर रहना, विश्वास करना, सबसे बड़ी बात ये रही थी।
1: और हमारे सामने हम दूसरा फिल्मी दुनिया देखते थे, फिल्मी घर आना देखते थे, मुझे लगता था कि हमारा घर इतना अलग क्यों है, क्योंकि हमारे घर में कोई माहौल ऐसा नहीं था, कोई भी माहौल नहीं था कि हम लोग कुछ पढ़ा लिखा ये सब हमको उत्साह करना। पिताजी का बहुत अहम बात था, पिताजी बहुत मानते थे, ही वॉज एक्चुअली एजुकेशनिस्ट। आपने देखा है ना पिताजी, हमारे बिमल रॉय में बिमल रॉय फिल्म्स का जो लोगो है, कौन सा है आपको मालूम है? कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे।
0: जी जी,
1: बॉम्बे यूनिवर्सिटी का जो ये है टावर है।
2: अभी विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण सुन रहे थे। FM 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 4:30 में आए सुनते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: खेतीबाड़ी सुनने वाला सगला भाया ने टाबरा ने राधेश्याम भाई रा घना हेतु और कोडू राम राम। देखो कि भैया, आज एक तो आपने सबने शुभकामना देवा कि आज बाबेरी बीज है और खास तौरू झका रामदेव जी महाराज अथुने राजस्थान में लोक देवता के रूप में आपकी ख्यात झकी फैलाई है। बारो खाली एक लोक देवता नहीं, बे समाज सुधारक के रूप में, सामाजिक समरसता के रूप में बारो नाम है जो को हमेशा अमर रही। बे एक राज परिवार में जन्म लेवनाला महापुरुष है। जका भी लोग हा जके नापा तत्कालीन समय में छुआछूत को एक बोलचाल हो, बिन टेम में बे राज परिवार में रहता हुआ भी बे लोगों ने गले लगाया, बाने आपरे भाई के रूप में, बहन के रूप में माँ को मान सम्मान दियो। तो सामाजिक समरसता का प्रतीक लोक देवता के रूप में विख्यात बाबा रामदेव जी के आज बीज पर आप सब ने घनी शुभकामनाएं हैं। और बीरे साथ देखो बात करा मौसम मेक में की, तो यूं तो मौसम मेक में खबर दी कि भी अगुणे राजस्थान में और यूं लंगे टंगे लागे कि गुजरात का ने भी आज और काल के जगह बिरखारा खबर है। आपारे अटे तो छिटबिट कटी छांटा छिटको हो सके, बाकी बिरखारी खबर है जकी है कौन। पर अबारे ई बिरखारे साथे साथे ऐडी स्थिति है कि चारा कानी जब किसान भयारी बात करा, समाचार सुना, हताई करा, तो फसला में घणो नुकसान की गुंजाइश लग है। और फसला ने झकी टेम में अबार और क्रांति की अवस्था एक प्रकार कह सका, ई अवस्था के टेम में फसला ने घनी पानी की जरूरत है। अब की बार बरसात कमी होने की वजह वो इन टाइम में पानी की घनी कमी और फसला में घणो खराब की गुंजाइश के लागे। बट प्रकृति रे आगे देखो कि आपा रो कोई रो बस चाले को नहीं, और आपा प्रकृति रे अधीन रहता हुआ भी आपा हिम्मत हौसले और मेहनत रे साथे आपा रो कर्म करता रहे तो आज नहीं तो कल आपने प्रकृति रो फल है जो को जरूर मिली। एडी जे बात करें कि आपा आज ई दुनिया में आजीविका चलाने वास्ते नहीं, खेती है जिकी दुनिया रे पालन पोषण वास्ते या करे। और आ दुनिया आ धरती और पर्यावरण निरोगो बनुड़ो रहे तो फसल भले ही अबगे कमजोर होगी तो भी रोफल अपन अगली बार जरूर मिल जी। पर अगर आपा पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं रिया और अंधाधुंध जो पेस्टिसाइड की बात करा या जकी जरूरत ही नहीं है भी खाद को अधिक उपयोग करा, तो धीरे धीरे आपारी आ जमी है जकी एक रसायन रो ढेर बन जाए और बीरो प्रभाव आपारे आने वाली नस्ल आने वाली पीढ़ियों पर पड़ी। आपारे स्वास्थ्य पर तो अबारी पड़ी लेकिन आने वाली नस्ल पर को बहुत बुरो प्रभाव पड़ सके। तो एक ही एडी चीज वे कि अगर आप अंधाधुंध रासायनिक दवाइयां रो उपयोग करता गया और रासायनिक खाद रो उपयोग करता गया, कीटनाशकों का उपयोग करता गया, तो आपा की फसल में जका प्रकृति फायदाला जीव है वे है जो को खत्म हो जाए। और प्रकृति अपन एक धरती ने भी निरोगी रखने वास्ते, धरती ने उपजाऊ बनाने वास्ते और फसल ने निरोगी रखने वास्ते भी की न की सिस्टम बनाई हो, अपनी इको सिस्टम किया करा। तो प्रत्येक जीव है जो को दूजे जीव रे की न की लागू हुआ। तो किसान वास्ते सब वो फायदे की चूजिया करे जका फसल का मित्र कीट अपन कह, यानी किसान वास्ते खेती में प्रकृति यूं तो कई जीव पैदा करे जका अपने नुकसान भी करे लेकिन बीरे साथे साथे एड़ा जीव भी पैदा करे जका किसान वास्ते मित्र हुए और वे किसान रे घणो फायदो करे। बेड़े ही मित्र कीटा की आप बात करा कि एक तो जैसो मित्र यूं तो अंके प्रकार में बांटो तो मित्र कीट तीन प्रकार का हो सके। एक परभक्षी कीट हुए, परभक्षी कीट में वे जका दूजा हानिकारक कीट हुए माने बांका इंडा ने बान कीड़ा ने खाई ले, बान खाई ले जना हानिकारक कीट है जका पैदा ही कौन हुए और आपने किसान वास्ते फायदो हो जाए। दूजा वे परजीवी, परजीवी ने बेड़ा जीव है जका सूक्ष्म कीट वे बे आपरा अंडा है जका बे शत्रु जका कीट वे जका किसान वास्ते नुकसान हुए बारे ऊपरी अंडा दे देवे। तो बे अंडा में जू ही कोई लार्वा वो जीव निकले बे जका किसाना का मित्र कीट है बा अंडा ने लार्वा ने खा जावे, खा जावे जन बे पैदा भी कौन, पैदा नहीं हुए जन किसान वास्ते नुकसान कौन। और तीजा कीट या करे जका ने सहजीवी कीट कह, सहजीवी को मतलब वे जको बैंक की फसल पर रह वेदन फसलों ही आपको भी जीवन यापन कर ले, साथ में भी फसल ने भी फायदो पुगाया करे। तो ये तीनों कीटा में खास तौरू अपन के बात करा जे परजीवी कीटा में तो एक लेडी बर्ड बीटल हुआ करे, आ लाल और काले दबाड़ो एक कीट हुआ करे और ओ फसल में जो एफिड हुआ करे जगह मऊ बोला एफिड ने जगह ने या अपन के वहां की फल चूसक जगह कीट हुए बने एक खा जावे और किसान वास्ते फायदो करे। एक हुआ करे ट्राइकोग्रामा, ट्राइकोग्रामा बहुत छोटो जीव है, बहुत ततैया जीव ने आपके टांटती हुए टांटी जान को या करे और वो फली छेदक पे जकी लट्टा हुए ना बिने अंडा खावे बांकी जगह लट्टा अंडा हुए बान खा जावे और किसान वास्ते फायदो करे। एक व्यक्र है क्राइसोपा, क्राइसोपा भी ओ इन्हें लार वो जगह ना आपा एपिड लाइन भी केमा वो सफेद मक्की और एपिड जगह मऊ और छोटा कीटा के इंडा वे बने छुटकिया में खाजे और किसान वास्ते फायदों कर जा करे। ड्रैगन फ्लाई नाम भी एक मक्खी वे जो कि खेत में उड़िया करे और हानिकारक जितना भी कीट वे लट्टा वे बन पकड़ खाजे और किसान वास्ते मदद की जा करे। इन्हीं भांत एक जा करे सिरफिड मक्खी। सिरफिड मक्खी है जो कि लार्वो है वो पौधा को रस है जब भी मक्खी को लार्वो पौधा को रस चूस जा करे और फसल नुकसान पहुंचावे तो सिरफिड मक्खी का भी लार्वे ने जो को खा जावे और किसान वास्ते फायदों करे। बीर अलावा जो सहजीवी कीट की बात करें तो केंचुओ किसान को सब अच्छो मित्र है और केंचुओ जमीन ने उपजाऊ बनावे, जमीन ने पोली बनावे और आपा की जकी खाद है भी खाद ने एक प्रकार कंपोस्ट खाद में बना देवे, वर्मी कंपोस्ट के रूप में भी बदल देवे और आ वर्मी कंपोस्ट है जकी किसान वास्ते फसल वास्ते बहुत ही लाभदायक हुआ करे। तो केंचुआ भी किसान का बहुत ही जगन आप अलशु बोला बोली देसी भाषा में वे बहुत अच्छा मित्र हुआ करे। और एक वे मधुमक्खी, मधुमक्खी है जो कि फलां के ऊपर फूलों के ऊपर मंडराती रहे अपन लागे बा रस चूसे, हाँ बा रस चूसे बन बा रस किसान की फसल में कोई नुकसान नहीं है, बा एक जगह दूसरे जगह ते किसान की जकी परागण क्रिया हुए फसल में बा परागण क्रिया ने बढ़ावो देवे जके के कारण अपन फसल में 10% 20% थी बड़ा बड़ू और त्री हो जाए करे। तो ये फसल की फायदों पहुंचाने वाला जगह मित्र कीट है, वह किसान ने बाने बचाना चाहिए और ए मित्र कीटा का सबू ज्यादा शत्रु है वह है आपा जबकि रासायनिक दवाइयां छिड़का या रासायनिक खाद उपयोग करा वह किसान वास्ते बहुत ही यानी यह जगह मित्र कीट है बांका शत्रु हुए वे जगह सूक्ष्म जीव हानिकारक हुए वह तो मरे कि नहीं मरे, ए मित्र कीट भी दवाइयां के प्रभाव तुरंत मर जावे और ए मित्र कीट मर जावे जना प्राकृतिक रूप में जो को फसला ने बीमार उनको बचाने को जो को काम प्रकृति आपने दी है वो कमजोर पड़ जावे। तो अपन भया आउचित्य राखनी है कि आपारी धरती ने निरोगी राखनी है, मित्र कीटा ने जीवंत राखना है, आपा को शरीर निरोग राखना है, आने वाली नस्लों वास्ते चौकी निरोगी जमीन बनावड़ी राखनी है और स्वास्थ्य को भी ध्यान रखना है, पर्यावरण ने भी ध्यान रखना है और इको सिस्टम जो को परिस्थितिक तंत्र है इन्हें भी संतुलित रखना है। तो आपा कम कम रासायनिक दवाई और रासायनिक खाद रो उपयोग करा जदि आपा एक सुखद भविष्य की कामना कर सका। अब एक थोड़ा सो लेवा ब्रेक।
1: बहू जी मम्मी जी इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं। ओ जैसे UPI से। अच्छा हाँ, और सुनो एक और नियम है। वो क्या है मम्मी जी? तुम्हारी मुँह दिखाई भी UPI से मिलेगी। आम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
1: हर लेन देन अब है आसान।
3: लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेती बाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेतीबाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही हैं, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं। तो नोट कीजिए, हमारे फोन नंबर हैं 240-168 और नागौर का SD कोड है 01582। और हाँ, आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।
0: तो भैया बात है कामरी सुनी और अब देखो कि आपने उड़ी क्या करें कि भाई भयारो अनुभव, भयारो ज्ञान, भयारी जानकारी भी बन पुलवे, क्योंकि किसान भाई को लंबू अनुभव है वो एक ही कृषि वैज्ञानिक कम नहीं है। तो बारो अनुभव भी आपने पुख्त करा ये नहीं कड़ी में आज गांव भेड़ जाऊन को काम पड़ियो बैठ रमेश जी जगह प्रगतिशील कर सके बहुत जगह तय हुई बात भी सुन ले रहा हूँ। हाँ तो देखो किसान भाई टेम टेम से रू भयागन जाया करा और बारी हताई थांती पुगती क्रिया करा और इन्हीं कड़ी में आज भेड़ गांव का एक किसान भाई यहाँ पहुंच जुड़िया बहु हताई करा। राम राम सा।
4: राम राम।
0: काई नाम है आप रो?
4: हाँ नाम रमेश कुमार है सर।
0: रमेश कुमार जी कैडो कब के जमानो पानी
4: अब के तो मोड़ा ही है सर
0: जमानो घणो बढ़िया कोनी
4: बढ़िया कोनी बरसात भी टेम मत हुई कोनी पहले तो टेम मत खेती बाड़ी तो कराई थी लेकिन फिर बाद में आईने फसल जब अपने फल लेने वाली टेम आईने आई भी टेम बरसात होती रहेगी
0: तो अभी जबकि फसाद है या फसल है तो भी कई स्थिति है कि 12 महीना जुगाड़ उनको लागे गुंजाइश की या कौन वे
4: अब के तो दोनों ही है सर 12 महीना जुगाड़ होनी हुए
0: कहीं फसल में झोलो लागो
4: बुरी तरह पिटीजगी बरसात की वजह धान बीज पूरा ही बैठ गए इस बार।
0: आप रमेश जी भेड़ गांव में थे किसी फसल ज्यादा बहु
4: एक बार खरीद बाड़ी में तो बाजरी मूंग गवार तिल मोट
0: ये तो हाथों ही धान भाव है बट घणो लोगों को रुझान अब के किसी फसल का नहीं
4: ज्यादा बाजरी भाई है सर ज्यादा सर
0: बाजरी भाई है तो अपंग जमी थोड़ी के बालू टाइप की जमी है तो गंवार की फसल कम बावे गए लोग
4: रेतीली जमीन है गंवार की फसल कम बावे सर
0: गंवार की फसल का कई कारण बात
4: वास्ते चारों वगैरह बीर वास्ते बाजरी ज्यादातर
0: अच्छा
4: रुझान है
0: तो बाजरी की जब बात करा तो बाजरी की फसल पहली तो क्यों बरसात है शुरू में तो ठीक ठाक बाजरी की फसल लागी तो अब कहीं हिटिया काटी को नहीं हिटिया में दाणो कौन पड़ रही हो कहीं है
4: हिटिया काटी भी है देसी टाइप की है जगह हिटिया काटी है लेकिन दाणो लियो को नहीं बुद्धि और पचो बायरो भाजियो और भी नुकसान करियो दाणो पड़ियो को नहीं माइन
0: हिटिया भी काटी खूंकी आई बन दाणो पड़न वाले टाइम भी टाइम भी पानी की घनी कमी होगी जना पूरा दाणो है जो भणियो को नहीं और फसल चलो ला तो रमेश जी अगर जे अब आजकल में दो या चार में कोई बरसात हो जाए तो फर्क पड़ेगा अब की फर्क कौन पड़े
4: अब तो की फर्क कौन पड़े सर थोड़ी बहुत जकर माइन दाणो पड़ियो बे भी नुकसान बनती है बे काली पड़ जाए आपस माइन
0: अच्छा हाँ कोई दो या चार है तो भाई पड़ जी आडी पड़न को आंधी रूड़ो और आवाज आडी पड़न की और गुंजाइश
4: अब नुकसान नहीं है बरसात कोई फायदो 1% कौन करे हाँ ठीक है कोई यार कोई अगर लास्ट में बाई उड़ी हुए तो 1-2% फायदा हो गया लेकिन अब ज्यादातर नुकसान माती है।
0: तो अबे रमेश जी थाके तो अठिन देखा कई भाईसाना के ट्यूबवेल भी तो भी ट्यूबवेल करो
4: ट्यूबवेल वाला भी है सर ट्यूबवेल वाला तो मैं बावे है लेकिन ज्यादातर मार्केटिंग ट्यूबवेल पर बाजरी भी बावे है पानी ले लेवे अगर ट्यूबवेल पानी वगैरह लेवे तो बाकी फसल भी बढ़िया है
0: तो ट्यूबवेल बाम फसल ठीक है
4: ठीक है।
0: अच्छा तो अभी आप ट्यूबवेल में जब बाजरी की बात करें तो आजकल ट्यूबवेल पर तो लोग ज्यादा नरमो या कपास भावे तो थारेट बाजरी को रुझान क्यों रखे ज्यादा लोग
4: नरमो कपास भी भावे ज्यादातर लेकिन पशुआ चारा वास्ते 5-10 बीघा अगर ज्यादा हुए बीघा ने जमीन तो वो बाजरी को रुझान है शुरू में
0: तो अब के जो नरमे की बात करें तो नरमे की फसल केड़ी है
4: नरमे की फसल मोड़ी है सब बढ़िया कौन
0: बढ़िया कई कारण मानो थे तो प्रगतिशील
4: नरमे को बरसात माते सब खेलो है बरसात अगर नहीं हुए टूटती बरसात हुए तो ट्यूबवेल का पानी तो कोनी बैठे इन्हें तो बरसात को पानी मिलना चाहिए नरमा ने और पचे हवाओं को रुक दी हवा भी बहुत पूरा समण माइन आई बाजी
0: भाई बरसात हाँ झोले की हवा बाजगीर थारे के उनको मतलब है कि ट्यूबवेल की जकी फसल है भाई अगर हवा में नमी ज्यादा रही या बरसात को जो मीठो पानी को शुरू जदी भी में डोडा ज्यादा आई या कपास का जगह फल है जगह ज्यादा लागी नहीं तो कम लागी
4: बिल्कुल बिल्कुल सर बरसात तो पगड़ा है सब का ही मतलब बरसात रही खेला है सब बरसात बढ़िया हुई तो फसल चाहिए या सुबह लुभाओ भाभी बिना बरसात भाई को नहीं बैठा बेड़ी
0: ठीक बात है तो अबे आ बात है कि बरसात तो आप प्रकृति रो मेहरबानी वे जदि वे आप बस में है कौन और बरसात कम हुई जन किसान काफी नुकसान हुई और देखो पैदावार जितनी उम्मीद लगे अभी थी पैदावार हुए कौन और जे बात खर्चे दी करा तो खर्चो तो देखो कि लगभग भी तो ही बैठ गो की कम पड़ी
4: खर्चो भी तो बैठ गो बराबर खर्चो बैठे अबगाड़े तो खर्चो ही किसान माते ही पड़ी जेने बाजरी जितना भी भाई है ट्रैक्टर की निराई गुड़ाई कड़ाई थ्रेसरों आदमियों को खर्चो बिल्कुल ही किसान ने तो कमर तोड़ दर दी है बुगाड़
0: क्यों भाई अब बात है जी कड़ाई की टाइम आ गई फसल है जकी कड़ा मा तो अब जकी फसल आप बाजरी है चाहे मूंग है या जगह गंवार बैडो है तो एम काटने वास्ते कहीं कोई तरीको परंपरागत तरीको है गाल मशीन में काटे
4: नहीं आजकल तो सब मशीन ही होगी परंपरागत तो ये ही होने सब थ्रेसर आएगा भाई 1000-1200-1500-1800 भाव बनवानी है बादलो के रूप दिखे जरा किसान तो कोई डरेगी है जो कोई समेटो
0: बेगो समेटो तो इमें एक रमेश जी पूछूंगा भाई कई बार यान की खबर आवे कि भाई फसल थ्रेसिंग काम करे या धान काटे या भी टाइम दुर्घटना होगी कोई किसान रे हाथ के लाग गई या कई बार तो यान की वे कि भाई मौत तक हो जावे तो थ्रेसर में अपन ने खास तौर थे प्रगतिशील और पुराना अनुभवी किसानों कहीं हावचेती रखनी चाहिए भाई ने थ्रेसर में धान काटो अभी
4: मशीनरी मायने तो साहब कला में जो भी ध्यान रखे अपन ने भी जो पीछे गाड़ा मायने नाके बीते पूरी सावधानी रखनी पड़े इधर दुर्घटना तो कई कहीं का हाथ चूड़ा है, कहीं का कपड़ा वगैरह जो पहरे जो भी हाथ राखड़ो चाहिए है।
0: ढीलो कपड़ो नहीं पहरे थारे को मतलब है खास और?
4: हाँ ढीलो कपड़ो उल्टो कपड़ो आम कई बार आता होगा पूरी राखनी पड़े सर।
0: लुगाया खास तौर जकी बे चुंदड़िया ओढ़े या ओढ़नी है बिल्कुल विशेष ध्यान रखना
4: हां वो भी एक आस्था को
0: बड़ो कारण
4: मेन कारण।
0: और बिना अपन मशीन तो मशीन ही वे देखो कि अपन कोई ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी रे
4: कपड़ा को ध्यान कोई पार को नहीं सब सावधानी बहुत जरूरी सावधानी हटी मामलो दुर्घटना घटी सके।
0: और दूजी एक और बात है कि भाई देखो आ तो मानव शक्ति की तो कोई पूर्ति हुई कोनी पर मशीन आप धान काटा थ्रेसर तो धान आप खराब नहीं हुए भी में टूट फूट नहीं हुए वो धान आगे भी कचरे के साथ नहीं जावे बीर वास्ते भी की हावचेती करनी पड़ेगी
4: बीर वास्ते भी बिल्कुल वो गाड़ो नाके जगो भी साबू लिमिटेड जितो थ्रेसर आगे खेचे जितो ही नाकनो चीजे ज्यादा लो करला टाइम हो रही और फिर भी गाड़ा में दबा आ जाना वो ट्रैक्टर आप दबे अरे वो गाड़ो आगे भी फेंके सर।
0: अच्छा भाई ज्यादा टाइम लालच कर देना
4: कुंटल माइन किलो दो किलो और जावी है बारे
0: नहीं वो यूं तो रूटीन में जावे जो को ठीक है बना आपा ज्यादा अगर दे अदा करनी चाहे तो हल्लो जाऊं की गुंजाइश भी रहे
4: हल्लो जाऊं उंतावली ओड़ी कौन
0: उंतावली अपन के मांग
4: नुकसान को जा उंतावली जितनी भी करो जितो अति तो वो नुकसान नहीं है।
0: तो ऐ तो बात होगी अब देखो कि भाई बरसा तो मोली उगीर जमानो ही मोलो है तो अब गांव का जगह भाई लोग है बार पर रोजगार और काई जरियो है क्या करिए हाल तो पाछो चौमासो तो घणो मोड़ो है।
4: हां चौमासो तो और तो अब सरकार माथी है अन काम वगैरह दे करी नरेगा पहली चाल तो अब कोई नई स्कीम सरकार की तरफ है बने
0: अनि नरेगा तो चाल रही है नरेगा बंद हुई कोनी नाव भी को जरूर बदलियो है जी राम जी करियो लेकिन अब भी मैं सरकार तो कह रही है
4: कोई सारो है कोई सारो है और तो कोई दूसरो सारो
0: दूसरो कोई काम धंधो उद्योग धंधो की भी कोनी छोड़ के काम चाल जावे
4: नहीं गांव में कोई उद्योग धंधा तो कहीं नहीं
0: पड़े। अच्छा
4: खेती माती निर्भरता ही पशुपालन वगैरह सब इन माते यार राम जी अबगाड़े ते माते वर्ष होने जाना दोरो है सर साल कार्ड नो।
0: तो अबे एक बीर बात मैं पूछूंगा भाई किसान भाई जबकि पूरी साल मेहनत करे खास तौर चौमासे के टाइम में चार महीना बीर मेहनत पार पड़ जाए तो बारह महीना होरा गुजार दे नहीं जना दोरा हुए तो किसान आज की तकनीकी को युग है कई तरह की नई तकनीकी आ रही है तो किसान भाई भी की पैदावार देखो बरसात तो आमने बस में कोनी पर पैदावार और बढ़िया हो सके बीर वास्ते कोई नई तकनीकी को किसान उपयोग करेगा
4: नई तकनीकी वालों तो साहब बरसात ही बरसात की वजह ही उठे बाकी तकनीक तो बिना बरसात तो कोई संभव है ही को नहीं।
0: अच्छा बिना बरसात तो की पार कौन पड़े भले केड़ी तकनीक काम
4: कौन पड़े आप जो बरसे हुए तब तकनीक काम आए आप मूंग भी अच्छी क्वालिटी का देवे है मूंग की भी पैदावार बढ़िया हुए लेकिन बरसात नहीं हुए ना
0: तो भी अपन हावचेती जैसे बीज की है खाद की है इन निरई की तो हावचेती रखनी पड़े ना
4: बिल्कुल ये टेमू टेम माते कृषि पर्यवेक्षक माते आवे ही है और बतावे कृषि पर्यवेक्षक बतावे बढ़िया बीज भी देवे टाइम टाइम पर देखे भी है और फसल बीमा भी एक माध्यम है सरकार को के भाई ज्यादा ज्यादा फसल बीमा कराओ भी उठाने फायदो हो
0: बिल्कुल ठीक भाई अरे बड़े वर्ष में अलबत्त किसान ने सारो मिल जावे
4: देवे हारो देवे के यहाँ के क्लेम भी आवे चाहे फसल बीमा टेम मत करा गिरदावरी से टेम मत कराओ और जो भी फसल हुई है चालो कम हुई है भी में आप सरकार की समर्थन मूल्य मत बेचो टोकन कटाओ टेम मत तो थोड़ो बहुत किसान ने सारो मिले
0: बिल्कुल ठीक बात है। अब आप एक लास्ट प्रश्न आप ही बात करा कि भाई खास तौर आज सरकार है जो कि स्वच्छता पर ध्यान देवे शिक्षा पर ध्यान देवे तो इरे बारे में आप के गांव के लोगों में शिक्षा और स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में कितनी जागरूकता है?
4: हाँ स्वच्छता के बारे में तो अब घर घर शौचालय बन गया बारे लोग ज्यादा को नहीं और स्वच्छता को विशेष नाड़िया वगैरह ध्यान रखे पेड़ पौधा भी लगा हुआ बार वृक्षारोपण को भी कार्यक्रम हो पेड़ पौधा भी अच्छा लगे वातावरण गाँव को तो शुद्ध ऐसा वातावरण।
0: अच्छा भाई आदमी खुद स्वस्थ रहे निरोग रहे बिर वास्ते कहीं अपन करना
4: सर वास्ते ध्यान रखना पड़े वातावरण स्वच्छ हुए गंदगी नहीं हुए मच्छर वगैरह नहीं हुए तो आदमी अपना बीमार पड़े ही नहीं बीर बारे में जागरूक सरपंच वगैरह हुए सब के बारे में पूरा ध्यान देवे सरकार की तरफ कोई योजना आवे जिसकी देवे सफाई को तो बढ़िया भी गाँव में तो आजकल सफाई को बढ़िया है सर।
0: तो इनमें एक साथ देखो कि खान पान को भी स्वास्थ्य पर क्यों फर्क पड़ेगा?
4: खान पान तो गाँव को देसी खान पान ही है यहाँ वगैरह जो भी है जबकि
0: अभी देसी खान पान करा हाँ,
4: देसी खान पान है सर स्वास्थ्य में तो जरूर पड़े सर।
0: ठीक बात है जहरीली दवाई छिड़काव को आप जगह सब्जी है अनाज है मैं आप कम उपयोग करा देसी घर की जगह सब्जी है मैं उपयोग ज्यादा करा मोटो अनाज या कहे बाजरे का उपयोग आप ज्यादा करा आप जगह पशु है चारो देवा तो आपने स्वास्थ्य
4: स्वच्छता को पूरा ध्यान रखे और जो को जितो ज्यादा कीटनाशक को प्रयोग कम करे जितो अनाज स्वस्थ हुई अनाज अच्छो हुई वो जी नहीं जना आदमी बीमार कौन पड़े।
0: ठीक बात है तो बहुत बढ़िया रमेश जी थे चौपाल जुड़िया और तंको अनुभव और भाई ने जानकारी दी वास्ते धन्यवाद राम राम
4: राम राम।
5: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
6: अरे बड़ी डील विल हो रही है भाई।
5: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
6: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
5: पर रेरा तो शहरों में।
6: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
5: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
7: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
8: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
7: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: हाँ तो देखो भैया, भेड़ का प्रगतिशील रमेश जी की हत्या हुई, बा आपने दाया युला और हत्या करता करता का सा टेम उगार। आपने ध्यान है कि आज बाबेरी बीज भी है, तो आपने गीत भजन रूप की उडीक रहे, तो आज बाबा रामदेव जी रे सम्मान में लोक भजन आपने प्रस्तुत करा और कलाकार रामचंद्र गोयल और हमारा साथी।

0: लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेती बाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेती बाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही है, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं। तो नोट कीजिए, हमारे फोन नंबर है 240-168 और नागौर का SD कोड है 01582। और हाँ, आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।
1: तो भैया देखो, रामचंद्र गोयल और हमारे साथ यारो गाइडो लोक भजन बाबा थाने भूलू ना एक घड़ी, बहुत ही

मीठी आवाज में आपने भुगतो करियो। और अब भैया एक बात, एक मिनट को भगत है तो आप हताई करें। देखो अबार टेम है जिकी फसल कटाई को चाले, और फसल कटाई रे साथे साथे किसान भाई इस चीज को भी राखे भी आजकल खटाव कम है, मौसम ऊपर जो बदलतो ही रहे, तो फसल ने तुरंत है जकी वे कटाई को काम भी करे भी फसल है तो लाटो काट ला। और लाटो आजकल मशीना ऊन लागो आताऊ तो रियो को नहीं, तो लाटो काटन में उतावल तो भैया देखो करनी चाहिए, हावचेती भी करनी चाहिए, आंधी रूड़ो आवे तो ढोका ढूंढ भी करना चाहिए। बण फसल ने जद आप थ्रेसर काटा तो भी टेम हावचेती रखनी जरूरी है। कई बार थोड़ी सी लापरवाही बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाए। आप मशीन की भी एक क्षमता हुआ करे, एक ताकत वे, एक समय वे, एक बिग कैपेसिटी वे, तो अगर आप चाहवांग भाई आप को जो को धान है वो बेगो निकल जाए और बी के चक्कर में आप भी ने ज्यादा बीरी क्षमता हूँ ज्यादा अगर उड़ देवा तो धान तो बेगो निकले को नीर वो जबकि फसल है जो का दाना है बे कचरे के साथ और जानता रहे बी में नुकसान हुई दाना फूटने की गुंजाइश भी रे बे। तो फसल आप काट्यों पहली हावचेती राखें, फसल ने ठीक ढंगों में हुकाई लेव और हावचेती राख लेव। और अब देखो घड़ी कन देखा तो आज तेवड़ी भगत तुरियो पूरो थंग राधेश्याम बेन दिरो शीख करा राम राम।

खेतीबाड़ी ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं, समय है कार्यक्रम युवावाणी का। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम युवावाणी।

ख्वाबों को पंख लगाओ, मंजिल को करीब लाओ, हर नई सुबह के साथ कुछ नया कर दिखाओ। रास्ता चाहे मुश्किल हो, हौसलों को कम न होने दो, अपने हुनर और अपनी सोच को दुनिया में पहचान दो। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी होस्ट और दोस्त नेहा नारायण सोनी और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी, जहां बातें होती हैं आपके सपनों की, आपकी सोच की और आपके करियर की और उन मुद्दों की जो सीधे आपकी जिंदगी से जुड़े हैं। तो तैयार हो जाइए कुछ नई बातें जानने, कुछ नया सीखने और अपनी सोच को एक नई दिशा देने के लिए, और साथ ही सुनते रहिए खूबसूरत गीतों का शानदार संगम भी। बात करते हैं हमारी सांस्कृतिक विविधता की, तो भारत की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है हमारी सांस्कृतिक विविधता। यहाँ अलग अलग भाषाएं, बोलियां, वेशभूषाएं, खान पान, लोक परंपराएं, संगीत, नृत्य और त्योहार मिलकर भारतीय संस्कृति को एक अनोखी पहचान देते हैं। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक हर क्षेत्र की अपनी विशेष सांस्कृतिक विरासत है। राजस्थान की लोक कला और कठपुतली, पंजाब का भांगड़ा, गुजरात का गरबा, असम का बिहू, केरल का कथकली और तमिलनाडु का भरतनाट्यम हमारी विविध संस्कृति की एक सुंदर झलक दिखाते हैं। इसी तरह दीपावली, होली, ईद, क्रिसमस, गुरुपर्व, पोंगल और ओणम जैसे त्यौहार हमें अलग अलग परंपराओं से परिचित कराते हैं। दोस्तों, हम हमारी चर्चा हमारी सांस्कृतिक विविधता पर जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये गीत।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: दोस्तों, इस गाने से पहले हम बात कर रहे थे कि हमारी सांस्कृतिक विविधता कितनी

आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों के जरिए युवा देश की लोक कलाओं, हस्तशिल्प और परंपराओं को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए हमारी सांस्कृतिक विविधता केवल हमारी पहचान नहीं बल्कि हमारी ताकत और हमारी साझा विरासत है। इसे सम्मान देना और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। दोस्तों, अब बात करते हैं त्योहारों का सामाजिक, आध्यात्मिक और मानसिक प्रभाव या महत्व के बारे में। तो भारत में त्योहार केवल खुशियां मनाने का अवसर नहीं बल्कि समाज, परिवार और हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को जोड़ने का माध्यम भी है। त्योहारों के सामाजिक महत्व की बात करें तो ये लोग को एक दूसरे के करीब लाते हैं। परिवार और मित्र साथ मिलकर समय बिताते हैं जिससे आपसी प्रेम, संयोग और भाईचारा बढ़ता है। आध्यात्मिक दृष्टि से त्यौहार हमें सत्य, सद्भाव, सेवा, करुणा और सकारात्मक सोच जैसे मूल्यों की याद दिलाते हैं। पूजा पाठ और धार्मिक परंपराएं व्यक्ति को अपनी संस्कृति और आस्था से जोड़ती है। दोस्तों, इस बारे में हम चर्चा और करेंगे लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
1: हाय यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
0: अरे वही अपना 60 रुपया।
1: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
0: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
1: और दूसरा?
0: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
1: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
0: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: दोस्तों हम बात कर रहे थे कि भारत में त्योहार केवल खुशियां मनाने का अवसर नहीं बल्कि समाज, परिवार और हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को जोड़ने का भी माध्यम है। त्योहारों से सामाजिक महत्व की बात करें तो ये लोगों को एक दूसरे के करीब लाते हैं, परिवार और मित्र साथ मिलकर समय बिताते हैं जिससे आपसी प्रेम, सहयोग और भाईचारा बढ़ता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से त्योहार हमें सत्य, सद्भाव, सेवा, करुणा और सकारात्मक सोच जैसे मूल्यों की याद दिलाते हैं। पाठ, पूजा और धार्मिक परंपराएं व्यक्ति को अपनी संस्कृति और आस्था से भी जोड़ती है। मानसिक रूप से बात करें तो त्योहार महत्वपूर्ण है। रोजमर्रा की व्यस्तता से या बिजनेस से कुछ समय निकालकर परिवार और प्रियजनों के साथ खुशियां बांटना मन को प्रसन्नता और नई ऊर्जा देता है। सामूहिक उत्सव अकेलेपन को कम करने और सकारात्मक वातावरण बनाने में सहायक हो सकते हैं। इसीलिए त्योहार हमारी सामाजिक एकता, आध्यात्मिक मूल्यों और मानसिक प्रसन्नता तीनों को मजबूत करने वाली हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा है। दोस्तों अब बात करेंगे बचत और वित्तीय साक्षरता के कुछ आसान टिप्स मैं आपको देना चाहूँगी। तो सबसे पहले है कि हमें बजट बनाना चाहिए। हर महीने अपनी आय और खर्चों का हिसाब हमें लिखना चाहिए। इससे पता चलता है कि पैसे कहाँ और कितने खर्च हो रहे हैं। अगला है कि पहले बचत फिर खर्च। इसका मतलब आय मिलते ही अपनी ज़रूरत के अनुसार कुछ राशि बचत के लिए अलग रखें और बाकी पैसे खर्च करें। दोस्तों मैं आपको बचत और वित्तीय साक्षरता के और टिप्स भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम सुनेंगे ये प्यारा सा गीत।

0: शिकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: दोस्तों, इस गाने से पहले हम बात कर रहे थे बचत और वित्तीय साक्षरता के कुछ आसान टिप्स। तो सबसे पहले हमने बात की कि बजट बनाएं, हर महीने अपनी आय और खर्चों का हिसाब लिखें, इससे पता चलता है कि पैसे कहाँ और कितने खर्च हो रहे हैं। अगला है पहले बचत फिर खर्च। आय मिलते ही अपनी ज़रूरत के अनुसार कुछ राशि बचत के लिए अलग रखें और बाकी पैसे खर्च करें। अगला है ज़रूरत और इच्छाओं में अंतर समझें। गैर जरूरी खरीदारी करने से पहले खुद से पूछें कि क्या इसकी वास्तव में हमें ज़रूरत है। ज़रूरत है तभी उस पर खर्च करें, वरना न करें। अगला है आपातकालीन बचत रखें। अचानक आने वाली ज़रूरी खर्चों के लिए धीरे धीरे अलग से बचत करने की आदत डालें। अगला है बैंकिंग की जानकारी बढ़ाएं। बचत खाता, ब्याज, डिजिटल भुगतान, ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं की भी मूल बातें समझें, उनकी जानकारी लें। अगला है निवेश से पहले जानकारी लें। किसी भी निवेश में पैसे लगाने से पहले उसके जोखिम, अवधि और शर्तों को अच्छी तरह समझें। केवल दूसरों की सलाह पर निर्णय न लें, खुद का भी दिमाग इस्तेमाल करें और फिर निवेश करें, जानकारी लें फिर निवेश करें। अगला है साइबर सुरक्षा का ध्यान रखें। OTP, पिन, पासवर्ड और बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें। संदिग्ध लिंक और अनजान संदेशों से सावधान रहें। याद रखिए, छोटी छोटी बचत की आदत और सही वित्तीय जानकारी भविष्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है।

दोस्तों, इसी गाने के साथ मैं नेहा नारायण सोनी लेती हूँ आपसे विदा। मुलाकात होगी जल्द ही, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए। नमस्कार।

युववाणी ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.7 MHz पर। श्रोताओं, शाम के 5:30 में आए सुनते हैं नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम पालवाड़ी।

किसी चीज का घमंड मत करना, क्योंकि वक्त बदलने में देर नहीं लगती। आज जो लोग आपकी तारीफ करते हैं, कल वही आपकी गलतियां भी गिना सकते हैं। इसलिए ऊंचा बनो मगर अहंकारी नहीं, क्योंकि फल से भरा पेड़ हमेशा झुकता है और खाली पेड़ ही सबसे ज़्यादा शोर मचाता है। जी हाँ बच्चों, मैं हूँ आपकी रईसा दीदी, लेकर आई हूँ रोचक जानकारियों से भरपूर आपका पसंदीदा कार्यक्रम बालवाड़ी। प्यारे बच्चों, आपसे कभी ना कभी आपके बड़े या आपके टीचर्स ने ये ज़रूर पूछा होगा कि आप बड़े होकर क्या बनोगे। तो ऐसे में आपने ज़रूर बताया होगा, मैं टीचर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगी, या किसी ने कहा होगा मैं तो सुपरमैन बनूंगा। तो बच्चों, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे आपके जैसे ही कुछ प्यारे बच्चों के विचार। एक बार मैं एक बच्चे के पास गई और उससे पूछा कि आप बड़े होकर क्या बनोगे। तो पता है उसने क्या कहा? उसने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा, क्योंकि मैं मेरी मम्मी को सुई नहीं लगने दूंगा। बच्चों, हर दूसरा बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, क्योंकि उसने देखा है कि बुखार में, बीमारी में डॉक्टर अंकल ही ठीक करते हैं। एक और बच्चे ने कहा मैं तो टीचर बनूंगा ताकि होमवर्क मुझे ना करना पड़े। एक बच्ची ने कहा मैं टीचर बनकर सब बच्चों को चॉकलेट दूंगी और कहूंगी आज होमवर्क नहीं, आज तो कहानी सुनेंगे। एक बच्ची ने कहा मैं पायलट बनूंगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि ऊपर से मेरा घर कैसा दिखता है और मैं बादलों को छूना चाहता हूं। तभी एक बच्चा बोला कि मैं तो पुलिस बनूंगा, क्योंकि पुलिस वाले किसी से नहीं डरते और वो हीरो होते हैं। इस प्रकार बच्चों, ये कुछ जवाब थे मासूम दिल वाले बच्चों के। प्यारे बच्चों, शायद हम बड़े होकर भूल जाते हैं कि क्या बनना है। सवाल का असली जवाब कैसे बनना में छुपा है। दयालु, बहादुर और एक अच्छा इंसान बनना ही इसका परफेक्ट आंसर है। इसलिए प्यारे बच्चों, जीवन में आप कुछ भी बनो, लेकिन सबसे पहले अपने जीवन में एक अच्छा और एक सफल इंसान बनना सीखो। अब बातों को देते हैं विराम और सुनते हैं ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे बजरंगी भाईजान फिल्म का गीत। प्यारे बच्चों, आसमान में क्या क्या है, चलो एकदम आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले आता है सूरज, हमारा हीरो। बच्चों, सूरज एक बहुत बड़ा आग का गोला है, इतना बड़ा कि इसमें 13 लाख धरती समा जाए। इसकी अपनी गर्मी और रोशनी है, इसी से दिन होता है, पेड़ पौधे बड़े होते हैं और हमें जीवन मिलता है। सूरज कहीं नहीं जाता बच्चों, हमारी धरती ही इसके चारों ओर घूमती है। इसी से दिन रात और मौसम बनते हैं। फिर बात आती है चांद, धरती का

पक्का दोस्त। जी हाँ बच्चों, चांद धरती का इकलौता उपग्रह है, मतलब वो हमेशा धरती के साथ साथ घूमता है। चांद पर अपनी रोशनी नहीं है, वो सूरज की रोशनी से चमकता है। अब बात आती है रात के टिमटिमाते बल्ब यानी तारों की। रात को जो टिमटिमाते हैं वो सब भी सूरज ही हैं। प्यारे बच्चों, हर तारा आग का बहुत बड़ा गोला है, बस वो हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर है, इसलिए छोटे दिखते हैं। तारों से कुछ आकार भी बनते हैं, जैसे सप्तऋषि, सात तारों वाला सवालिया निशान जैसा। पहले लोग इसी से रास्ता देखते थे। बच्चों, दिन में भी तारे होते हैं पर सूरज की तेज रोशनी में दिखते नहीं हैं। अब बात आती है और क्या क्या है आसमान में, तो ग्रह। सूरज के परिवार के 8 सदस्य, हमारी धरती भी एक ग्रह है। बाकी हैं बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सब भी सूरज के चक्कर लगाते हैं। फिर बात आती है बादलों की, तो बादल ये पानी की छोटी छोटी बूंदों से बने होते हैं, यही बारिश लाते हैं और हमारे आसमान में आते हैं। इंद्रधनुष, बच्चों बारिश के बाद जब धूप निकलती है तो सूरज की रोशनी पानी के बाद जब धूप निकलती है तो सूरज की रोशनी पानी की बूंदों में से निकलकर 7 रंगों में बट जाती है। और अब एक जादू की बात बताऊं, दिन में आसमान नीला क्यों दिखता है? असल में बच्चों, आसमान का कोई रंग ही नहीं है। सूरज की रोशनी हवा से टकराती है तो नीला रंग सबसे ज़्यादा फैल जाता है, इसलिए आसमान नीला दिखता है। और रात को सूरज नहीं होता, इसलिए आसमान काला दिखता है। तो इस प्रकार से बच्चों, ये जानकारी हुई आसमान के बारे में। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं स्वदेश फिल्म का ये गीत।

प्यारे बच्चों, जीवन में कुछ हासिल करना है तो मेहनत ज़रूरी है, क्योंकि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। इस बात को बच्चों आप एक कहानी के माध्यम से भी समझ सकते हैं। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी। सब उसे प्यार से गुड़िया बुलाते। गुड़िया को मिट्टी की गुड़िया बनाना बहुत पसंद था। उसकी गुड़िया इतनी सुंदर होती बच्चों कि देखने वाले देखते रह जाते। उसका सपना था कि एक दिन उसकी गुड़ियाएं शहर के बड़े मेले में बिकेंगी। एक बार गांव में खबर आई, शहर में एक बड़ा मेला लगने वाला था। गुड़िया बहुत खुश हो गई। उसने दिन रात मेहनत करके 100 गुड़िया बनाई। मेले वाले दिन वो टोकरी लेकर शहर गई। पूरे दिन में एक भी गुड़िया नहीं बिकी। लोग खिलौने तो देखते पर खरीदते नहीं। गुड़िया थक हार

लौट आई। उसकी माँ ने कहा, छोड़ दे बेटा, ये नहीं बिकेंगे। पर गुड़िया ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, शायद मेरी गुड़ियाओं में कुछ कमी है। अगले दिन से उसने और मेहनत शुरू की। सुबह 4 बजे उठती, अच्छी मिट्टी लाती, गुड़िया को रंग बिरंगे कपड़े पहनाती। वो बाजार जाती, दुकानदारों से पूछती कि ग्राहक को क्या पसंद है। दूसरी बार फिर मेला लगा। इस बार वो फिर 100 नई गुड़िया लेकर गई और इस बार 10 गुड़िया बिकी। गुड़िया को थोड़ा दुख था, पर वो खुश भी थी। पिछली बार से तो बेहतर है, 10 गुड़िया तो बिकी। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। कहते थे, अरे गुड़िया, तू गुड़िया ही बनाती रह जाएगी। पर गुड़िया ने सबकी बात को अनसुना कर दी। उसने तीसरी बार और सुंदर और मजबूत गुड़िया बनाई। उसने हर गुड़िया के साथ एक छोटी कहानी भी लिखी। तीसरी बार जब वो मेले में गई तो चमत्कार हो गया, उसकी सारी की सारी गुड़िया बिक गई। शहर के एक बड़े दुकानदार ने उसे 1000 गुड़िया का ऑर्डर भी दे दिया। उसी गुड़िया ने, जिस पर सब लोग हंसते थे, आज अपने दम पर अपना नाम उसने बना लिया था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हर कोशिश आपको पहले से बेहतर बनाती है। हर हार मानना ही असली हार है। गुड़िया पहली बार में हार मान लेती तो कभी नहीं जीतती। लोग क्या कहेंगे ये मत सोचो। अगर गुड़िया लोगों के मजाक से रुक जाती तो उसका सपना अधूरा रह जाता। इसलिए बच्चों, सफलता के लिए मेहनत ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, ये कहानी थी मेहनत के बारे में। अब आप मुझे ये बताइए, क्या आप जानते हैं ये बात किसने कही कि मैं अंतरिक्ष के लिए बनी हूँ, हर पल इसी के लिए जिया और इसी के लिए मरूँगी? जी हाँ बच्चों, हम बात कर रहे हैं कल्पना चावला की। एक छोटे से शहर की लड़की ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि सपने अगर सच्चे हों तो आसमान भी छोटा पड़ जाता है। कल्पना चावला, जिनका जन्म 17 मार्च 1962 में करनाल हरियाणा में हुआ था। परिवार में सबसे छोटी थी, इसलिए घर में प्यार से उन्हें मोंटू बुलाते थे। पिताजी का नाम बनारसी लाल चावला था, जो एक बिजनेसमैन थे। बचपन से ही आसमान और हवाई जहाजों में रुचि बहुत रखती थी वो। करनाल के फ्लाइंग क्लब को वो टकटकी लगाकर देखती ही रहती। पढ़ाई में एक शानदार सफर तय करने के बाद उनका थीसिस का विषय था, हवाई जहाज के चारों ओर हवा कैसे बहती है। ये बहुत कठिन विषय था, पर उन्होंने इस पर खूब मेहनत की। पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने नासा रिसर्च सेंटर में काम शुरू किया। 1994 में उनका चयन नासा एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स में हो गया। 15.5 लाख लोगों में से सिर्फ 19 लोग ही चुने गए और उनमें एक थी, और वो बन गई थी भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। बच्चों, उन्होंने अपनी पहली उड़ान STS-87 से 19 नवंबर से 5 दिसंबर 1997 में स्पेस शटल कोलंबिया से तय की थी। दूसरी और आखिरी उड़ान STS-1107 16 जनवरी 2003 फिर से कोलंबिया शटल से तय की। इस मिशन में 7 अंतरिक्ष यात्री थे। 16 दिन तक उन्होंने अंतरिक्ष में 80 से ज़्यादा वैज्ञानिक प्रयोग किए। और फिर वो हादसा, 1 फरवरी 2003, जब वो धरती पर लौट रही थी तो धरती से सिर्फ 16 मिनट की दूरी पर थी। कोलंबिया शटल का एक हिस्सा लॉन्च के समय टूट गया था, जिससे उसके पंख में छेद हो गया था। वापसी के समय गर्म हवा अंदर घुस गई और शटल टेक्सास के आसमान में टूटकर बिखर गया। इस हादसे में कल्पना समेत 7 यात्रियों की मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार से बच्चों, ये जानकारी हुई कल्पना चावला के बारे में। अब कार्यक्रम के अंतिम कड़ी में सुनते हैं ये गीत।

इसी के साथ बच्चों समय हो गया है आपको गुड बाय कहने का, लेकिन जाते जाते इतना जरूर कहेंगे कि राह संघर्ष की जो चलता है वह

ही संसार बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है वही सूर्य बनकर निकलता है। अब कहते हैं अलविदा बच्चों, रखिएगा अपना ख्याल, जय हिंद।

बालवाड़ी, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमिचरण से बोल रहे हैं, FM 103.7 MHz पर। शाम के 6 बज रहे हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं है बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है और पिछले दो दिनों की चर्चाओं ने इस विश्वास को और मजबूत किया है। श्री मोदी ने आज लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता निर्माण पर सत्र में आशा प्रकट की कि ब्रिक्स सम्मेलन में स्वीकार किया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इम्पैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स अपने तीसरे दशक में प्रवेश करने जा रहा है और दुनिया अब इस समूह से ठोस परिणामों की आशा करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। उन्होंने नई दिल्ली सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी ब्रिक्स देशों, सहयोगी देशों और उनकी टीमों की सराहना की। इससे पहले सम्मेलन के खुले सत्र में प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे उद्यमियों को ज्ञान, वित्त और नए बाजारों से जोड़ने के लिए ब्रिक्स एमएसएमई सहयोग पोर्टल स्थापित करने की पहल का प्रस्ताव रखा गया है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभों को ग्लोबल साउथ की जरूरतों के अनुसार ढाला और उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
1: कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियलिटीज बट टुगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्त तोकायेव के साथ द्विपक्षीय बैठक में आपसी संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी के साथ भी बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान क्षेत्रीय घटनाक्रम और भारत मिस्र की साझेदारी सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ मुलाकात में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश कई क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करना जारी रखेंगे। श्री मोदी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति आर मार्कोस जूनियर के साथ भी बातचीत की। उन्होंने मौजूदा आसियान अध्यक्ष के तौर पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में फिलीपींस की भागीदारी का स्वागत किया। श्री मोदी दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति तथा नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति के साथ और द्विपक्षीय बैठकें करने वाले हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भारतीय रत्न और आभूषण

0: उद्योग से ये सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि महामारी से निपटने की तैयारियों में भारत एक दशक पहले की स्थिति से बहुत आगे निकल चुका है। देश ने ऐसी जीवंत जैव अर्थव्यवस्था, टीका विकसित करने की बेहतर क्षमता और वैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया है, जिनसे भविष्य में महामारियों से निपटने की वैश्विक तैयारियों में योगदान दिया जा सकता है। उन्होंने ये बात आज नई दिल्ली में महामारी के लिए तैयारी नवाचार गठबंधन के बोर्ड और निवेशक परिषद के लिए आयोजित एक समारोह में कही। चीन के मोकी में भारतीय महिला और पुरुष टीम ने जूनियर एशिया कप का खिताब जीत लिया है। महिला वर्ग के फाइनल में भारत ने चीन को 1-0 से हराया, जबकि पुरुष वर्ग फाइनल में भारत ने कोरिया को 4-1 से शिकस्त दी। जापान पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में आज प्रमोद भगत ने पुरुष सिंगल्स SL3 में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चरण से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 6:05 में सुनते हैं फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया फिल्म ही रांझा से, आवाज लता मंगेशकर और अनवर की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आनंद बख्शी की शब्द रचना।

चिरमिर चैनल का संग आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में ये सुनहरा नगमा आप सुन रहे हैं फिल्म अलग अलग का। संगीत है आर डी बर्मन का और गीतकार है आनंद बख्शी।

फिल्म संगीत की आखिरी पेशकश फिल्म साजन का एक गीत एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में, संगीत नदीम शर्मन का है, समीर की शब्द रचना।

इस खूबसूरत नगमे के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम माटी के स्वर।

0: माटी खुशर कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं चंपा मैथी एंड पार्टी।
1: परचुर बाबे दर्जी ने

0: चंपा पैथियन पार्टी के गए इस लोकगीत के साथ ही माटी के सर कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6:28 में थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। उसके बाद आप सुनेंगे 6:45 में राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी जयपुर केंद्र से ही रिले करेंगे।
1: जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल, साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर, यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ हमेशा, देश और दुनिया भर में कहीं भी।
2: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन।

0: मिलन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: हर बैंक के अलग अलग केवाईसी पेपर्स, काश एक चाबी होती।
2: एक चाबी है सीकेवाईसी आईडी।
1: सीकेवाईसी मतलब?
2: बैंक आपके केवाईसी रिकॉर्ड सीकेवाईसी रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट सीकेवाईसी आईडी। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह केवाईसी अपडेट तो सब जगह अपडेट।
1: वाह, आरबीआई कहता है
2: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
3: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का इकोसिस्टम है। नई दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन संपन्न। प्रदेश के 309 नगर निकायों के चुनावों के तहत कल होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी, रैली और विजयी जुलूस पर रोक रहेगी। रामदेव जयंती पर आज प्रदेश भर में धार्मिक उल्लास। गणेश चतुर्थी का पर्व कल, प्रथम आराध्य की आराधना को लेकर तैयारियां जोरों पर। और एशिया कप महिला T20 क्रिकेट का फाइनल आज भारत और श्रीलंका के बीच दुबई में खेला जाएगा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता, और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों का सम्मेलन आज सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। दो दिवसीय इस महत्वपूर्ण सम्मेलन के दौरान नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समापन समारोह में अपने संबोधन में प्रतिभागी देशों की सहभागिता के लिए आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं है बल्कि समाधानों का एक इकोसिस्टम है, और दो दिनों की चर्चाओं ने इस विश्वास को और मजबूत किया है। श्री मोदी ने अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए चीन को शुभकामनाएं देते हुए सभी परिणामों को समय सीमा के भीतर ऐसे कामों में बदलने की जरूरत पर जोर दिया जिनका जमीनी स्तर पर असर दिखाई दे। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देश मिलकर ये सुनिश्चित करेंगे कि ब्रिक्स का ढांचा कागजी कार्रवाई से आगे बढ़कर असल जिंदगी में ठोस असर डाले।
4: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
3: गौरतलब है कि ये शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इसका मुख्य विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण रखा गया था। प्रदेश में 309 नगरीय निकायों के चुनावों के तहत कल मतगणना की जाएगी। स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम में कैद 38,889 उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला दोपहर तक आने की उम्मीद है। सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली वोटों की गिनती को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद मतगणना को पारदर्शी, स्वतंत्र और निष्पक्ष रखने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। मतदान कार्मिकों को पूरी तैयारी के साथ समय पर मतगणना केंद्र पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र पर अधिकृत प्रवेश पत्र धारी को ही अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी। मतगणना के दिन विजय जुलूस और रैली निकालने पर रोक रहेगी। कल गणेश चतुर्थी के आयोजनों को देखते हुए भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है। वहीं भड़काऊ नारों और समर्थकों की भीड़ इकट्ठी करने पर रोक लगाई गई है। गौरतलब है कि 9

0: और 11 सितंबर को दो चरणों में संपन्न मतदान के पहले दौर में 162 निकायों में 76.42% मतदान हुआ, जबकि दूसरे चरण में 147 नगर निकायों में करीब 71% मतदाताओं ने वोट डाले। 21 सितंबर को निकायों के अध्यक्ष चुने जाएंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कहा है कि देश में लगभग 87,000 स्वच्छता कर्मचारियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण किट PPE प्रदान की गई है। मंत्रालय के सचिव सुधांश पंत ने बताया कि कामकाज के सुरक्षित माहौल और स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 76,000 से अधिक कर्मचारियों को विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के दायरे में लाया गया है। उन्होंने बताया कि 983 स्वच्छता कर्मचारियों के लिए लगभग 34 करोड़ रुपए की अग्रिम पूंजीगत सब्सिडी जारी की गई है। रेलवे ने अगस्त 2026 के दौरान माल ढुलाई में सालाना आधार पर 5.4% की शानदार बढ़त दर्ज की है। इस अवधि में रेलवे ने 137.9 मिलियन टन माल की ढुलाई की, जबकि अगस्त 2025 में ये आंकड़ा 130.9 मिलियन टन था। मंत्रालय के अनुसार पिछले महीने 5 नए गति शक्ति कार्गो टर्मिनल शुरू किए गए हैं। इसके बाद कुल कार्गो टर्मिनलों की संख्या बढ़कर 149 हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि बीते महीने 14 अमृत भारत विशेष ट्रेनों को नियमित सेवाओं में बदल दिया गया, जिससे देश में कुल अमृत भारत सेवाओं की संख्या बढ़कर 86 हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। गणेश चतुर्थी का पर्व कल परंपरागत श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर प्रथम आराध्य की पूजा अर्चना को लेकर लोगों में विशेष उल्लास देखने को मिल रहा है। गणेश मूर्तियां और पूजन सामग्री खरीदने को लेकर बाजारों में भीड़ देखी जा रही है। मिट्टी और पत्थर से बनी मूर्तियों के साथ ही गोबर और जूट की इको फ्रेंडली मूर्तियां भी प्रचलन में है। गणेश चतुर्थी के साथ ही 10 दिवसीय गणेश उत्सव के आयोजनों की भी कल से विधिवत शुरुआत होगी। घर घर गणपति बप्पा की चौकियों की स्थापना के साथ ही जगह जगह गणेश पांडाल सजाए जा रहे हैं। इससे पहले आज पूर्व संध्या पर प्रदेश भर के गणेश मंदिरों में आकर्षक रोशनी की गई है। जयपुर के गढ़ गणेश, रणथंबोर के त्रिनेत्र गणेश, कोटा के खड़े गणेश, अजमेर के खोड़ा गणेश, पाली के सिद्धपीठ गणेश मंदिर और बीकानेर के किला स्थित मंदिर सहित सभी छोटे गणेश मंदिरों में गौरीपुत्र के पूजन और अभिषेक को लेकर विशेष तैयारियां की गई है। राजधानी के मोती डूंगरी मंदिर में आज गणेश जी को मेहंदी चढ़ाई गई। यहां कल के आयोजन को देखते हुए मंदिर कमेटी और जिला प्रशासन द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता ने बताया कि रणथंबोर त्रिनेत्र गणेश मंदिर में भर रहे मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। अभयारण्य से होकर गुजरने वाले रास्ते में लोगों को जंगली जानवरों से सुरक्षित रखने के लिए वन विभाग और जिला प्रशासन भी सतर्क मोड पर है।
1: त्रिनेत्र गणेश के दरबार में ढोक लगाकर परिवार की सुख समृद्धि के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पदयात्रियों और भक्तों के आने का यह सिलसिला रात भर चलेगा। कल गणेश चतुर्थी के अवसर पर सुबह मंगला आरती और दोपहर में जन्म की झांकी मेले का मुख्य आकर्षण रहेंगे। पुलिस और प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिजली, पानी, चिकित्सा, रसद के विशेष प्रबंध किए गए हैं। रेलवे की ओर से मेला स्पेशल गाड़ियां चलाई जा रही हैं, जबकि परिवहन विभाग की ओर से रेलवे स्टेशन से गणेश धाम तक रियायती दरों पर बसें चलाई जा रही है। धर्मार्थ संगठनों की ओर से भी अनेक भंडारे लगाए गए हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
0: भाद्र माह की दूज पर आज लोक देवता बाबा रामदेव की जयंती प्रदेश भर में धार्मिक उल्लास के साथ मनाई जा रही है। जैसलमेर के रामदेवरा स्थित मंदिर में सालाना मेला पूरे परवान पर है। सुबह पंचामृत अभिषेक और शिखर पर ध्वजारोहण के साथ मेले की विधिवत शुरुआत हुई। दशमी तिथि तक चलने वाले इस मेले में राजस्थान के अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा रामसा पीर की जयकारों के साथ पहुंच रहे हैं। बाबा रामदेव के प्राकट्य दिवस पर जो

0: जोधपुर के मसूरिया स्थित बाबा बालीनाथ जी की समाधि पर भी आज मेला भर रहा है। हमारे जोधपुर संवाददाता ने बताया कि रामदेवरा जाने से पहले श्रद्धालु यहां माथा टेक कर आगे बढ़ते हैं।
1: बाबा रामदेव जी का मेला उनके गुरु बालीनाथ जी के समाधि स्थल जोधपुर के मसूरिया मंदिर से शुरू हुआ। सुबह 4 बजे मंगला आरती के साथ मेले का औपचारिक आगाज हुआ। 108 दीपों से महाआरती की गई और 108 किलो पंचमेवे के लड्डुओं का भोग लगाया गया। समाधि स्थल पर बाबा रामदेव जी अपने गुरु बालीनाथ जी से भेंट करते हुए तस्वीर उकेरी गई, जिस पर सोने चांदी का वर्क कर पूजन किया गया। बाबा के दर्शनों के लिए हजारों श्रद्धालु दिन भर से मंदिर पहुंच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। मान्यता है कि बाबा रामदेव जी के रूणीचा धाम जाने से पहले जोधपुर स्थित गुरु बालीनाथ जी की समाधि के दर्शन करने से यात्रा सफल होती है। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: जैसलमेर के पोखरण रेंज में भारतीय वायुसेना कल से ड्रोनोथॉन 2026 आयोजित करेगी। 3 दिन के इस ड्रोनोथॉन में भारतीय उद्योग जगत की कंपनियां स्वदेशी ड्रोन और ड्रोन रोधी तकनीकों का विकास, परीक्षण और प्रदर्शन करेंगी। इस आयोजन का उद्देश्य घरेलू निर्माताओं को मानव रहित हवाई प्रणालियों और ड्रोन रोधी प्रणालियों में अपनी क्षमताओं और तकनीकी प्रगति को प्रदर्शित करने का अवसर देना है। ड्रोनोथॉन के जरिए मौजूदा जरूरतों के अनुरूप तकनीकी समाधान तलाशने और उनकी युद्धक प्रभावशीलता का आकलन करने में मदद मिलेगी। आयोजन को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। पुरुष क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 क्रिकेट सीरीज का पहला मैच आज खेला जाएगा। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाले इस मैच में श्रेयस अय्यर भारतीय टीम के कप्तान होंगे, जबकि तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। दूसरा मैच मंगलवार को और तीसरा तथा अंतिम मुकाबला गुरुवार को होगा। वहीं एशिया कप के महिला T20 क्रिकेट फाइनल में आज भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। दुबई में रात 8 बजे से खेले जाने वाले मैच में भारत ग्रुप ए में अपने सभी मैच जीतकर शीर्ष पर रहा है। भारत ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को हराया था, जबकि श्रीलंका की टीम ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का इकोसिस्टम है। नई दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन संपन्न हुआ। प्रदेश के 309 नगर निकायों के चुनाव के तहत कल होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी, रैली और विजयी जुलूस पर रोक रहेगी। रामदेव जयंती पर आज प्रदेश भर में धार्मिक उल्लास, गणेश चतुर्थी का पर्व कल, प्रथम आराध्य की आराधना को लेकर तैयारियां जोरों पर। और एशिया कप महिला T20 क्रिकेट का फाइनल आज भारत और श्रीलंका के बीच दुबई में खेला जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से डीग जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आरजू शर्मा ने तैयार किया है। नगरीय निकाय चुनाव के तहत जिले के 6 निकाय क्षेत्रों डीग, कामा, पहाड़ी, सीकरी, कुम्हेर और ब्रजनगर में मतदान शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुआ। मतगणना कल होगी। इन नगरीय निकायों में कुल 1,17,885 मतदाताओं में से 1,257,000 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कुल मिलाकर जिले में कुल 85.5% मतदान दर्ज किया गया। साइबर अपराधों से बचाव के लिए सितंबर महीने में साइबर सुरक्षित राजस्थान जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला स्तर पर अभियान की निगरानी कर रहे हैं। अभियान के तहत पुलिस शिक्षण संस्थानों में व्याख्यान, कार्यशालाएं, प्रश्नोत्तरी, सेमिनार और विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित कर साइबर सुरक्षा का संदेश दिया जा रहा है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों और पर्यटन स्थलों पर नुक्कड़ नाटक, पोस्टर, ऑडियो वीडियो संदेश और साइबर जागरूकता स्टॉल भी लगाए गए हैं। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत जिले ने बड़ी सफलता हासिल की है। जिले को हरियालो राजस्थान के तहत 6 लाख से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया था, जिसे पूरा करते हुए अब तक 12 लाख से भी अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। जिला वन अधिकारी सुरेश मिश्रा ने बताया कि जिले में 300 हेक्टेयर से भी अधिक का ग्रीन कवर बनाया जा चुका है, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही एक जिला एक

0: वृक्ष योजना के तहत विशेष रूप से अर्जुन के पौधों को आम लोगों के बीच बांटा जा रहा है ताकि औषधीय और छायादार वृक्षों की संख्या में इजाफा हो सके। जिले के 220 पंचायतों में 440 अमृत पोषण वाटिकाएं विकसित करने की भी योजना है। इस योजना के तहत बच्चों को कुपोषण से मुक्त किया जाएगा, साथ ही महिलाओं की आजीविका भी बढ़ाई जाएगी। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन सिंह ने बताया कि इन वाटिकाओं में ताजी जैविक सब्जियां, फल और औषधीय पौधे उगाए जाएंगे। इनका उपयोग मिड डे मील और महिलाओं तथा बच्चों के पोषाहार में होगा। विभाग राजीविका समूहों और ग्राम पंचायतों के साथ बैठक कर स्थान का चयन और कार्य योजना को अंतिम रूप देगा। मौसम बदलने के साथ ही इन्फ्लुएंजा और स्वाइन फ्लू जैसी मौसमी बीमारियों के मामले जिले में बढ़ गए हैं। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। जिले के सभी सरकारी अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वाइन फ्लू की दवाएं, आवश्यक जांच और आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार सिंघल ने बताया कि समय रहते लक्षणों की पहचान और सावधानी बरतने से स्वाइन फ्लू के संक्रमण से बचा जा सकता है। तेज बुखार, गले में खराश, सूखी खांसी, सिर दर्द और मांसपेशियों में तेज दर्द स्वाइन फ्लू के प्रमुख लक्षण हैं। जिले में पशुओं में फैल रही लंपी स्किन डिजीज के मामले बढ़ने के बाद सरकार ने प्रभावित इलाकों में पशुओं की आवाजाही रोकने और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर भावना यादव ने पशुपालकों से अपील की है कि बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर नजदीकी पशु चिकित्सा केंद्र को सूचना दें, पशु बाड़े और उपकरणों की सफाई रखें तथा मृत पशु का सुरक्षित निस्तारण करें। वहीं पशुपालन विभाग ने जिले में पशु औषधि विक्रय केंद्र शुरू करने की तैयारी की है। इन केंद्रों पर पशुओं के उपचार के लिए गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं बाजार की तुलना में कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ ही पशुपालकों को मिनरल मिक्सचर, पशु पूरक आहार और अन्य जरूरी पशु चिकित्सा सामग्री भी एक ही स्थान पर मिल सकेगी। जिले में पिछले दिनों कई दिनों से बारिश का दौर बना हुआ है। कई इलाकों में भारी बरसात होने के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। कई निचले इलाकों में पानी भर जाने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं दूसरी ओर किसानों को खरीफ की फसल की चिंता सता रही है। ज्वार और बाजरे की पकी हुई फसलें बेमौसम की बारिश से खराब होने की आशंका बनी हुई है। प्रशासन ने किसानों को सलाह दी है कि वे अपनी कटी हुई फसलों को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर सहेज लें ताकि खराबे की आशंका कम हो सके। डीग जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेरू पेश से सिंझा बगतरा प्रादेशिक समाचार। पहले खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कयो ब्रिक्स भगत देशारो समूह ने बल्कि समाधानारो इकोसिस्टम है। नई दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन पूर्ण। प्रदेश रा 309 नगर निकाय रा चुनाव रे तहत काले होण वाला वोटर री गिनती री सगली तैयारियां पूरी। रैली अरजीत रा जुलूस माथे रोक रे वेला। रामदेव जयंती माथे आज प्रदेश भर में धार्मिक उमाव। गणेश चतुर्थी रो त्योहार काले पहला आराधेरी आराधना ने लेर तैयारियां जोरा माथे। और एशिया कप महिला T20 क्रिकेट रो फाइनल आज भारत श्रीलंका रे बीच दुबई में खेलो जायला। समाचार रे साथ है मैं शंभु सिंह। और अबे समाचार विगतवार। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशारो सम्मेलन आज कामयाब पूर्ण पूरो वेग्यो। दो दिन रो ई महत्व सम्मेलन रे दौरान नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनाई जो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समापन जलसा में बोलता प्रतिभागी देशारी भागीदारी सारू आभार जतायो। प्रधानमंत्री कयो के ब्रिक्स फगत देशारो समूह नी है बल्कि निपटारारो एक इकोसिस्टम है जो लाडला दिनारी बतल ने और मजबूत करे है। श्री मोदी आवता ब्रिक्स शिखर सम्मेलन री मेजबानी सारू चीन ने शुभकामना देवता सगला नतीजा ने बगतसर इन तरह रा कामा माय बदलन री जरूरत माथे जोर दियो जिन रो जमीनी थर माथे असर दिखे। वणा कयो के ब्रिक्स देश मिलने ओ तय करेला के ब्रिक्स रो ढांचो कागजी कार्रवाइयां ने आगे बदने असल जिंदगी माय ठोस असर करे।

0: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इम्पैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
1: ध्यान जोगे के ओ शिखर सम्मेलन भारतीय सदारत माय वीओ जिन रो खास मुद्दों लचीलोपन नवाचार सहयोग और स्थिरता तथा सारू निर्माण राखी जो हो। प्रदेश रा 309 नगरीय निकाया माय विया चुनावा रा वोटा री गिनती काले करी जायला। स्ट्रांग रूम माय राखी जी ईवीएम माय कैद 38,889 उम्मीदवार रा चुनावी भाग्य रो फैसलो दोपहर तई आवण री आस है। सवारा 8 बजाऊ शुरू होने वाली वोटा री गिनती ने लेर सगली तैयारियां पूरी कर लीजी है। निर्वाचन आयोग रा निर्देश रह पछे निर्वाचन महकमो वोटा री गिनती ने साफ गोई स्वतंत्र और निष्पक्ष राखण सारू कई कदम उठाया है। मतदान कर्मिया ने पूरी तैयारी रे साथे बगतसर मतगणना केंद्र माथे पुगण रा निर्देश दीजिया है। केंद्र माथे मान्यता वाला प्रवेश पत्र धारी नहीं माय जावण री मंजूरी दी जायला। मतगणना रे दिन विजय जुलूस रैली निकालन माथे रोक रेवेला। काले गणेश चतुर्थी रा आयोजन ने देखना खास सावचेती बरती जावे। भड़काऊ नारा समर्थकारी भीड़ भेड़ीकरण माथे ही रोक लगाई जी है। ध्यान जोग के 9 और 11 सितंबर ने दो चरणा माय पुराविया मतदान रा पहला दौर माय 162 निकाया माय 76.42% वोट पड़िया, जबकि दूजा चरण माय 147 नगर निकाय माय कोई 71% वोट पड़िया। निकाय माय अध्यक्ष रो चुनाव 21 सितंबर ने करियो जायला। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कहो है कि देश माय कोई 87,000 स्वच्छता कार्मिका ने निजू हिफाजती उपकरण किट पीपीई दिरिजिया है। मंत्रालय रा सचिव सुधांशु पंत बतायो के कामकाज रे हिफाजती माहौल और स्वास्थ्य हिफाजत तय करण सारू 76,032 कार्मिका ने न्यारा न्यारा स्वास्थ्य बीमा योजना वाला दायरा माय लाई जा है। वणा कयो के सरकार स्वच्छता कार्मिका ना कल्याण और सम्मान सारू बरोबर कदम उठा रही है। इस सारू कार्मिका नी विगतवार रूपरेखा तैयार करण हिफाजती उपकरण देवण स्वास्थ्य बीमा कवरेज रोकड़ मदद और हिफाजत रा बुनियादी ढांचा ने मजबूत करण जैसा कदम उठाया जावे। श्री पंत बतायो के 983 स्वच्छता कार्मिका सारू कोई 34 करोड़ रुपया री एडवांस पूंजीगत सब्सिडी काढ़ी जी है। आ मदद मशीनी स्वच्छता अभियान ने बढ़ावो देवण रे साथे कार्मिका सारू आजीविका रा नुआ मौकाई तय करे है। भारतीय रेल अगस्त 2026 रे दौरान माल ढुलाई माय सालाना आधार माथे 5.4% री चौकी बढ़त दर्ज करी है। ई बगत माय रेलवे 137.9 मिलियन टन माल री ढुलाई करी, जबकि अगस्त 2025 माय ओ आंकड़ो 130.9 मिलियन टन रियो हो। रेल मंत्रालय बतायो के अगस्त 2025 री तुलना में ई बार माल ढुलाइयों मिलन वाली आमद में 6.27% री बढ़वार भी है, जो रेलवे रा माल ढुलाई कारोबार में बरोबर मजबूती हालात ने दर्शावे है। मंत्रालय मुजब लारलामीना 5 नुआ गति शक्ति कार्गो टर्मिनल शुरू करी जा। इन रे पछे कुल कार्गो टर्मिनल री तादाद बदने 149 वेगी है। मंत्रालय बतायो के लारलामीना 14 अमृत भारत विशेष रेलगाड़ियां ने रोज री सेवा माय बदली जा, जीणो देश माय कुल अमृत भारत सेवामां री तादाद बदने 86 वेगी है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_ जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान माथे सुन सको हो। इनके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in माथे समाचार सुन सको हो और इनो जुड़िया फोटो और वीडियो देख सको हो। गणेश चतुर्थी रो तिवार काले सिरदारे साथे मनायो जायला। ई मौके पहला आराध्यरी पूजा अर्चना ने लेर लोगा माय खास उमाव देखण ने मिले। गणेश मूर्त और पूजन री चीजा खरीदण ने लेर बाजारा माय भीड़ देखी जावे। माटी और पत्थरों बनी मूर्तां रे साथ ही गोबर और जूटरी इको फ्रेंडली मूर्ति चलन माए है। गणेश चतुर्थी रे साथ ही 10 दिन रा गणेश उत्सव रा आयोजना रोई कालेऊं विधिपूर्ण शुरुआत वेला। घर घर गणपति बप्पारी चौकियां थर्पण रे साथ ही ठोड़ ठोड़ गणेश पांडाली सजाया जावे। इनो पहला आज पहले सिंझा प्रदेश भर रा गणेश मिंद्रा माए मोवनी रोशनी करी जी है। जयपुर रा गढ़ गणेश, रणथंबोर रा त्रिनेत्र गणेश, कोटा रा खड़े गणेश, अजमेर रा खोड़ा गणेश, पाली रा सिद्धपीठ गणेश मिंदर और बीकानेर रा किलारा मिंदर समेत सगला छोटा मोटा गणेश मिंदरा माए गोरी पुत्र रा पूजन और तिलक नलेर खास तैयारियां करी जी है। राजधानी रा मोती डूंगरी मिंदर माए आज गणेश जी रे मेहंदी चढ़ाई जायला। अठे काले रा आयोजन ने देखता मंदिर कमेटी और जिला प्रशासन कानियों करड़ा बंदोबस्त करी जिया है। महाराज सवाई माधोपुर खबरनवीस बतायो कि रणथंबोर रा त्रिनेत्र गणेश मिंदर माए भरीजरिया मेला माए श्रद्धालुआरी भीड़ उमड़ रही है। अभ्यारण्य वेर जावण वाला रस्ता माए लोगों ने जंगली जिनारों हिफाजत राखण सारू जंगलात महकमो और जिला प्रशासन सावचेती मोड माते है।
2: त्रिनेत्र गणेश के दरबार में ढोक लगाकर परिवार की सुख समृद्धि के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पदयात्रियों और भक्तों के आने का यह सिलसिला रात भर चलेगा। कल गणेश चतुर्थी के अवसर पर सुबह मंगला आरती और दोपहर में जन्म की झांकी मेले का मुख्य आकर्षण रहेंगे। पुलिस और प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिजली, पानी, चिकित्सा, रसद के विशेष प्रबंध किए गए हैं। रेलवे की ओर से मेला स्पेशल गाड़ियां चलाई जा रही हैं, जबकि परिवहन विभाग की ओर से रेलवे स्टेशन से गणेश धाम तक रियायती दरों पर बसें चलाई जा रही है। धर्मार्थ संगठनों की ओर से भी अनेक भंडारे लगाए गए हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
1: भादवारी दूज माथे आज लोक देवता बाबा रामदेव री जयंती प्रदेश भर माए धार्मिक उमाव रे साथे मनाई जावे। जैसलमेर रा रामदेव रा माए सालाना मेलो पूरा परवान माथे है। सवारा पंचामृत अभिषेक और शिखर माथे झंडारोहण रे साथे मेला विधिपूर्ण शुरुआत भी। दशमीताएं चालन वाला ई मेला माए प्रदेश रे अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश समेत दूजा राज्यों की घनी तादाद माए श्रद्धालु बाबा रामसा पीर रा जयकारा रे साथ पूग रिया है। बाबा रामदेव रा प्राकट्य दिवस माथे जोधपुर रा मसूरिया रा बाबा बालीनाजी री समाधि माथे आज मेलो भरी जाए। महाराज जोधपुर खबर नवीस बतायो के रामदेव रा जावणो पहला श्रद्धालु अठे माथो टेक ने आगे बधे है।
3: बाबा रामदेव जी का मेला उनके गुरु बालीनाथ जी के समाधि स्थल जोधपुर के मसूरिया मंदिर से शुरू हुआ। सुबह 4 बजे मंगला आरती के साथ मेले का औपचारिक आगाज हुआ। 108 दीपों से महाआरती की गई और 108 किलो पंचमेवे के लड्डुओं का भोग लगाया गया। समाधि स्थल पर बाबा रामदेव जी अपने गुरु बालीनाथ जी से भेंट करते हुए तस्वीर उकेरी गई, जिस पर सोने चांदी का वर्क कर पूजन किया गया। बाबा के दर्शनों के लिए हजारों श्रद्धालु दिन भर से मंदिर पहुंच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। मान्यता है कि बाबा रामदेव जी के रूणीचा धाम जाने से पहले जोधपुर स्थित गुरु बालीनाथ जी की समाधि के दर्शन करने से यात्रा सफल होती है। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: सितंबर मिनारा पहला पखवाड़ा रे बीतता प्रदेश माए मानसून री गतिविधियां अज बण्योड़ी है। मौसम महकमा कानियों आवता दिना बिरखा रा दौर रे चालन री आस जताई जी है। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो के बंगाल री खाड़ी माए बण्या कम दबाव रा तंत्रू राज्य माए बिरखा रो नुओ दौर शुरू वियो है, जिन रो असर 16 सितंबर ताई बण्या रहण री आस है। तंत्र रा असरों अगुणी और दिखनाद हल्का माए बिरखा रा आसार है। ई दौरान उदयपुर संभाग रा जिला माए कठे कठे भारी बिरखा री आस है। ई बीचे आज जयपुर समेत अगुणी जिला माए कठे कठे छांटा छिड़को और हल्की बिरखाओं मौसम खुशनुमा बण्योड़ो है। बांसवाड़ा माए आज दूजे दिन ही आधा घंटा तेज बिरखा भी। एशिया कप क्रिकेट रा महिला T20 फाइनल माए आज भारत रो मुकाबलो मौजूदा चैंपियन श्रीलंका रे साथ है वेला। दुबई माए रात 8 बजे खेलिया जाण वाला मैच माए भारत ग्रुप ए माए आपरा सगला मैच जीतने चोटी माथे रियो। भारत सेमीफाइनल माए बांग्लादेश ने हराया, जद के श्रीलंका री टीम पाकिस्तान ने हरार फाइनल माए ठोड़ बनाई है। जैसलमेर रा पोखरण रेंज माए भारतीय वायुसेना कालेऊं ड्रोनाथोन 2026 वेला। 3 दिन रा ई ड्रोनाथोन माए भारतीय उद्योग जगत री कंपनियां स्वदेशी ड्रोन और ड्रोन रोधी तकनीका रो विकास परीक्षण और नुमाइश करेला। ने अबे आखिर माए खास समाचार आप एक कर फिर सुन ले रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कयो ब्रिक्स फगत देशां

0: समूह नहीं बल्कि समाधान रो इकोसिस्टम है। नुमे दिल्ली में वृक्ष सम्मेलन पूर्ण। प्रदेश रा 309 नगर निकाय रा चुनाव रे तहत काले होण वाला वोटां री गिनती री सगली तैयारियां पूरी। रैली अरजीत रा जुलूस माथे रोक रेवेला। रामदेव जयंती माथे आज प्रदेश भर में धार्मिक उमाव। गणेश चतुर्थी रो तिवार काले। पहला आराध्य री आराधना ने लेर तैयारियां जोरा माथे। एर महिला कप T20 क्रिकेट रो फाइनल आज भारत श्रीलंका रे बीच दुबई में खेलो जाएला। इंडर साथे प्रादेशिक समाचार रो बुलेटिन अटे पूरो। मारो आगलो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजे हिंदी में प्रसारित करियो जाएला। नमस्कार।
1: FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमिचल से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं। आज सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम ग्राम भारती। प्रायोजक है सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर, जिसे हम आकाशवाणी जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।
2: अनजान लिंक खोलना मतलब अनजान लोगों के लिए अपने अकाउंट का दरवाजा खोलना। झूठी जल्दबाजी में ना फंसिए और फर्जी KYC अपडेट लिंक से बचिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: ग्राम भारती कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर। सुने सुनाए,
1: पीत कांति लाए,
0: उन्नत तकनीकें अपनाए,
1: सरसों का उत्पादन बढ़ाएं।
0: सुनो किसानों, चाहे खेत हो बेकार,
1: सरसों उपजे शानदार,
0: सरसों खेती का उपचार
1: बढ़ाने, सरसों की पैदावार,
0: खेत पौधे और बीजोपचार।
1: सुनते रहो ये कार्यक्रम,
0: अपना कर उन्नत तकनीकें, बढ़ाओ सरसों का व्यापार,
1: तब जो आए पीत कांति होगा हम सबका उद्धार,
0: और प्रदेश की खुशहाली का
1: तब होगा सपना साकार।
2: ग्राम भारती कार्यक्रम सुनवा वाला सगला हेतालवा ने जखा दूरदराज गांव ढणी दे माई ने बैठे हुआ तित बंदिया वो कार्यक्रम सुने है। आप सगला हेतालवा ने गणे मान सुपर बुद्धियाल वरमारो राम राम और निवण प्रणाम सा। भाई लोगों क्यों जावे के तनसू सेवा करे और मुखसू बोले सांच, सात दीप और नौ खंड में कदे ने आवे आँच, कदे ने आवे आँच सांच की शोभा फैले और सुने संतां की सीख, पाप तज निर्भय खेले, दुख छुटे सब सुख मिले और लगे ज्ञान बीच मन, राम बक्स कवि कहत है होत पवित्र तन। बिल्कुल भाई लोगा, जखा प्रकृति री सेवा के मायने लागेड़ा है या तीव काल के मायने जखा मानव मात्र के प्रति दया भाव रखियो, सेवा को भाव रखियो और प्रकृति री जकी धारा वे भी धारा रे मायने बेर मान के री सेवा करी, जिया जुण री सेवा करी, मारो नाम तीव काल रे मायने जिंदा रेवे। और राजस्थान री आपने भूमि री आप अगर बात करा तो आ धरा तो अस्सी दरी धरा है कि अठे अनेक महापुरुष पैदा होया जखा टेम टेम रे ऊपर ई जिया जून मान खेरी सेवा के मायना आपरो पूरो जो जिंदगानी है बिना लगा दी। और बसाई महापुरुष क्यों भी जावे का अपने राजस्थान री भूमि तो पांच पीरा री भूमि रे नाम सु जानी जावे, तो पांच पीरा रे मायना अपना पश्चिमी राजस्थान का जन जन का आराध्य लोक देवता बाबा राम साहब पीर महाराज के नाम से जाने जावे जखा बाबा रामदेव जी आज जयंती आखी देश रे मायने मनाई जावे है। विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान भी कैसा कैसा के पंजाब हरियाणा और भी जगह जगह राज्य है बासू लगभग देश सू हर दूजा राज्य सू भी जगह बाबा का भक्त है। बे नाचता गाजता गाता और हाथा रे मायने बाबा री जगी ध्वजा है बेलियां बाबा रा जयकारा के सागे पूरो राजस्थान बाबा का जयकारा सु टाइम रे मायने गूंज रहे है। आज बाबा री बीज

0: और बाबा री बीजरी पूरे आकाशवाणी परिवार की तरफ सो जगह भाई लोग सुन रहे हैं सगला ने बाबा की बीज की मंगल कामनावां और बधाई। ओ बाबा री बीज और जन्म दिवस सगला के जीवन का मायने हरक और उमाव ले रहे आप जगह भी आपरा सपना है बाबो सांके जीवन रे मायने उजास बनायो रखे और हमेशा सदबुद्धि मिले अपन बांगा जीवन सो आप सीख सका के भी हमेशा जिया जून दीन दुखिया रे वास्ते संघर्ष करियो और जिंदगानी रमाई ने अपन आगे बढ़न रो अपन एक मार्ग दिखायो ई वास्ते मारे पद चिन्ह री अपन पूजा करा तो बाबू सब सबरी भली करे ई आशा और उम्मीद आप ई प्रकार सो आप रखा और जिंदगानी रमाई ने हमेशा आप आगे बढ़ता रहे।
1: सुने सुनाए,
2: पीत कांति लाएं,
1: उन्नत तकनीकें अपनाएं,
2: सरसों का उत्पादन बढ़ाएं।
1: सुनो किसानों, चाहे खेत हो बेकार,
2: सरसों उपजे शानदार,
1: सरसों खेती का उपचार
2: बढ़ाने, सरसों की पैदावार,
1: खेत पौधे और बीजोपचार।
2: सुनते रहो ये कार्यक्रम,
1: अपना कर उन्नत तकनीकें, बढ़ाओ सरसों का व्यापार,
2: तब जो आए पीत कांति होगा हम सबका उद्धार,
1: और प्रदेश की खुशहाली का
2: तब होगा सपना साकार।
0: और भाई लोगों अब कार्यक्रम ने जानकारी की तरफ लेट चला और सरसों की उपयुक्त किस्म और खेत की तैयारी ई विषय पर जानकारी अपन डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा जी दे रहे हैं। आप प्रधान वैज्ञानिक है कृषि प्रसार शिक्षा सरसों अनुसंधान संस्थान भरतपुर से अपन जानकारी देवे तो सुना जानकारी।
3: श्रोताओं आज हमारे साथ है डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा, आप प्रधान वैज्ञानिक कृषि प्रसार भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान भरतपुर से आप पधार्या और आज आप जानकारी ले वाला सरसों की उपयुक्त किस्म और खेत की तैयारी आप किण भांति करा। तो सबसे पहले करा पावणा रो स्वागत, राम राम सा।
4: राम राम किसान भाइयों।
3: डॉक्टर साहब प्रश्न मारो जो छे और शायद करसा बाहर बैठा को भी होवे लो कि सरसों की बत्ती पैदावार अगर आप न चाहे जे करसा बाहर बैठाना चाहे जे चोखी जो किस्म छे वह बताओ, माको नाम बताओ सर।
4: हाँ देखिए किसान भाइयों, ये बिल्कुल बात सही है कि किसी भी फसल से अधिकतम उत्पादन लेने के लिए जरूरी है कि जो अन्य कृषि क्रियाओं के साथ साथ आप एक अच्छे बीज की और अच्छी किस्म का चयन करें
3: जी।
4: क्योंकि किस्म की जो उत्पादन क्षमता होती है वो अलग अलग कारकों के ऊपर निर्भर करती है और भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान द्वारा अभी तक विभिन्न परिस्थिति हेतु कई किस्मों का विकसित किया गया है
3: जी।
4: जैसे कि अगर आप देखें कि कुछ हमारे देश में ऐसे इलाके हैं जहां पर सरसों की बुआई पहले हो जाती है, कुछ ऐसे हैं जहां पर खरीफ की फसल की कटाई करने के बाद में सरसों की खेती की जाती है, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी की सुविधा नहीं है तो वहां पे असिंचित अवस्था में खेती की जाती है, कुछ हमारे देश के अंदर ऐसे भी इलाके हैं जहां पर सरसों की खेती थोड़ा सा देरी से होती है यानी कि नवंबर तक भी चली जाती है
3: जी।
4: तो ये जो विभिन्न परिस्थितियां, इन परिस्थितियों के लिए जो भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान है उसके अंतर्गत अखिल भारतीय राई सरसों समन्वित अनुसंधान परियोजना चल रही है जहां पर विभिन्न अनुसंधान केंद्रों द्वारा जो हमारे देश भर में है और वहां पे इन किस्मों का विकास किया जाता है और उन्हें अलग अलग परिस्थितियों के लिए चिन्हित किया जाता है। जहां तक सरसों की सबसे अच्छी किस्म का सवाल है तो किसान भाइयों ये ध्यान रखो कि कोई भी एक किस्म सभी परिस्थितियों में एक जैसा उत्पादन नहीं देती है
3: जी।
4: और किस्मों की जो उत्पादन क्षमता है वो जलवायु पे, भूमि पे और आप कौन कौन सी तकनीकें अपना रहे हैं वैसे कई कारकों पे ऊपर निर्भर करती है। हालांकि जो कुछ किस्में ऐसी है जिन्हें हमें भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान द्वारा किसानों के लिए अनुशंसित की गई है, मैं आप किसान भाइयों को ही सलाह देना चाहूंगा कि जब भी आप किस्म का चयन करें तो आप ये देखें कि आपके क्षेत्र की जलवायु कैसी है, वहाँ कितने गर्म रहता है या ठंडा रहता है, साथ के साथ फसल पद्धति क्या है यानी कि आप खरीफ में खेत खाली रख के सरसों खेती कर रहे हैं या खरीफ में किसी फसल की बुआई करके उसकी कटाई के बाद खेती कर रहे हैं, तो इन सब चीजों को देखना पड़ेगा। भूमि का प्रकार कैसा है, आपके पास सिंचाई की उपलब्धता है या नहीं है और मिट्टी के आधार पर ही उचित किस्म का चयन करें ताकि आप सरसों के उत्पादन में वृद्धि करके लाभ कमा सकते हैं। अब आप देखें किसान भाई, तो सरसों अपने रबी की प्रमुख तिलहनी फसल है और ये भारतीय अर्थव्यवस्था में किसका विशेष स्थान है
3: जी।
4: और इसकी एक विशेषता ये भी है कि ये कम सिंचाई और कम लागत में दूसरी फसलों की अपेक्षा अधिक लाभ देती है और अभी हमारे

0: कई श्रेणी में बांटा है। जैसे कि एक अवस्था होती है सिंचित और समय पे बुआई के लिए है। तो सिंचित और समय से बुआई का मतलब ये होता है कि जैसे आपका 20 अक्टूबर तक और अधिकतम 25 अक्टूबर तक जिन क्षेत्रों में बुआई हो जाए और आपके पास एक सिंचाई की सुविधा है, तो उन क्षेत्रों के लिए हमारे यहाँ से जो अनुशंसित की गई है उसमें से मुख्य किस्में गिरिराज है, फिर बीपीएम 1825 है, आरएच 1975 है, आरएच 749 है, पीएम 37 है, तथा कुछ संकर किस्में भी है जिनमें से मुख्य एनआरसी एचबी 506 है, आरएचएच एक उपयुक्त किस्म है। तो किसान भाइयों, ये वो किस्में हैं जो नवीनतम है।
1: जी
0: वैसे तो बहुत सारी किस्में हैं, पुरानी भी है, लेकिन मैं आपको नवीनतम किस्मों की जानकारी दे रहा हूं। तो ये तो हो गया सिंचित और समय से बुआई के लिए। अगर आपका असिंचित क्षेत्र यानी कि आपके पास सिंचाई के कोई साधन नहीं है और जो वर्षा ऋतु का जो पानी है उसी को आपने संरक्षण करके अगर सरसों खेती करना चाहते हैं, तो ऐसी अवस्था के लिए हमारे पास में DRMR 1165-40 है, RH 1424 है, RS 725 है, RS 761 है, RS 406 है, और एक हमारे गंगानगर के केंद्र है राजस्थान के अंदर ही RGN 298 ये उपयुक्त किस्म है असिंचित क्षेत्र के लिए। इसके अलावा किसान भाइयों, कई क्षेत्र ऐसे भी आते हैं जहां पर किसानों के लवणीय और क्षारीय भूमि है या लवणीय क्षारीय पानी है। तो अगर ऐसी आपके यहाँ परिस्थिति है तो इन किस्मों की बजाय आप CS 58 और CS 60 किस्म का चयन करें। और ये हमारा करनाल में एक संस्थान है, भारतीय केंद्रीय लवणता अनुसंधान संस्थान है, तो वहां से इन किस्मों को आप प्राप्त कर सकते हैं। वैसे अब आप बात करें कुछ ऐसा भी क्षेत्र जो अगेती बुआई करना किसान चाहते हैं, लेकिन हालांकि राजस्थान में ऐसा क्षेत्र नहीं है, फिर भी अगर कोई किसान भाई सितंबर के अंदर ही कोई परिस्थिति ऐसी बनती है किसी जिले के अंदर है, तो वहां पर आप PM 27, PM 28 और इस तरह की किस्मों की बुआई कर सकते हैं। एक किस की परिस्थिति ये भी आती है कि किसान भाइयों, आपने देखा होगा कई बार खरीफ की फसलों की कटाई बहुत देर से होती है,
1: जी
0: जैसे अक्टूबर तक कटाई हो रही है, तो अक्टूबर के लास्ट तक या 10-15 नवंबर तक अगर आपको बुआई करनी है तो वहां पर आप देरी से बुआई के लिए जो उपयुक्त किस्म उनका चयन करें। और उसके लिए हमारे संस्थान द्वारा ब्रजराज है, राधिका है, BPM 11 है, NRC HB 101 है, RGN 236 है, ये एक उपयुक्त किस्म है देरी से बुआई के लिए। और इनके साथ साथ किसान भाइयों, हमने कुछ गुणवत्ता वाली सरसों की किस्मों का भी विकास किया है। क्वालिटी की किस्में बोलते हैं जिसमें कि यूरिक एसिड कम होता है और खली में ग्लूकोसिनोलेट की मात्रा कम होती है। अगर आप उन क्वालिटी वाली किस्मों को करना चाहते हैं तो उसके लिए PM 32 है, PM 34 है, RS 1706 है, ये जीरो क्वालिटी की यानी कि इनमें यूरिक एसिड कम होता है, 2% से कम है। और इसके अलावा 00 क्वालिटी की यानी कि जिसमें यूरिक एसिड भी कम है और ग्लूकोसिनोलेट की मात्रा भी कम है, वो PM 31, PM 33 है, PDZ M 35 है, PDZ M 36 है। तो ये किस्में हैं जो गुणवत्ता वाली है। तो अब आप देख सकते हैं किसान भाइयों, यह समझने की बात यह है कि हर परिस्थिति के लिए अलग किस्म है, एक ही परिस्थिति के लिए कोई ऐसी किस्म नहीं है जो हर परिस्थिति उपयुक्त हो। तो आप अपनी परिस्थिति, सिंचाई के साधन, मिट्टी, जलवायु के आधार पर इन्हीं में से आप किस्मों का चयन करें तो आपके उत्पादन में बढ़ोतरी होगी।
1: जी डॉक्टर साहब, आप बहुत ही सरल शब्दा का मायना है, सरसों की चोखी किस्म कौन सी आपने लिए, अपना क्षेत्र के लिए, अपना करसा बाहर बहना के लिए रहवेली समझाया। सागे ही आपसे ये भी जानबो चाहवाला कि अपना जो करसा बाहर बहना चाहिए अगर किस्म को चयन करे तो किन बात की बाता को ध्यान रखे जिससे कि वाने हानि नहीं बल्कि लाभ उठावे।
0: देखो किसान भाइयों, एक तो ये याद रखें जैसा कि हमने पहले कहा आपको कि भाई आपकी जो परिस्थिति का आकलन कर ले कि आप कब बुआई करना चाह रहे हैं, सिंचाई के साधन कैसे हैं, मिट्टी का प्रकार कैसा है, आपका फसल पद्धति कैसी है, उसके हिसाब से किस्म का चयन करें जो मैंने बताया है कि अभी आपको किस्मों का उनमें से चयन करना चाहिए। अब जहां तक बात है तो एक तो ये ध्यान रखें किसान भाइयों कि हमेशा एक अच्छे संस्थान से बीज का क्रय करें। कई बार क्या होता है, बाजार में आप जाएंगे और उसका बीज वो आपको किस्म कोई बोलेगा, दे कुछ और देगा, तो एक तो किसी भी दुकान वाले से पक्का बीज ले जिसके ऊपर आप विश्वास करते हैं, चाहे वो दुकान वाला हो, चाहे कोई सरकारी संस्थान हो, कोई कृषि विज्ञान केंद्र हो या कृषि विभाग राजस्थान राज्य बीज निगम हो यहाँ से आप इन किस्मों को अगर लेते हैं तो उससे एक शुद्धता की एक विश्वास रहता है। दूसरा, हमेशा आप प्रमाणित बीज

0: का ही उपयोग करें कि जब भी आप देखें कि वो प्रमाणित बीज होना चाहिए। तीसरा, जब भी आप बीज का चयन करें, किस्म का चयन करें, तो ये याद रखें कि आपका जो बीज है, बुआई से पहले उस बीज को आप उपचारित जरूर करें। हालांकि आजकल कुछ संस्थानों द्वारा बीज को उपचार करके भी दिया जा रहा है, तो ये भी आप जब बीज को खरीदारी करते हैं तो आप पता कर लें। तो इस तरीके से इन बातों का ध्यान रखने, अपनी परिस्थिति के अनुरूप और अपना जो ये किस्मों का चयन करने के बाद में बुआई के समय के हिसाब से उसमें बुआई करें, तो इन बातों का आप ध्यान रखें।
1: जी डॉक्टर साहब, अगर भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान सु अगर आपने चोखो बीज चाहिए और उचित मात्रा में चाहिए, तो किन भांति आपने प्राप्त हो सके, कर्जा बाहर बढ़ाने व ले सके, वह बताओ सा।
0: हाँ देखिए किसान भाइयों, हमारे संस्थान द्वारा, हमारा संस्थान भरतपुर में सेवर के अंदर स्थित है, और हम प्रतिवर्ष किसानों को जो भी प्रचलित उन्नत किस्में होती है उसका बीज उपलब्ध करवाने का प्रयास करते हैं। और इस साल भी 15 सितंबर से हमारे यहाँ बीज पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है, और वर्तमान में संस्थान पर ये जो गिरराज किस्म है वो उपलब्ध है, DRMR 1165-40 उपलब्ध है, BPM 11 हमारे पास में उपलब्ध है, BPM 1825 हमारे पास में उपलब्ध है, और इसके अलावा DRMR 150-35 भी उपलब्ध है, जो देरी से बुआई के लिए कुछ क्षेत्रों के लिए अनुशंसित की गई है। फिर राधिका हमारे पास में उपलब्ध है, NRCHP 101 उपलब्ध है, ये बीज हमारे पास में उपलब्ध है। 15 सितंबर से हम बीज पखवाड़े के दौरान, जब तक हमारे पास में बीज रहेगा, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर हम देंगे। और इसमें ये ध्यान रखें किसान भाइयों कि अभी फिलहाल जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर ही आपको ये बीज लेना पड़ेगा। हाँ, इतना कर सकते हैं कि जैसे एक किसान भाई अपना एक समूह, मान लीजिए आपका कोई FPO है या कोई आपका 8-10 किसान एक साथ लेना चाहते हैं, तो वो एक या दो किसान आके ही उनका बीज भी हम ले सकते हैं, हम उनको उपलब्ध करवा देंगे। तो यही तरीका है कि जो आप 15 सितंबर के बाद से कभी भी हमारे संस्थान में आके 10 से 5, और वो बीज ही आप प्राप्त कर सकते हैं इन किस्मों का।
1: जी डॉक्टर साहब, आप बीज की किस्म बताई, किन बात को आपने ध्यान रखना है ये चीज अभी आप बताई, और कठेसु आप बीज जो छह प्राप्त कर सका ये भी आप बताई। सागे ही आपसे जानबो चावला कि अगर माटी की बात करा तो सरसों का खेती कताई किन भात की माटी उपयुक्त मानी गई छे, और खेत की तैयारी किन भांति करा वह बताओ सा।
0: देखिए किसान भाइयों, ये बिल्कुल सही है कि हम मिट्टी को माँ कहते हैं, और जैसे कि हमने कहा कि अच्छे किस्म का चयन कर लिया, फिर अच्छे प्रमाणित बीज का चयन कर लिया, बीज को आपने उपचारित भी कर लिया और समय पे बुआई भी कर ली, उसके बाद जो 4 महीने तक फसल रहेगी वो आपकी उसी मिट्टी में रहेगी। तो इसलिए ये जरूरी है कि हर फसल के लिए प्रकृति ने कुछ मिट्टी के प्रकार बनाए हैं कि कोई फसल किसी तरह की मिट्टी में ज्यादा उत्पादन देती है, कोई दूसरी फसल किसी दूसरी मिट्टी में अच्छा उत्पादन देती है। लेकिन सरसों की एक विशेषता यह है कि ये विभिन्न प्रकार की मिट्टी या भूमि में भी इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। अगर मैं सबसे अच्छी मिट्टी की बात करूं तो किसान भाइयों, जहां पर भूमि दोमट है वहां पर ये सबसे अच्छी किस्म होती है, जिनका pH मान भी करीब 7 हो, यानी कि एक तरह से न्यूट्रल होगी, तो वहां पर इसकी खेती अच्छी तरह से कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि अगर इसकी उपज आप चाहें तो हल्की दोमट से चिकनी दोमट मिट्टियों तक में भी इसकी खेती की जा सकती है। वैसे तो हर तरह की मिट्टी में इसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन अगर ये मिट्टी है तो बहुत ही अच्छी है, और दूसरी मिट्टी में होगा तो कुछ मिट्टी का प्रबंधन करके उसको अच्छी तरह से मैनेज करके भी आप कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, pH मान 7 होना चाहिए। अगर आपकी सारी भूमि है लवणीय भूमि है तो उनका आप प्रबंधन करें कि किस तरीके से pH मान को न्यूट्रल करने की कोशिश करें। अगर राजस्थान में हालांकि ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन भारत में कई जगह ऐसी स्थिति है कि अम्लीय भूमि भी हो सकती है, तो वहां पे लाइम का प्रयोग करके भी उसको pH मान को थोड़ा बढ़ाएं। बहुत ज्यादा अगर अम्लीय भूमि होगी, क्षारीय भूमि होगी, तो ये एक तरह से मिट्टी उपयुक्त नहीं है और इस पे उत्पादन पे विपरीत प्रभाव पड़ेगा। हालांकि दूसरी फसलों के मुकाबले लवणीय भूमि क्षारीय भूमि में भी अच्छी पैदावार देती है, और जैसा कि अभी मैंने पूर्व में भी कहा था कि अगर ऐसी जगह है तो आपको किस्म का जो चयन है वो हमारे लवणीय और क्षारीय भूमि के लिए भी, जैसे CS 58 है, CS 60 है, इन किस्मों का आप चयन कर सकते हैं। साथ के साथ ये भी ध्यान रखें कि इसको कम पानी की आवश्यकता होती है
1: जी।
0: तो खेत में पानी नहीं भरा रहना चाहिए, और अगर लवणीय है तो आपके खेत में कुछ समय तक पानी भरें जिससे लवण पानी के साथ घुलकर मिट्टी के नीचे चले जाए, और जहाँ की जमीन क्षारीय है वहाँ प्रति तीसरे वर्ष आप जिप्सम

0: जिप्सम 5 टन प्रति हेक्टर की दर से प्रयोग करना चाहिए, और जिप्सम की आवश्यकता आपका पीएच मान कितना उस हिसाब से अलग अलग हो सकती है। लेकिन ये ध्यान रखें किसान भाइयों कि जिप्सम का प्रयोग अगर आप क्षारीय भूमि को थोड़ा न्यूट्रल करने के लिए कर रहे हैं तो उसको मई जून में जमीन में मिला देना चाहिए, ताकि फिर जो बारिश होती है और उसके बाद में उसमें क्रियाएं होकर आपके क्षारीय भूमि का एक अच्छा मैनेजमेंट हो जाता है। दूसरा आपने पूछा सवाल कि खेत की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, तो देखो किसान भाइयों जैसे मैंने पूर्व में भी कहा है कि इसकी खेती दो तरीके से की जाती है राजस्थान में। एक तो किसान भाई ऐसे होते हैं, कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे खरीफ में कोई फसल नहीं लेते हैं और समय पे यानी कि सितंबर लास्ट से लेके अक्टूबर प्रथम सप्ताह से बुआई शुरू कर देते हैं
1: जी।
0: तो अगर आप इस तरीके की खेती कर रहे हैं तो आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा खेत की तैयारी के लिए कि जब भी हमारे खेत में बारिश होती है, अच्छी बारिश हो, तो अच्छी बारिश के बाद में आपको क्या करना है कि नमी के संरक्षण पर विशेष ध्यान देना है। तो अच्छी बारिश के बाद में जब भी खेत जुताई लायक हो जाए तो जुताई लगाएं और पाटा लगाएं, तो नमी संरक्षण बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो संरक्षित नमी है उसी में हमको बुआई करनी है और उसी के अंदर आपको इसमें अंकुरण होना चाहिए। अच्छा, अगर संभव हो तो खेत की जुताई शाम के समय करके खुला छोड़ दें, ताकि रात्रि में अगर ओस वगैरह आए तो उससे भी कुछ नमी मिल जाती है, और प्रातः धूप तेज होने से पहले ही पाटा जला दें। और जब अंतिम बारिश हो जाए, जब आपको लगे, हालांकि हमारे को प्रिडक्शंस भी आजकल हमने देखा है कि मौसम विज्ञान विभाग काफी हद तक सही करता है, लेकिन आप ये देखें कि अगर 15 सितंबर के बाद में कोई अगर प्रभावी बारिश हो रही है तो उसके बाद में आप गहरी जुताई करके पाटा लगाकर नमी का संरक्षण कर दें, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक बुआई कर दें। हालांकि ये ध्यान रखें कि उस समय तापमान भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप 15-20 अक्टूबर तक बुआई कर सकते हैं, लेकिन ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके खेत में कितनी नमी है, क्योंकि आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा नमी और तापमान का। क्योंकि मान लीजिए आपके नमी बिल्कुल सूखती जा रही है तो आपको थोड़ा सा बीज की मात्रा ज्यादा रख के भी आप बुआई कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या होता है कि एक स्थिति ये होती है कि जब आपने कोई खरीफ में बाजरा कर रखा है, ज्वार कर रखा है, ग्वार की फसल कर रखी है, तो अगर आप ये फसलें करते हैं तो इन फसलों की कटाई के तुरंत बाद दो बार आप करीब कल्टीवेटर से आड़ी जुताई करें, मिट्टी को भुरभुरा बना लें, और आजकल तो रोटावेटर भी चलता है, एक बार आप रोटावेटर चला दें तो उससे क्या है कि जो इनके जड़ों के इनके वो होंगे और ढेले वगैरह होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे, मिट्टी भुरभुरा बन जाएगी, जो सरसों के लिए बहुत उपयुक्त होती है। तो ये दोनों परिस्थिति के लिए अगर आप खेत खाली रख के कर रहे हैं तो आपको हर प्रभावी बारिश के बाद नमी का संरक्षण करना चाहिए, और जब आप खरीफ में कोई फसल ले रहे हैं तो कटाई करने के बाद में तुरंत अगर नमी कम है तो फिर आपको एक सिंचाई करनी पड़ेगी बुआई से पहले भी, क्योंकि एक मिनिमम सिंचाई होनी चाहिए, तब जाके आप उसके बुआई कर सकते हैं। तो दोनों परिस्थिति में इस तरीके से कर सकते हैं। और सिंचित अवस्था के अंदर जैसा कि बताया ही है कि किसान भाइयों पर पानी की सुविधा होती है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखें किसान भाइयों अगर आपके पास खारा पानी है तो बुआई से पूर्व सिंचाई ना करें।
1: जी डॉक्टर साहब, सिंचित क्षेत्र का मायना द्विफसलीय पद्धति के अंतर्गत राई सरसों का खेत की जो तैयारी छे वह करसा भाईर बहन कहीं करे वह भी बताओ सर।
0: हाँ देखिए, अभी मैंने बताया द्विफसली पद्धति के अंदर, जैसे कहा कि भाई द्विफसली पद्धति का मतलब ये है कि खरीफ में कोई फसल हो तो उसकी तैयारी के लिए कि खरीफ फसलों की कटाई के बाद में पलेवा देकर प्रारंभ करें। पलेवा के बाद में जब भी आपका खेत जुताई लायक हो जाता है तो 2 या 3 बार जुताई करें और पाटा लगाएं, और ये ध्यान रखें कि हर दशा में खेत को मिट्टी को भुरभुरा और समतल बना लें, तो अगर वो बनाते हैं तो खेत अच्छी तरह तैयार हो जाएगा, जो सरसों की अधिक पैदावार उसकी जड़ें जमने के लिए बहुत जरूरी है।
1: जी श्रोताओं, अबार आपा जानकारी लिया सरसों की उपयुक्त किस्म और खेत की तैयारियां पा किण भाते करा, और जानकारी देबा खातिर आया डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा, प्रधान वैज्ञानिक कृषि प्रसार भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान भरतपुर सुआ पधार्या। डॉक्टर साहब, इतनी कीमती जानकारी देबा के लिए आपको घणो घणो धन्यवाद सा।
2: सुने सुनाए,
3: पीत कांति लाएं,
2: उन्नत तकनीकें अपनाएं,
3: सरसों का उत्पादन बढ़ाएं।
2: सुनो किसानों, चाहे खेत हो बेकार,
3: सरसों उपजे शानदार,
2: सरसों खेती का उपचार
3: बढ़ाने, सरसों की पैदावार,
2: खेत पौधे और बीजोपचार,
3: सुनते रहो ये कार्यक्रम,
2: अपना कर उन्नत तकनीकें, बढ़ाओ सरसों का व्यापार,
3: तब जो आए पीत कांति होगा हम सबका उद्धार,
2: और प्रदेश की खुशहाली का
3: तब होगा सपना साकार।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के हों

0: आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: कल सुबह 9:15 पर सुनिए कार्यक्रम फिट एंड फाइन। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर, टॉक रोड, टॉक फाटक, गांधीनगर, जयपुर।
3: भाई लोगों, थोड़ी देर पहले जानकारी सुनी सरसों की उपयुक्त किस्म और खेत की तैयारी विषय पर जानकारी बहुत ही बढ़िया तरीका से अशोक कुमार शर्मा जी अपन दे रहा है और असू बात अपने अदिति भट्ट है जी कर रही। तो दुनिया ने मोकड़ो मोकड़ो धन्यवाद स्वरूप अब एक बाबारी मिट्टी सी लोक रचना सुन लेवा।

0: ਪਾਬੂ ਹੜਬੂ ਰਾਮਦੇਵ ਮਾਂਗਲੀਆ ਮੇਹਾ ਪਾਬੂ ਹੜਬੂ ਰਾਮਦੇਵ ਮਾਂਗਲੀਆ ਮੇਹਾ ਪਾਂਚੂ ਪੀਰ ਪਧਾਰ ਜਿਓ ਗੋਗਾ ਜੀ ਜੇਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਧੁਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਦੀ ਲੋਕ ਰਚਨਾ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀ ਔਰ ਆਜ ਬਾਬਾ ਰੋ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਗੋ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ ਤੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਜਿਉਂ ਆਹੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਰੀ ਆਹ ਬੀਜ ਹੈ ਸਗਲਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਮਾਇਨਾ ਉਜਾਸ ਲੇ ਰਵੇ ਪਣ ਅਵਾਰ ਦੇਖੋ ਘੜੀ ਇਸਾਰੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਿਕਰਮ ਕੋ ਟੇਮ ਅਠੇ ਪੂਰੋ ਹੋਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ ਤੋ ਭਾਈ ਲੋਕਾਂ ਅੱਜ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਿਕਰਮ ਸੋ ਥੇ ਥਾਂਗਾ ਬਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ ਅਗਲਾ ਕਾਰਿਕਰਮ ਕਮਾਇਨ ਉਜੂ ਮਿਲਸਿਆਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਾ ਰਾਮ ਰਾਮ
1: ਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਿਕਰਮ ਕੇ ਪ੍ਰਾਯੋਜਕ ਥੇ ਸਰਸੋ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਨਿਦੇਸ਼ਾਲੇ ਸੇਵਰ ਭਰਤਪੁਰ सुने सुनाए
2: पीत कांति लाएं
1: उन्नत तकनीकें अपनाएं
2: सरसों का उत्पादन बढ़ाएं
1: सुनो किसानों चाहे खेत हो बेकार
2: सरसों उपजे शानदार
1: सरसों खेती का उपचार
2: बढ़ाने सरसों की पैदावार
1: खेत पौधे और बीजोपचार
2: सुनते रहो ये कार्यक्रम
1: अपना कर उन्नत तकनीकें बढ़ाओ सरसों का व्यापार
2: तब जो आए पीत कांति होगा हम सबका उद्धार
1: और प्रदेश की खुशहाली का
2: तब होगा सपना साकार
3: अभी आप आकाशवाणी जयपुर से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम ग्राम भारती सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमीत चैनल से बोल रहे हैं एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं शाम के 7:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं आईसीसी वुमेन्स T20 क्रिकेट एशिया कप 2026 के अंतर्गत दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम संयुक्त अरब अमीरात में भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली के अंदर से रिले कर रहे हैं।
4: ये
5: सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
6: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
7: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
8: फौजी साथियों अंतराल के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। फौजी साथियों आगे चलकर कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी ने खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने अपने मम्मी पापा की इच्छा के चलते सिख लाइट इन्फेंट्री को चुना था, लेकिन उस समय रिक्तियों की कमी के कारण उन्हें अपने पसंद की रेजिमेंट नहीं मिल सकी। सन 1997 को उन्हें आर्मी ऑर्डिनेंस कोर में कमीशन प्राप्त हुआ, यानी ज्वाइन करने का मौका मिल गया, जहां युद्ध और शांति के समय भारतीय सेना को सामग्री और रसद सहायता प्रदान करने का कार्य किया जाता था। अपनी मेहनत और लगन के बल पर उन्होंने जिम्मेदारियों को समझा, सीखा और पालन किया। फौजियों की एक हुंकार एक ललकार ही काफी है, गोलियां तो बाद में बरसती हैं दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए।

फौजी साथियों, वो पल वो मौका जब तक फौजियों के जीवन में ना आए तब तक उनके अंदर कुछ कर गुजरने की ख्वाहिशें हिलोरी लेती रहती हैं। कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी के जीवन में उस कहानी की शुरुआत हुई जब 1999 में वे 12 बिहार बटालियन में सेवारत थे और उनकी यूनिट जम्मू कश्मीर में तैनात थी, जहां उन्हें आतंकवादी विरोधी अभियानों का जिम्मा सौंपा गया था। कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी घातक टीम के प्लाटून कमांडर नियुक्त किए गए थे, जिस टीम को जम्मू कश्मीर के अग्रिम सुरक्षित क्षेत्र में स्थित फौलाद पोस्ट पर तैनात किया गया था। अचानक दुश्मन सैनिकों ने भारी तोपों से गोले बरसाने शुरू कर दिए थे और पोस्ट पर हमला बोल दिया। चारों तरफ भयंकर गोलों की गूंज फैल रही थी। इधर से भी जवाबी हमले किए जा रहे थे। देखते ही देखते भारतीय सेना के जवानों ने उनके हमले को विफल कर दिया और कैप्टन गुरजिंदर सिंह ने अपने जवानों को तैनात कर दिया था कि दुश्मन की हर एक चालों को नाकाम कर दिया जाएगा। वहीं दुश्मनों की लगातार कार्यवाही हो रही थी, वे अपनी दुष्टता से बाज नहीं आ रहे थे। इधर भारतीय सेना ने सुनियोजित अभियान शुरू कर दिया था कि वे दुश्मनों को करारा जवाब देकर ही रहेंगे। इस अभियान को ऑपरेशन बिरसा मुंडा नाम दिया गया। ये नाम भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और लोकनायक के नाम पर रखा गया था। फौजी साथियों, कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी ने अपने साथियों के साथ योजना बनाई और बंकरों को एक एक करके खाली कराने की मुहिम शुरू कर दी। इसके चलते एक सैनिक घायल हो गया था। दुश्मन वहां पर भी अपने हथियार से गोलियां बरसा रहे थे।

तभी कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी ने अपनी राइफल उठाकर दुश्मन के दो सैनिकों पर वार कर मार गिरा दिया। देखते ही देखते दुश्मनों की ओर से गनों में शांति छा गई, लेकिन इसी दौरान उनकी बाह में दुश्मन की गोली जा लगी। अपनी परवाह किए बगैर उन्होंने अपने साथियों का नेतृत्व जारी रखा और एक बंकर में हथगोले फेंक दिए। फिर वे भी उस बंकर में घुस गए और अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए दुश्मन सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। होनी यहाँ पर होकर रही, अचानक दुश्मनों ने ग्रेनेड चला दिया जो कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी के जा लगा। वे गंभीर रूप से घायल हो गए। अपनी चोट को अनदेखा कर वे मोर्चा संभाले हुए थे, उन्होंने अस्पताल जाने से मना कर दिया और अंतिम सांस तक अपने फौजी साथियों का हौसला बढ़ाते रहे। अंततः वे वीर गति को प्राप्त हो गए। 25 वर्ष की कम उम्र में उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया और शहीदों के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा गए। उनका राष्ट्र के प्रति समर्पण सेवा भाव हमेशा याद किया जाएगा।

फौजी साथियों, इस युद्ध में दुश्मन सैनिक भी मारे गए और उनके कई बंकरों को नष्ट कर दिया गया था। कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी को उनकी असाधारण वीरता जाबाजी के लिए भारत सरकार ने उन्हें साल 2000 में मरणोपरांत महावीर चक्र सम्मान से सम्मानित किया और इस तरह वे सेना आयुध कोर के पहले अधिकारी बने जिन्हें ये प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ।

रुकना नहीं, झुकना नहीं, ना ही टूटना है, हारना सीखा नहीं मेरे देश के जवानों ने, उन्होंने तो बस मौत को जीतना सीखा है। फौजी साथियों, ऐसे वीर अदम्य साहसी कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी को दिल से नमन प्रणाम करती हूँ।

विशेष जयमाला कार्यक्रम की कड़ी में आपने सुनी महावीर चक्र सम्मान से सम्मानित कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी की शौर्य गाथा। शोध आलेख और स्वर मंजरी वर्मा का और संपादन मनीषा सिंह का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आप तक पहुँचाया प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले ने। तो अब दीजिए इजाजत, जय हिंद।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर करे, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए आप सुनते हैं इंद्रधनुष में साज और आवाज। इसमें आज आप सुनेंगे मास्टर इब्राहिम अजमेरी का क्लैरिनेट। आज की फिल्में हैं गंगा जमुना और कन्हैया।

अभी आपने मुकेश की आवाज़ में सुना कन्हैया फिल्म का गाना, आज आपने मास्टर इब्राहिम अजमेरी का क्लैरिनेट सुना। अब आज का इंद्रधनुष के अंतर्गत साज और आवाज़ कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: आज के हवा महल में हम आपको सुना रहे हैं वीएम आनंद का लिखा प्रहसन राजेश और राकेश, निर्देशक हैं श्याम सुंदर प्रसाद।
1: डैडी डैडी,
2: ओहो, आज तो हमारी बेटी बहुत खुश नजर आ रही है। अरे भाई, आखिर बात क्या है?
1: डैडी, मैं आज आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ।
2: खुशखबरी? वाह वाह वाह, तो फिर सुनाओ भाई, क्या खुशखबरी है?
1: वो राजेश है ना।
2: राजेश? कौन राजेश?
1: वही राजेश जो हमारे घर आया करता है। उसने मेरे साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी है।
2: क्या? तो तुम्हारी शादी और उससे? ये कभी नहीं हो सकता।
1: क्यों नहीं हो सकता? हम एक दूसरे को चाहते हैं, प्यार करते हैं।
2: लेकिन मुझे वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है।
1: डैडी, आप राजेश को अच्छी तरह नहीं जानते। वो बहुत अच्छा लड़का है। आज मैंने उसे घर पर इनवाइट किया है।
2: अरे आने दो उस बदमाश को, मैं उसकी हड्डियां तोड़ के रख दूंगा।
1: अरे राजेश, आ गए तुम? अंदर आ जाओ। डैडी, ये है राजेश।
3: लेकिन मैं तो
2: बच्चू रोज छुप छुप कर मेरी बेटी से मिलते थे, आज मेरे जंगल में आ गए हो। अरे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कहाँ है मेरा हंटर?
1: डैडी डैडी, आप क्या कह रहे हैं?
3: सुनिए सर, सुनिए मेरी बात तो सुनिए।
2: अरे ये ऐसे नहीं मानेगा
3: सर। सर मेरी बात तो सुनिए।
1: डैडी रुक जाइए, डैडी रुक जाइए, मत मारिए मेरे राजेश को। इस हंटर से न मारो मेरे दीवाने को।
2: तो कैसी पिटाई लगाई?
3: मर गया। सर पिटाई तो आपने बहुत अच्छी की, लेकिन आप ये तो बता दीजिए कि मैं आपने इतनी तकलीफ क्यों उठाई?
2: उठाई? अबे तो तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा बेशरम, पहले तो तुम हाथ धोकर बेटी के पीछे पड़ गए और अब उससे शादी करना चाहते हो?
3: जी
2: खबरदार।
1: राजेश हिम्मत रखो, तुम शादी के लिए हाँ कर दो, मैं डैडी को मना लूंगी। हमने प्यार किया है, कोई जुर्म तो नहीं किया
3: है? अरे किस कमबख्त ने तुमसे प्यार किया है? मैं मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं तुमसे प्यार करूं?
2: देखा देखा बेटी, चार हंडर पड़े और प्यार प्यार सब भूल गया।
1: ये तुम क्या कह रहे हो राजेश?
3: अरे कौन राजेश? मैं राजेश नहीं हूँ, नहीं हूँ।
1: नहीं नहीं, ऐसा मत कहो राजेश, ऐसा मत कहो। प्यार करने वाले छोटे मोटे पिटाई की परवाह नहीं करते, वो तो हंसते हंसते जान दे देते हैं।
3: ओहो, मैं कहता हूँ मेरा हाथ छोड़ दो। मैंने कहा नहीं, मैं राजेश नहीं हूँ, मैं उसका पत्नी सिर्फ जुड़वा भाई राकेश हूँ।
1: क्या? जुड़वा भाई राकेश?
2: क्या कहा तुमने? राकेश?
1: लेकिन तुम तो बिल्कुल राजेश नजर आते हो।
3: हाय, यही तो रोना है। सिर्फ हमारी शक्लें ही नहीं बल्कि हम कपड़े भी एक ही तरह से पहनते हैं। हाय,
1: तो फिर कहाँ है तुम्हारा भाई राजेश?
3: हाय, राजेश ने मुझे बताया था कि वो इस वक्त यही होगा। मैं उसे एक जरूरी मैसेज देने आया था। हाय,
2: अरे बेटा, अरे मुझे तो पहले ही शक पड़ गया था कि तुम वो नहीं हो। अरे बेटा, तभी तो मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा।
3: जी
2: हाँ,
3: यानी कि आपने कुछ नहीं कहा?
2: नहीं।
3: बिल्कुल।

0: आपने तो कुछ कहा ही नहीं।
1: तो तुम्हारा क्या नाम है? राकेश। सुनो भाई, सुनो भाई, तुम जल्दी से घर जाओ और अपने जुड़वा भाई, क्या नाम है यार उसका, राजेश, उसको यहाँ भेज दो।
0: जी राजेश को यहाँ भेजू?
1: हाँ, हाँ, उसकी ये हिम्मत, ये मजाल कि मेरी बेटी से शादी करना चाहता है। अरे देखता हूँ कैसे करता है वो मेरी बेटी से शादी।
0: जी जी जी, मैं बिल्कुल समझ गया, मैं समझ गया, मैं उसे अभी जाकर भेजता हूँ।
2: टैडी, आपने उसके जुड़वा भाई की पिटाई कर दी, मैं बर्दाश्त कर गई। अब अगर आपने राजेश को कुछ कहा तो मैं कुछ खाकर मर जाऊंगी।
1: अरे बेटी, तुम तो हर वक्त कुछ ना कुछ खाती ही रहती हो, अब मरोगी तो कुछ खाकर ही मरोगी ना। जाओ जाओ अपने कमरे में जाओ।
2: राजेश, तुम आ गए, कहाँ थे तुम?
1: मैं ये हंटर लेकर कब से तुम्हारे इंतजार में हूँ। हंटर खाने के लिए तैयार हो जाओ।
2: नहीं नहीं, ये पहले रसगुल्ले खाएगा।
1: ये पहले हंटर खाएगा।
2: ये रसगुल्ले खाएगा।
1: ये पहले हंटर खाएगा।
2: रसगुल्ले खाएगा।
1: हंटर क्यों बे कभी दे है? अब कभी जाओगे मेरी बेटी से मिलने के लिए?
0: अब किसे मारे जा रहे हैं?
1: किसे मारा हूँ? किसे मार रहा हूँ? अरे अरे राजेश को मार रहा हूँ, और किसे मार रहा हूँ? अरे क्या बदतमीजी है, है? आज तुम मार खा के भी हंसे चले जा रहे हो यार, कमाल की चीज हो।
0: मैं तो आपकी नादानी और नासमझी पर फंस रहा हूँ।
1: मतलब?
0: मतलब कि आप जिसे मार रहे हैं वो राजेश है, पिट रहा है राकेश।
1: राकेश? अरे अरे राकेश तो पहले आया था भाई।
0: जी हुजूर, मैं वही राकेश हूँ जो पहले आया था और जिसे आपने पहले पीटा भी था।
1: और फिर दोबारा पिटने आ गए हो क्यों?
0: मैं तो आपको ये बताने आया था कि राजेश अभी घर पर नहीं है, वो शायद एक घंटे में आएगा।
1: ओपो, आई से गेट आउट फ्रॉम दिस प्लेस।
0: मैं जा रहा हूं।
1: ओ माय गॉड, आई एम फेड अप। राजेश, राकेश, राजेश, राकेश, राकेश, राजेश, राकेश, अब कौन है? जाकर देखो, जाकर देखो कौन है।
3: नमस्कार।
1: अबे अरे फिर आ गए तुम?
3: जी मैं तो
1: आज से यू गेट आउट। देखो मैंने तुम्हें अच्छी तरह से पहचान लिया है, तुम राकेश ही हो ना?
3: जी नहीं सर, आप फिर गलती कर रहे हैं।
1: मतलब?
3: मतलब ये कि मैं राकेश नहीं हूँ, मैं राजेश हूँ।
2: ओह राजेश, तुम कहाँ थे अब तक?
1: अरे अरे मैं तो पागल हो जाऊंगा इस राजेश और राकेश के चक्कर में। राजेश, राकेश,
3: मैं सर आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं राजेश हूँ, राजेश हूँ, वही बदनसीब राजेश जिसने आपकी बेटी से प्यार किया, जो आपकी बेटी से शादी करना चाहता है, वही बदनसीब राजेश जिसके भाई राकेश को आपने दो दो बार हंटर से पीटा। क्यों पीटा? क्योंकि उसका भाई राजेश आपकी लड़की से प्यार करता है। अगर अगर आपने पीटना ही है तो शौक से मुझे पीटिए, उठाइए अंतर। अब तो मैंने फैसला कर लिया है कि मैं किसी यतीम खाने में भर्ती हो जाऊंगा, या मेलिया एक्सप्रेस गाड़ी पर बिना टिकट के सवार होकर छलांग लगा दूंगा, या किसी नदी में कूद पड़ूंगा, या आपकी गाड़ी के नीचे आकर अपनी जान दे दूंगा, वही आपके खटारा गाड़ी के नीचे। लेकिन लेकिन आप, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, आप जैसे जल्लाद बाप की बेटी से मैं शादी घर के नहीं करूंगा, नहीं करूंगा।
2: नहीं ऐसा ना कहो राजेश, ऐसा ना कहो।
1: हाँ, और मैंने भी ये फैसला कर लिया है कि तुम जैसे बदतमीज लफंगे से शादी करने की बजाय मैं अपनी बेटी को किसी स्विमिंग पूल में धकेल दूंगा।
2: मुझे स्विमिंग आती है डैडी।
1: और यू शट अप। मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे भाई राकेश से कर
3: दूंगा। राकेश से?
1: हाँ।
3: अरे वही डरपोक राकेश जो दो दो बार आपसे हंटर खाकर और उसने ऊंट तक नहीं की।
1: हाँ, इसीलिए मैंने ये फैसला किया है।

0: जी।
1: और राकेश को यहाँ भेज दो, उससे कहना पूरे 5 बजे वो यहाँ पहुंच जाए, नहीं तो
0: जी जी, जी पर...
1: नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
0: पूरे 5 बजे क्यों?
1: मैंने फैसला कर लिया है कि राकेश और मेरी बेटी की रिंग सेरेमनी आज ही 5 बजे हो जाएगी।
0: जी रिंग सेरेमनी?
1: और हाँ कहना, दोनों अंगूठियां मैं ही बाजार से लाऊंगा, बस वो सिर्फ 5 बजे यहां पहुंच जाए।
0: अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो मैं अब यहां रुककर क्या करूंगा? अलविदा, मैं जा रहा हूं अमेरिका के लिए।
2: नहीं नहीं, मत जाओ राजेश, मत जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। हम तुमसे जुदा होके

0: Bart, Bart, Bart, Bart, पांच बज गए और ये राकेश का बच्चा अभी तक नहीं आया, क्यों नहीं आया?
1: मुझे क्या पता, अगर आप मेरी शादी राजेश से करते तो देखते कि वो कितना पंक्चुअल है।
0: आओ आओ बेटा राकेश, अंदर आ जाओ, तुम्हारी इंतजारी कर रहा था। अरे अरे मेरे लाल, अरे बेटा तुम्हारे पीठ में दर्द वर्द तो नहीं है बेटा? बात ही बात है, बाद में करेंगे बेटा, पहले रिंग सेरेमनी। ये लो ये अंगूठी, तुम मेरी बेटी की उंगली में पहनाओ। और बेटी चलो इधर आओ, इधर ये अंगूठी। और ये अंगूठी तुम राकेश बेटे के हाथ में पहनाओ। अरे जल्दी करो, नहीं तो वो बदमाश राकेश आ गया ना, तू एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। हाँ
1: डैडी, डैडी आप क्या कर रहे हैं?
2: लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए।
0: अरे अरे बेटा सुनना क्या है, अरे तुम यही कहना चाहते हो ना कि जिस लड़की से तुम्हारे भाई ने प्यार किया है तुम उससे शादी कैसे कर सकते हो? लेकिन मैं कहता हूँ पहनाओ एक दूसरे को अंगूठी, वरना वरना देखो मेरा हंटर। तकदीर में होता है वो होके ही रहता है। और बेटा राकेश, लड़कियों को रोते सुना था, तुम क्यों रो रहे हो?
2: मैं तो रो नहीं रहा हूँ, ये तो खुशी के आंसू है।
0: खुशी के आंसू? कहते खुशी के आंसू?
2: जी जी, ये खुशी के आंसू है।
0: क्या मतलब?
2: मैं राकेश नहीं हूँ, मैं वही बदनसीब राजेश हूँ।
0: क्या
2: जी? मैं तो बताने आया था कि राकेश 5:30 बजे आएगा।
1: राजेश तुम?
0: मैं चाहता था कि मेरी बेटी की शादी राकेश से हो। अरे शादी तुमसे हो रही है, मेरी किस्मत।
1: आपको क्या फर्क पड़ता है डैडी?
0: क्यों क्यों नहीं पड़ता?
1: एक ही रंग,
2: एक ही रूप,
1: एक ही आवाज।
3: राजेश और राकेश हवा महल में अभी आप V.M. आनंद का लिखा यह प्रहसन सुन रहे थे। इसे निर्देशित किया श्याम सुंदर प्रसाद ने। यह थी आकाशवाणी के पटना केंद्र की प्रस्तुति।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म राज 3 के इस गाने के साथ। इसे गाया है जावेद अली ने, गीत और संगीत राशिद खान का है।

0: सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला और गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: चित्रलोक कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे ब्रेक के बाद।

0: ब्रेक के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आपका फिर से स्वागत है। सुनिए ये संदेश।
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आइए अब सुनते हैं लूडो फिल्म का गाना, जुबिन नौटियाल और ऐश किंग की आवाजों में, गीत संदीप श्रीवास्तव और श्लोक लाल का है, संगीत प्रीतम का।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
3: चित्रलोक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी ही देर में समाचार होंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स को समाधानों का मंच बताया। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर श्री मोदी ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के सभी निष्कर्षों को समयबद्ध कार्यों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ भी मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत को प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो और आभूषण क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने का लक्ष्य रखना चाहिए। इंडोनेशिया के जावा सागर में नौका पलटने से 6 लोगों की मौत, लगभग 130 लापता। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ने चीन के मोकी में जूनियर एशिया कप खिताब जीता और क्रिकेट में महिला T20 एशिया कप के फाइनल में भारत और मौजूदा चैंपियन श्रीलंका के बीच दुबई में मैच जारी। वहीं दिल्ली में T20 श्रृंखला के पहले मैच में भारत और अफगानिस्तान आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है।
1: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रेलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
0: श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इम्पैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वायदों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक सीमित नहीं होने चाहिए।
1: ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियालिटीज बट टूगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन के दूसरे और आखिरी दिन ब्रिक्स सहयोगी देशों के नेताओं का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दो दिनों तक चले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर केंद्रित रहा। इनमें वैश्विक संस्थाओं में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आतंकवाद, शांति और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और सतत विकास जैसे विषय शामिल रहे। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने भविष्य में महामारी से निपटने के लिए बेहतर सहयोग और संक्रामक बीमारियों की समय रहते पहचान के लिए एक साझा चेतावनी प्रणाली विकसित करने का समर्थन किया। पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी नेताओं ने चिंता जताते हुए अधिकतम संयम बरतने, बातचीत और कूटनीति के समस्याओं का समाधान खोजने पर जोर दिया। साथ ही आम नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा की जरूरत पर बल दिया। इसके अलावा ब्रिक्स नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों और उसके हर तरह की गतिविधियों की कड़ी निंदा की। नई दिल्ली घोषणा पत्र से आर्थिक विकास और वैश्विक शासन के क्षेत्रों में ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग और मजबूत होने की उम्मीद है। साथ ही ग्लोबल साउथ की आवाज को भी मजबूती मिलेगी। यह शिखर सम्मेलन वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और बहुपक्षीय सहयोग के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहा। पश्चिम एशिया की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा से यह स्पष्ट हुआ कि ब्रिक्स अब केवल आर्थिक सहयोग का मंच नहीं रहा बल्कि वैश्विक राजनीतिक विमर्श में भी ब्रिक्स की भूमिका लगातार बढ़ रही है। ब्रिक्स टीम के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा कि नई दिल्ली में आज संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कई ठोस और विकास केंद्रित

0: परिणाम निकले। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव सुधाकर दलेला ने नई दिल्ली में कहा कि अलग अलग विषयों पर 50 से अधिक ठोस परिणाम हासिल किए गए। उन्होंने इसे भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की बड़ी कामयाबी बताया।
1: दोनों दिनों की बैठक का उद्देश्य अलग अलग था। कल विशेष सत्र में सदस्यों ने वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद पर सीधे और स्पष्ट विचार रखे तथा नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। आज खुले सत्र में इस सहमति को व्यापक ब्रिक्स परिवार और ग्लोबल साउथ के साझेदार देशों तक पहुंचाया गया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने आज कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। श्री मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्तू तोकायेव के साथ बैठक में आपसी संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अस्सीसी के साथ भी बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान क्षेत्रीय घटनाक्रम और भारत मिस्र की साझेदारी से कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश कई क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करना जारी रखेंगे। श्री मोदी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति आर मार्कोस जूनियर के साथ भी बातचीत की। वहीं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ बैठक में श्री मोदी ने भारत दक्षिण अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी के सभी पहलुओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा की उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। इससे पहले कल श्री मोदी ने इथियोपिया, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम और चीन के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने रूस और ईरान के नेताओं के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र महासचिव से भी मुलाकात की। समाचार कक्ष से देवेंद्र त्रिपाठी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए तीन श्रेणियों में होता है चयन: सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से ये सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने आज मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश में कई बड़े परिवर्तन किए हैं।
6: सरकार ने 12 साल में देश के अंदर कई आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। हमारा देश 2014 में फ्रेजाइल 5 में गिना जाता था, आज टॉप 5 में गिना जाता है। अभी अभी पहली तिमाही के आंकड़े आए, 7.8% का ग्रोथ रेट, हमें सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व भर में बनाकर गौरव के साथ टॉप पर है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में आज श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होंगे। मध्य प्रदेश

0: के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज आगर मालवा से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 40वीं किस्त जारी की। इसके अंतर्गत राज्य की 1,25,00,000 से अधिक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे हस्तांतरित की गई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली के कृषि विज्ञान केंद्रों और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किसानों से बातचीत की। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार कृषि विज्ञान केंद्रों को किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए भरोसेमंद केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय कल से 18 सितंबर तक नई दिल्ली में संयुक्त परिचालन समीक्षा और मूल्यांकन कोर कार्यक्रम आयोजित करेगा। 5 दिन के इस कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को सुरक्षा से जुड़े वर्तमान राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों से अवगत कराना है। अमेरिका ईरान संघर्ष से खाड़ी क्षेत्र में अशांति फैलने के साथ ही इसका असर अन्य क्षेत्रों में भी पड़ रहा है। इसे देखते हुए इस सप्ताह राजनयिक प्रयासों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य और व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए ईरान और खाड़ी देशों की कल ओमान में बैठक होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। इस बीच इस हफ्ते एक बार फिर डिप्लोमेटिक कोशिशों पर नजर है। ईरान और खाड़ी देशों के बीच सोमवार को ओमान में बैठक होने की उम्मीद है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा होगी। ईरान का कहना है कि स्ट्रेट में जहाजों के आने जाने के लिए एक संभावित रूट को लेकर ओमान के साथ उसकी समझ बनी है। इस बैठक से बातचीत का रास्ता खुल सकता है और तनाव कम करने में मदद मिल सकती है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत दोबारा खोलने पर सहमति संभावना कम है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि यह अमेरिका के उसकी शर्तें मानने पर निर्भर करेगा। दुबई से आकाशवाणी न्यूज के लिए मनीष शिवा।
0: इंडोनेशिया में खराब मौसम के कारण जावा सागर में 240 से अधिक यात्रियों को ले जा रही एक नौका पलट गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। करीब 130 यात्री और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल ने अब तक 107 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। तलाश और बचाव अभियान जारी है। भारतीय जूनियर महिला और पुरुष हॉकी टीम ने जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीत लिया है। चीन के मोकी में खेले गए फाइनल में भारतीय महिला टीम ने चीन को 1-0 और पुरुष टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत की महिला और पुरुष दोनों टीम ने जूनियर हॉकी विश्व कप का टिकट भी पक्का कर लिया है। क्रिकेट में T20 महिला एशिया कप का फाइनल भारत और श्रीलंका के बीच दुबई में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12 ओवर में बिना किसी नुकसान के 121 रन बना लिए हैं। उधर दिल्ली में भारत के साथ 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 17 ओवर में 6 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ से 15 जिलों में 48 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।
2: बाढ़ प्रभावित जिलों में 1,251 सामुदायिक रसोई केंद्रों के माध्यम से अब तक करीब 88,54,000 से अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया है। आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को प्रति परिवार 7,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। सुरक्षित आवागमन के लिए 1,688 नावें चल रही हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए SDRF की 27 और NDRF की 10 टीमें तैनात है। पटना से निधिश्री।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल गुजरात में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स को समाधानों का मंच बताया। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर श्री मोदी ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के सभी निष्कर्षों को समयबद्ध कार्यों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत को प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो और आभूषण क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने का लक्ष्य रखना चाहिए। और क्रिकेट में महिला T20 एशिया कप के फाइनल में भारत और मौजूदा चैंपियन श्रीलंका के बीच दुबई में मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले के गाए जुदाई फिल्म के इस गाने के साथ। इसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: वो लिखती है रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: बिल्कुल। वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का गाना। इसे लिखा है वर्मा मल्लिक ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में कस्मे वादे फिल्म का गाना। इसे लिखा है गुलशन बावरा ने, संगीत से सवारा है आर डी बर्मन ने।

0: मेरा सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आइए अब सुनते हैं शायद फिल्म का गाना मन्ना डे और आशा भोसले की आवाजों में।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार, ये प्रोग्राम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: जुदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

0: बजता ही रहा हूं।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आप सभी को रेणु बंसल का नमस्कार। आज हमारी फनकार हैं अभिनेत्री महिमा चौधरी।

0: दोस्तों, ये गाना फिल्म परदेस का था और परदेस महिमा चौधरी की पहली फिल्म थी। वो शोमैन सुभाष घई की खोज है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सुभाष घई जब भी किसी अभिनेत्री को पहली बार हीरोइन बनने का अवसर देते हैं तो उसे एक नया नाम भी देते हैं और ये नाम हमेशा म से शुरू होता है और महिमा के साथ भी यही हुआ। माता पिता का दिया हुआ नाम ऋतु चौधरी घर में ही रह गया और फिल्मों के लिए महिमा मंडित हुआ नया नाम महिमा। लेकिन इस बात की पूरी जानकारी स्वयं महिमा चौधरी के स्वर में।
1: क्रेडिट दे देते हैं कि सुभाष जी ने मुझे नाम दिया, ये मैंने खुद चुना था। उन्होंने जरूर कहा था कि तुम्हारा नाम दे रहा हूँ मैं प्रेस में, तो ऋतु चौधरी ही दूं कि कुछ और रखना है। तब मेरे ध्यान में आया कि अरे नहीं, नाम तो बदला जा सकता है। मुझे वैसे ही ऋतु के नाम से ये हो गया था कि मेरी क्लास में ही चार चार ऋतुस थी, तो एक कंफ्यूजन हो जाता था। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही कॉमन नेम है, आई डोंट बी कंफ्यूज्ड विद एनीवन। मम्मी पापा ने सोचे बगैर ही मेरा नाम ऋतु रख दिया, तो कोई अच्छा सा नाम रखते हैं। मैंने बहुत सारे नाम ढूंढे और अगले दिन जब सुभाष जी को मैंने पढ़ाए तो उन्होंने कहा कि इसमें एम से कोई नाम नहीं है, एम से नाम होना चाहिए क्योंकि एम मेरे लिए बहुत लकी है। मैंने कोई भी नाम, कोई भी फर्म जब शुरू की है, जैसे मुक्ता आर्ट्स फिल्म्स, वो सक्सेसफुल रही है। टेलीविजन पे मैंने दृष्टि शुरू की थी, वो एकदम फ्लॉप हो गई, तो एम से नाम रखो तुम। तो मेरे जो पापा हैं उनके बेस्ट फ्रेंड, उनकी बेटियों का नाम है रिधिमा महिमा। मैंने कहा महिमा कैसा है, ही सेइंग इट्स नाइस, तो फिर हमने महिमा रखा।

0: इंडिया,
1: ये मेरा इंडिया, I love my India।
2: अपने देश से प्रेम करने वाली महिमा चौधरी का जन्म दार्जिलिंग में हुआ था। उनकी पढ़ाई लिखाई भी वहीं हुई। हॉस्टल में रहने से उनमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता शुरू से ही रही। हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ वो नेपाली भाषा भी बहुत अच्छी तरह जानती हैं और बोलती भी हैं।
3: दार्जिलिंग को एकदम याद आउँछ। अन्त जे पनि म आज हुँ त्यो त्यही दार्जिलिङ मा सिकेको। अन्त हाम्रो नेपाली भाइ बहिन को बाटै सिकेको। अन्त मेरो सबै मैनरिजम्स त्यहीँबाट हो। एन्ड टु लभ अल्सो इज आई लर्न फ्रम द नेपालीज पिपल, वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं।
2: महिमा चौधरी शुरू से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, पर उनका करियर फिल्मों में बनेगा ये उन्होंने सोचा भी नहीं था। खैर, शुरुआत मॉडलिंग से हुई और उन्होंने एक शीतल पेय का विज्ञापन किया। बस यहीं से वो लाइमलाइट में आई और फिल्मी दुनिया के दरवाजे उनके लिए अपने आप खुल गए। फिल्म परदेश में गंगा के रोल में उन्हें फिल्मी दुनिया में एंट्री भी मिली और फिल्म की कामयाबी से शोहरत भी मिली और बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का डेब्यू अवार्ड भी उन्हें मिला। फिल्म परदेश के बाद महिमा की बहुत दिनों तक ऐसी कोई फिल्म नहीं आई जो बॉक्स ऑफिस पर वैसी भीड़ जुटा पाती जैसी कि परदेश ने जुटाई थी। लेकिन महिमा के नाम की लगन लोगों को उनकी फिल्में देखने के लिए खींच ही लाती।

महिमा चौधरी की जितनी फिल्म्स अब तक रिलीज हुई हैं, उनमें से ज्यादातर फिल्में मल्टी स्टार कास्ट वाली हैं। फिर भी हर फिल्म में महिमा ने अपने रोल के साथ न्याय तो किया ही है, अपनी अदाकारी के तीरों से देखने वालों को घायल भी किया है।

दिखने में शोक और चंचल महिमा चौधरी स्वभाव से गंभीर हैं। बहुत से लोगों में घिरे रहना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन जब सेट पर आती हैं तो रोल जैसा भी हो उसमें पूरी तरह से डूब जाती हैं। फिल्म ये तेरा घर ये मेरा घर एक ऐसी फिल्म थी जिसमें सरस्वती की भूमिका में उन्होंने लोगों को रुलाया भी तो बहुत हंसाया भी। हंसाते

महिमा चौधरी के संवेदनशील अभिनय से सजी एक और बहुत प्रभावशाली फिल्म थी दिल क्या करे। ये एक ऐसी पत्नी की कहानी है जो अपनी गोद ली हुई बेटी से बेहद प्रेम करती है और नहीं जानती कि उसका पति ही उस बच्ची का जन्मदाता है। लेकिन जब ये राज जाहिर होता है तो जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है।

महिमा चौधरी ने अपने करियर में तरह तरह के रोल्स अदा किए हैं। फिल्मी दुनिया में महिमा चौधरी उन चंद अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं जिन्हें अपने अभिनय को विभिन्न रंगों में

रंगने का अवसर मिला। शुरुआत हुई सन 1997 में फिल्म परदेश से। इस फिल्म में उन्होंने गांव की सीधी साधी संस्कारों में बंधी लड़की गंगा का रोल किया। 1999 में फिल्म आई प्यार कोई खेल नहीं, इसमें एक ऐसे विधवा के रोल में थी वो जिसे अपने पति के भाई से ब्याह रचाना पड़ा। फिल्म धड़कन आई सन 2000 में, इसमें महिमा चौधरी शीतल वर्मा के किरदार में थी। शीतल वर्मा एक ऐसी प्रेमिका जिससे वो प्यार करती है, वो किसी और लड़की के प्रेम में दीवाना है।

महिमा चौधरी के अभिनय से सजी अगर फिल्म लज्जा की बात करें तो इस फिल्म में उनके साथ स्क्रीन शेयर की माधुरी दीक्षित और मनीषा कोइराला ने। इसमें उनका रोल मैथिली का था, सशक्त अभिनय था। मैथिली के रूप में एक ऐसी लड़की जो अपने पिता की इज्जत की खातिर दहेज के लोभियों को बहुत करारा जवाब देती है और शादी के मंडप से उठकर इनकार कर देती है। और फिल्म लज्जा महिमा चौधरी की पर्सनल फेवरेट फिल्म भी है।

बात करें अगर फिल्म बागबान की तो उसमें उनकी स्पेशल अपीयरेंस थी। सलमान खान की वो संस्कारी पत्नी बनी थी और इस रूप में उन्होंने सबका दिल जीत लिया।

महिमा चौधरी की कुछ और फिल्में हैं ओम जय जगदीश, एलओसी कारगिल, सैंडविच, गुमनाम द मिस्ट्री और मुंबई द गैंगस्टर्स। दोस्तों, फिल्म परदेश में स्क्रीन पर महिमा चौधरी ने गाना गाया था जहां पिया वहां मैं। ये तमन्ना उनकी पूरी हुई सन 2006 में, जब उन्होंने आर्किटेक्ट बॉबी मुखर्जी को अपना पिया माना और अपनी गृहस्थी में रम गई। एक प्यारी सी उनकी बच्ची है। श्रोताओं, ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, जो आज केंद्रित था अभिनेत्री महिमा चौधरी पर। प्रस्तुति सहयोग रमेश गोखले का, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता विजय दीपक छिप्पर। अब दीजिए रेणु बंसल को भी इजाजत। नमस्कार। आज के फनकार।

अच्छा है गीत में आज मैं लेकर आया हूँ ऐसे नगमे जिनके दो संस्करण हैं, एक पुरुष आवाज में, दूसरा महिला आवाज में। हमने इन दोनों संस्करणों को किसी मोड़ पर आपस में जोड़ दिया है। नमस्कार, यूनुस खान की ओर से। अंधेरा, घना अंधेरा, आंसू, सर्द आंसू, तन्हाई, बेपनाह तन्हाई, एक सजा है तन्हाई, एक जुल्म, एक मुश्किल दौर।

अफसोस के नगमे, उदास नगमे, क्यों अच्छे लगते हैं सबको ये उदास नगमे? क्यों मुकेश की उदास आवाज हमारी तन्हाइयों की साथी है? क्यों हम तन्हाई में थाम लेना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज का दामन? दो उदास नगमे, दो उदास मौसम।

एक चेहरा, एक मिजाज, एक शख्सियत, कैसे बयां करें कुछ अल्फाज में। शब्दों के मायने छोटे लगने लगते हैं और हर बार

दुनिया के दो अलग अलग छोर, इन अलग अलग हिस्सों में पले लोग बने होते हैं एक दूसरे के लिए। कितनी अजीब बात है, कहते हैं जिंदगी में इत्तेफाक होते हैं और बहुत खुशनुमा इत्तेफाक होते हैं।

छाया गीत में आज थे दो संस्करणों वाले गाने। इन गानों को हमने किसी मोड़ पर आपस में जोड़ दिया था। फिल्मों के नाम आपको बता दें।

0: का दुल्हन इंदीवर कल्याण जी आनंद जी
1: चंदन सबदन चंचल चितवन
0: सरस्वती चंद्र इंदीवर कल्याण जी आनंद जी
1: कभी कभी मेरे दिल
0: कभी कभी साहिर लुधियानवी खयाम आज का छाया गीत इतना ही इजाजत दीजिए यूनुस खान को नमस्कार

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
3: मैं निकला ओ गटले
2: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
2: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी न कोई संदेश।
2: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से हिंदी दिवस के उपलक्ष में आज प्रस्तुत है विशेष रूपक साहित्य कल और आज। दोस्तों हिंदी दिवस केवल हिंदी बोलने या हिंदी में भाषण देने का दिन नहीं है, ये दिन हमें एक छोटा सा सवाल पूछने का अवसर देता है। क्या हम अपनी भाषा से उतना ही प्रेम करते हैं जितनी अपनी भाषा पर गर्व करते हैं? भाषा तभी जीवित रहती है जब वो बोली जाती है, लिखी जाती है, पढ़ी जाती है और अगली पीढ़ी तक पहुंचाई जाती है। 14 सितंबर हमारे लिए केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी लिपि में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इसी ऐतिहासिक निर्णय की स्मृति में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 343 में राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी निर्धारित की गई है। हिंदी की कहानी सिर्फ 1949 से शुरू नहीं होती, उसकी जड़ें तो बहुत गहरी हैं। इतनी गहरी कि उन्हें तलाशते तलाशते हम संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तक पहुंच जाते हैं। समय बदला, बोलियां बदली, शब्द बदले और भाषा भी अपना रूप संवारती गई। ब्रज ने इसे माधुर्य दिया, अवधि ने उसे लोक की आत्मा दी।
1: त्रिपुरा के पतवा सर के डोले मनवा कि हियारा में उठत हिलो।
0: खड़ी बोली ने आधुनिक हिंदी को स्वरूप दिया। उर्दू, फारसी, अरबी, अंग्रेजी और भारत की अन्य भाषाओं से आए शब्दों ने उसके शब्द भंडार को और विस्तार दिया। यही तो हिंदी की खूबसूरती है, वो अपने भीतर बहुत सारी भाषाओं को समेट कर चलती है, इसलिए हिंदी भाषा से बहुत जल्द प्यार हो जाता है।

0: दोस्तों, हिंदी आज हर वर्ग, हर दौर के लिए कितना, कैसे और क्यों आवश्यक है। हिंदी किस तरह समृद्ध है, आइए जानें एक ऐसे साहित्यकार से जो लेखन की दुनिया के हस्ताक्षर हैं, जिन्हें पढ़कर युवा लेखकों की कलम समृद्ध होती है। आप हैं प्रियंवत जी।
1: किसी पीढ़ी के मन से जुड़ने के लिए किसी साहित्य या कहानी की भाषा में कोई बदलाव नहीं किया जाता। पीढ़ी से जुड़ना महत्वपूर्ण नहीं है, ना कि ये कि कहानी या कि साहित्य अपने आप में समर्थ, प्रभावी और विस्तृत हो। भाषा को आप पीढ़ी के हिसाब से या समय के हिसाब से नहीं बदल सकते, बेशक कथ्य को बदल सकते हैं। कथ्य इसलिए बदल जाता है कि समाज बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, राजनीति बदलती है और चीज़ों के विश्लेषण और उसके अर्थ बदलते हैं। यदि नई पीढ़ी इनको समझती है तो वो अपने आप साहित्य से और कहानी से जुड़ेगी, और यदि मुद्दों को नहीं समझती तो वो कुछ भी करने पर इससे नहीं जुड़ेगी। प्रचार और प्रसार तो किसी भी भाषा का तब होता है जब वो रोजी रोटी से जुड़े या कामकाज की भाषा बने, या फिर लोग उस भाषा को स्वयं बनाए और स्वीकार करें, जैसा कि उर्दू के साथ उसने किया और जिसे अब हम हिंदुस्तानी के नाम से जानते हैं। ये वही भाषा है जिसे लोग ने खुद गढ़ा। इसमें विदेशी शब्द भी हैं, इसमें फ्रांसीसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली भी हैं, इसमें बंगला, मराठी भी हैं, संस्कृत के शब्द भी हैं, अवधी, भोजपुरी, ब्रज, इनके शब्द भी हैं। ये भाषा लोक की भाषा है और इसका प्रचार प्रसार अपने आप होता चलेगा। बाकी इसके अलावा सिनेमा ये काम करता है, रेडियो ये काम करता है, दूरदर्शन ये काम करता है, मनोरंजन के साधन ये काम करते हैं जो सब जगह पहुंचते हैं। साहित्य का ये काम मुख्य रूप से नहीं होता और वो ये काम इसलिए करता भी नहीं।

हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने में भारतेंदु हरिश्चंद्र की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है। उन्होंने केवल कविता नहीं लिखी, केवल नाटक नहीं लिखे, बल्कि उन्होंने भाषा को सामाजिक जागरण का माध्यम बनाया। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उनका योगदान बड़ा महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी जैसी पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी में नए विचारों के लिए मंच तैयार किया। उनकी प्रसिद्ध पंक्ति हम सबको याद आती है, निज भाषा उन्नति यह है, सब उन्नति को मूल। आज भी हिंदी के प्रति हमारे दृष्टिकोण को मजबूत बनाती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद भी हिंदी की मशाल बुझी नहीं। सन 1993 में क्वींस कॉलेज वाराणसी के तीन विद्यार्थियों श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह ने हिंदी भाषा साहित्य और देवनागरी लिपि की उन्नति के लिए नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की। नागरी प्रचारिणी सभा के प्रयासों से हिंदी के विकास को नई दिशा मिली। देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार, हिंदी साहित्य के संरक्षण और शब्द संपदा को समृद्ध करने में इस संस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदी के अनेक दुर्लभ ग्रंथों का संग्रह और प्रकाशन हुआ यहीं से। शब्दकोश और साहित्यिक सामग्री तैयार की गई। इस तरह नागरी प्रचारिणी सभा ने हिंदी को केवल बोलचाल की भाषा से आगे बढ़ाकर ज्ञान, साहित्य और विचार विमर्श की सशक्त भाषा बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया। हिंदी के विकास में पत्रकारिता ने बड़ी भूमिका निभाई। उदंत मार्तंड को हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है। इसके प्रकाशक और संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। 1826 को कलकत्ता से इसका पहला अंक निकला। कल्पना कीजिए, उस समय न इंटरनेट था, न सोशल मीडिया, न टेलीविजन। एक छपा हुआ पन्ना ही विचारों को दूर दूर तक ले जाने का माध्यम था। इसलिए हिंदी पत्रकारिता का इतिहास केवल समाचारों का इतिहास नहीं है, ये जागती हुई भाषा और जागते हुए समाज का इतिहास भी है। हिंदी की यात्रा में कितने ही साहित्यकार आए, कबीर, सूर, तुलसी से लेकर मुंशी प्रेमचंद तक का हिंदी में रचा गया साहित्य आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह था। मुंशी प्रेमचंद ने किसान, मजदूर, स्त्री, गरीब और मध्यम वर्गीय जीवन की पीड़ा को साहित्य की आवाज बनाई। गोदान का होरी हो या कफन का संसार, प्रेमचंद ने हिंदी को केवल मनोरंजन की भाषा नहीं रहने दिया, उन्होंने उसे समाज का आईना बना दिया। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान पर फिल्म बनी गोदान, जिसके निर्देशक थे त्रिलोक जेटली। आइए यहाँ पर गोदान फिल्म का गाना सुनते हैं।

इसके बाद हिंदी में आई एक नई संवेदना, महादेवी वर्मा। उनकी लेखनी में करुणा थी, संवेदना थी और स्त्री मन की गहरी अनुभूति। महादेवी वर्मा का एक गीत फिल्म त्रिकोण का चौथा कोण में शामिल था, जिसे बड़े ही सुंदर ढंग से छाया गांगुली ने स्वर दिया और जयदेव का संगीत था।

मैथिली शरण गुप्त ने राष्ट्र और समाज की चेतना को स्वर दिया। रामधारी सिंह दिनकर ने ओज भरा। सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन सब ने हिंदी कविता को अलग अलग रंग दिए और इसीलिए हिंदी साहित्य कोई एक रंग की तस्वीर नहीं, ये तो रंगों से भरी एक विशाल चित्रशाला है। यहाँ आपको सुनवा रहे हैं जयशंकर प्रसाद की रचना, जिसे आशा भोसले ने गाया है।

आज हिंदी भारत की सीमाओं से बहुत आगे पहुंच चुकी है। मॉरिशस, फिजी, सुरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद, टोबैको जैसे अन्य कई देशों में भारतीय मूल के समुदायों के बीच हिंदी की अपनी अहम उपस्थिति है। डिजिटल युग ने तो हिंदी को एक नया आकाश दे दिया। आज मोबाइल के स्क्रीन पर हिंदी पढ़ी जा रही है, हिंदी में ब्लॉग लिखे जा रहे हैं, हिंदी के पॉडकास्ट सुने जा रहे हैं, फिल्में और वेब सीरीज हिंदी में देखी जा रही है। हिंदी किताबों के साथ साथ फिल्मी गीतों में भी सांस लेती है। फिल्मी गीतों ने हिंदी के शब्दों को उन श्रोताओं तक भी पहुंचाया जिन्होंने शायद कभी कविता की किताब भी न खोली हो। और यहाँ हमें याद आते हैं एक ऐसे कवि जिनकी कविता मंच से लेकर सिनेमा तक पहुंची, वो हैं बाल कवि वैरागी। उनके साहित्य में मालवा की मिट्टी की खुशबू थी, लोक जीवन की सहजता थी और शब्दों में आत्मीय मिठास। फिल्म रेशमा और शेरा के लिए उन्होंने लिखा ये गीत।

0: ये गीत केवल एक फिल्मी गीत बनकर नहीं रह गया दोस्तों, उसमें राजस्थान की लोक संस्कृति, प्रेम और प्रकृति का ऐसा सम्मोहन था कि गीत सुनते ही लगता है जैसे रेगिस्तान की रात में चांद उतर आया हो। बाल कवि बैरागी ने दो बूंद पानी, वीर छत्रसाल, क्षितिज, रानी और लालपरी, जादू टोना और अनकही जैसी फिल्मों के लिए भी गीत लिखे। अनकही में उनका गीत मुझको भी राधा बना ले नंदलाल बहुत ही पसंद किया गया। हर दौर में कवियों का कविता के साथ साथ गीतकारी का सफर चलता रहता है और कवि अपनी उपस्थिति दर्ज करते रहते हैं। जाने माने लेखक, फिल्म समीक्षक, गीतकार और लता सुरगाथा के रचयिता यतीन्द्र मिश्र ने अपने विचार साझा किए हैं।
1: जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है, हिंदी में हजारों किताबें आई, थोड़ा सा अगर बढ़ के हम 25 से 30 साल का दायरा करें तो मैंने कुछ कैटेगरीज में विभाजित किया जो मुझे हमेशा प्रेरित करती हैं किताबें। उसमें अगर हम नॉन फिक्शन या कथेतर के लिए जाएं तो मुझे लगता है कि सर्वाधिक जो अच्छी किताबें थी, जिनका आज भी असर है भाषा के स्तर पर, जिनका एक सकारात्मक संदेश है, जो किसी समाज के किसी तबके की या किसी विचार की बात करती हैं, उनमें सबसे बड़ी किताब मुझे लगती है आज भी खड़े हैं तालाब अनुपम मिश्र की, जो जल संरक्षण पर है और जो शायद पहली किताब है उस पर। दूसरी किताब शेखर पाठक की दास्तानें हिमालय मुझे लगती है भाषा के स्तर पर भी और हिमालय को समझने के लिए, उस वनखंड को और उस पूरे पहाड़ को समझने के अर्थ में। और तीसरी किताब जो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगती है वो है स्वदेश दीपक की मैंने मांडू नहीं देखा।
0: क्या बात है।
1: और अगर हम कविता संग्रह पे आए, दो मास्टर पीसेस मुझे लगते हैं, एक केदारनाथ सिंह का टॉलस्टॉय और साइकिल और दूसरा कुंवर नारायण का कुमार जीव, बहुत बड़ा दार्शनिक ढंग का आख्यान है। और बिल्कुल इधर हाल के कुछ वर्षों में प्रकाशित डॉक्टर विनय कुमार की श्रेयसी, जो सरस्वती नदी को आधार बना के ढेर सारी कविताएं उस पर लिखी गई। इसी तरीके से अगर हम चले उपन्यासों की ओर तो मुझे तीन उपन्यास बहुत बहुत समझ में आते हैं। पहला है अलका सरावगी का शेष कादंबरी, दूसरा है अनामिका जी का त्रिनधरी ओट, जो सीता को सीता पत्र लिखती हैं और राम के संदर्भ में पूरा रामायण का आख्यान बताती हैं, और मनीषा कुलश्रेष्ठ का त्रिमाया, जो मातृसत्तात्मक समाज को लेकर के पूरी बात करती है। इसके अलावा और आलोचनात्मक किताबें या नॉन फिक्शन किताबों में मुझे अनंत विजय की मार्क्सवाद का अर्धसत्य बहुत समझ में आती है, इस अर्थ में कि मार्क्सवाद की एनालिसिस है वो, और वो कोई आलोचना नहीं है, लेकिन वो एक पूरे ढंग से

0: पड़ताल करती है, वो सारी बातें दिखाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सोपान जोशी की एक किताब है जल थल मल, और वो पूरी तरह से गांधीवादी रहे हैं और किस तरीके से मैला ढोने को लेकर के पूरी किताब लिखी गई है। दो किताबें मुझे बहुत पसंद आती हैं, हालांकि दोनों हिंदी में अनुवादित हुई और बेहद चर्चित हुई। एक आत्मकथा है बेबी हालदार की, आलो अंधारी, दूसरा हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर का अनुवाद अग्नि की उड़ान, जिसका उर्दू तर्जुमा भी और ऑडियो बुक भी बनाई गुलजार साहब ने परवाज के नाम से। तो मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसी किताबें हैं जो तुरंत याद आती हैं। बाकी दार्शनिक पक्षों को लेकर, राजनीतिक पक्षों लेके बेहद सुंदर किताबें लिखी गई हैं। राम बहादुर राय ने एक किताब लिखी थी रहबरी के सवाल, तो वो किताब है पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से संवाद पर। तो मुझे लगता है कि वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट किताब है, एक बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है पॉलिटिक्स के थ्रू पूरे भारतीय परिदृश्य को समझने का। और वैसे तो हमेशा से जो महान किताबों का मामला है, मैं मैला आंचल, गोदान, राग दरबारी, निर्मल वर्मा की वे दिन, धुन से उठती धुन, मेरी सबसे फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट हिंदी किताब अगर कोई है तो निर्मल वर्मा की डायरी और संस्मरणों की किताब है धुंध से उठती धुन। मैं उसे बिल्कुल गीता या रामायण की तरह, भाष्य की तरह देखता हूँ। और अगर क्लासिक लिटरेचर में चले जाएं तो भारत सावित्री वासुदेव शरण अग्रवाल की जो 3 वॉल्यूम में टीका है महाभारत की, उसे जरूर पढ़ना चाहिए कम से कम नई जनरेशन को, जिसे जेन ज़ी कहते हैं। और उसी तरीके से रामायण का काव्य मर्म या हिंदी भाषा दर्शन की टीका विद्यानिवास मिश्र की पढ़नी चाहिए, और सारी किताबें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पढ़नी चाहिए
1: जी।
0: और राहुल जी की किताब वोल्गा से गंगा, तो ये सब किताबें ऐसी हैं जो हिंदी का परिदृश्य बुनती हैं। और एक बहुत इम्पोर्टेंट किताब है अच्छी हिंदी डॉक्टर रामचंद्र वर्मा की
1: जी,
0: अच्छी
1: जी।
0: हिंदी कैसे सीखें, पढ़ें, समझें, ये बातें। जैसे हम सांस लेते हैं तो जीवन पाते हैं, किताबें पढ़ते हैं तो हमारी सांसें परिष्कृत होती हैं।
1: बिल्कुल। और हमें नैनन में आन बान के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए।
0: नैनन में आन बान मैंने बिल्कुल युवा पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए एक किताब लिखी, उसमें 12 मूर्धन्य शास्त्रीय संगीतज्ञों पर लेख हैं, जिसमें पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर, कुमार गंधर्व, भीमसेन जोशी, केसरभाई केरकर, रसूलन बाई, बेगम अख्तर, उस्ताद अमीर खां, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां के बारे में निबंध है। और 100 पेज का उसमें नोट्स है भारतीय संगीत को, फोक म्यूजिक को, ज्यादातर शास्त्रीय संगीत और सेमी क्लासिकल की बात है। ये समझने की दृष्टि देने के लिए उस किताब के लिखने के पीछे का ध्येय था कि हम गाना सुनते क्यों हैं और गाना सुन के सराहते क्यों हैं। उस किताब को लिखने की प्रेरणा जॉन बर्जर की किताब वेज ऑफ सिंग के ऊपर आधारित है, किस तरह से पेंटिंग को देखना समझना चाहिए, किस तरह से शास्त्रीय संगीत को सुनना चाहिए। और अगर मेरी किताब पढ़ते हुए किसी युवा व्यक्ति में, किसी विद्यार्थी में, किसी संगीतज्ञ में, जो बच्चा सीख रहा है, जो गाने की तैयारी कर रहा है, भले वो प्लेबैक सिंगर बन रहा हो या शास्त्रीय संगीत रागदारी में सीख रहा हो, उसे ये मन कर जाए कि हमें रसूलन बाई की ये ठुमरी सुननी चाहिए, या हमें बड़े गुलाम अली खां का ये दादरा सुनना चाहिए, या हमें पंडित कुमार गंधर्व का ये निर्गुण सुनना चाहिए, तो वो किताब एक रीडर की तरह, एक सहायिका की तरह आपके साथ चलती। और मैं ये जरूर कहूंगा जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा कि किसी भी किताब को, किसी भी कलाकृति को, किसी भी संगीत को, किसी भी सिनेमा को, किसी भी रचनात्मक कार्य को खारिज करने से पहले उसे एक बार देखें, उसे पढ़ते, उसके साथ हम कदम चले, सुनी सुनाई बातों पर, रिव्यू पर, या इसलिए कि फला ने इसकी चर्चा नहीं की तो हमें नहीं देखना चाहिए, इस तरह का कोई निर्णय ना ले। किताबें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, आपके अकेलेपन की साथी, और वो आपको कहीं ना कहीं से संस्कारवान बनाती है।
1: एक अच्छी कविता जब गीत बनती है तो वो किताब के पन्ने से निकलकर लाखों लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। एक ऐसे ही कवि हुए गोपाल दास नीरज, जिन्हें गीतों का राजकुमार कहा जाता था। नीरज के गीतों में ललित काव्य दृष्टिगोचर होता है। नीरज के गीतों में कविता थी, दर्शन था, प्रेम था और जिंदगी को देखने का एक बेहद खूबसूरत अंदाज। फिल्म मेरा नाम जोकर हो या फिर हो प्रेम पुजारी, उनके गाने कालजयी होते हैं। उनके गीत जब हम गुनगुनाते हैं तो हमारे जीवन से जुड़ते हैं। आइए सुने प्रेम पुजारी फिल्म का ये गीत।

0: नीरज का ही लिखा ये गीत आपको सुनवा रहे हैं, जिसने न जाने कितने लोगों को जीवन की क्षण भंगुरता पर सोचने के लिए विवश किया।
1: स्वप्न झरे फूल से।

गीतकार नीरज ने सिद्ध कर दिया कि साहित्य और सिनेमा दो अलग अलग संसार नहीं हैं। हिंदी साहित्य में कुछ कवि ऐसे हैं जिनकी पंक्तियां किताबों से निकलकर जन जन की आवाज बन गई। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन उन्हीं में से एक थे। 1920 और 30 के दशक में हिंदी कविता के मंच पर बच्चन जी की आवाज ने एक अलग ही आकर्षण पैदा किया। उनकी काव्य पंक्तियों में दर्शन था, जीवन का उत्सव भी था और मनुष्य की पीड़ा भी।

वही कृति मधुशाला ने उन्हें घर घर में लोकप्रिय बनाया। मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला। लेकिन डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कविता सिर्फ मधुशाला तक नहीं ठहरी, उनकी कविता अग्निपथ ने संघर्ष और जीवन के प्रति अदम्य विश्वास जगाया। तू न थके गा कभी, तू न रुके गा कभी, तू न मुड़े गा कभी, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। और दोस्तों देखिए कितना सुंदर संयोग है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की यही कविता हिंदी सिनेमा तक पहुंची और फिल्म अग्निपथ के साथ एक नई पीढ़ी की जबान पर चढ़ गई। इस फिल्म में उनके सुपुत्र अमिताभ बच्चन ने मुख्य भूमिका निभाई। यही तो हिंदी की ताकत है, कविता किताब से निकलती है, गीत बनती है, सिनेमा तक पहुंचती है और फिर लोगों के दिलों में बस जाती है। दोस्तों विविध भारती के संग्रहालय में कुछ ऐसे अनमोल मोती हैं जिन्हें हम आप तक आज पहुंचा रहे हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कविता उन्हीं के स्वर में।

0: कार्यक्रम में अब जरा चर्चा कर लें ज्ञानपीठ पुरस्कारों की। आपको जानकारी दे दें, सन 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया, 1972 में रामधारी सिंह दिनकर, 1978 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को मिला ज्ञानपीठ, 1982 में महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 1992 में नरेश मेहता को, 1999 निर्मल वर्मा, 2005 में कुंवर नारायण को मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार, 2009 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को, 2013 में मिला केदारनाथ सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार, 2017 में कृष्णा सोबती को, 2024 में मिला विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार। हिंदी भाषा हमें किताबों से किस तरह जोड़ती है, इन दिनों कौन कौन सी किताबें पढ़ी जा रही हैं, बता रहे हैं एक विलक्षण कथाकार मनोज रूपड़ा।
1: पच्चीस साल का वक्त तो काफी लंबा है, बहुत सारे लोग इसमें हो सकते हैं। अगर मैं ये करूं कि भाई मेरी अपनी जो पसंद है या जो मैंने बहुत मन से जो बहुत गहराई से जिन किताबों को पसंद किया, तो उसमें मंजूर एहतसाम की किताब है बशारत मंजिल, काशीनाथ सिंह का उपन्यास है काशी का अस्सी, फिर रणेंद्र का उपन्यास है ग्लोबल गांव के देवता, और शिवमूर्ति का तो अभी हाल ही में आया है, मतलब बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, फिर भी मैं इन 25 सालों के, क्योंकि वो क्लासिकल उपन्यास है वो।
0: जी जी बिल्कुल।
1: और मैं उन उपन्यासों का जिक्र कर रहा हूँ जो समकालीन होते हुए भी क्लासिकल दर्जा पा चुके हैं। तो शिवमूर्ति का उपन्यास है गम भय दरियाओ, और नासिरा शर्मा का एक उपन्यास है पारिजात। तो ये पांच उपन्यास पसंद के जो मैंने जिक्र किया, और उसके अलावा क्योंकि मेरा अध्ययन जो है ना अनुवादों पर भी बहुत ज्यादा मैं फोकस करता हूँ, तो पांच ऐसी किताबें जो सबको पढ़नी चाहिए, उसमें हंगरी की एक लेखिका है मागदो साबा, उसका उपन्यास है दरवाजा। नॉर्वेजियन राइटर है थारियो वेसास, बहुत प्यारे लेखक हैं, और उसका बहुत खूबसूरत अनुवाद तेजी ग्रोवर ने किया है। उपन्यास का शीर्षक है परिंदे। समरसेट मॉम का उपन्यास है चांद और छह आने, ये कला की दुनिया के बहुत अलग तरह के जो कश्मकश होती है उसका उपन्यास है ये। फिर उसके बाद मार्गो वर्सेस लोसा का उपन्यास है किस्सा वो, और हमारे जो सबसे बड़े इन 25 सालों के बीच के जो अंतराल के जो मास्टर हैं गैब्रियल गार्सिया मार्केस, उनका उपन्यास है एकांत के 100 वर्ष। ये तो सबको पढ़ने चाहिए, मैं ये रिकमेंड करूंगा, इन उपन्यासों को पढ़कर कई तरह के मतलब परिप्रेक्ष्य खुलते हैं।
0: आपने एकांत के 100 वर्ष का जो जिक्र किया मार्केस, तो इसका अनुवाद उमा शर्मा जी ने किया, बहुत ही बेहतरीन किताब है। एक किताब और आपको याद दिला रही हूँ मैं, काला बछड़ा सफेद बर्फ,
1: हाल ही में अनुवादित हुआ है, पढ़ा है मैंने वो भी, मतलब अगर इन 25 सालों में उसको हम रखें तो वाकई वो एक क्लासिकल उपन्यास है। हमारे यहाँ इस तरह की राइटिंग है नहीं, हमारे यहाँ अंदरूनी जो संश्लिष्ट यथार्थ है उसकी जो बारीक परतें हैं उसको खोलने का हुनर अभी तक हमारे लेखक में नहीं है। इसलिए हिंदी के लेखक को खासतौर से वो उपन्यास पढ़ना चाहिए कि अंदरूनी जो परतें होती है यथार्थ की उसको कितनी महीनता से कितनी बारीकी से एक लेखक खोलता है, ये अगर जानना है तो ये उपन्यास पढ़ना चाहिए काला बछड़ा। इसका अनुवाद भी बहुत खूबसूरत हुआ है। मैं तो हमेशा ये मानता हूँ कि एक लेखक का काम सिर्फ लिखना नहीं होता, एक लेखक का काम रचनात्मक माहौल बनाना भी होता है। अगर हम अपना लेखन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अपने बाद के लेखकों के लिए कोई माहौल नहीं बना पा रहे हैं तो हमारा रचना कर्म भी अधूरा, मैं ऐसा मानता हूँ। ये मैंने सीखा है, मेरे से जो सीनियर थे मंजूर एहतसाम, सत्येन कुमार थे, कमला प्रसाद जी थे, इन लोगों ने हमेशा युवा लेखकों को जिनको कुछ भी नहीं आता था, जैसे मैंने लिखना शुरू किया था एक वर्कशॉप में शुरू किया मैंने, वो वर्कशॉप यानी कहानी का एक छोटा सा मतलब एक प्रशिक्षण। अब आप सोचेंगे कि भाई लेखन का भी कोई प्रशिक्षण शिविर होता है, हाँ मैंने प्रशिक्षण शिविर में कहानी लिखना सीखी है, वो युवाओं के लिए था जिन्होंने एक कहानी भी नहीं लिखी थी, पहली कहानी उसमें लिखी गई उस परीक्षा शिविर में। तो हमारे यहाँ परंपरा है मतलब युवा लेखन को प्लेटफॉर्म देने की, ये कोशिश होती रहनी चाहिए।
0: अभी आप सुन रहे थे जाने माने कथाकार मनोज रूपड़ा के विचार। दोस्तों, किताबों से नाता जोड़कर हम समाज से जुड़ते हैं, हम संवेदनशील होते हैं, कल्पनाशीलता का विस्तार होता है। इन दिनों कौन कौन सी जरूरी किताबें आई जिन्हें पढ़ना चाहिए, बता रहे हैं भारतीय प्रशासनिक अधिकारी और जाने माने साहित्यकार कैलाश वानखेड़े। आइए सुनते हैं कैलाश वानखेड़े के विचार।
2: ये एक बेहद मुश्किल सवाल है कि एक किताब का नाम बताया जाए, और भारत में जिस तरह से जटिलता है और जो सामाजिक परिवेश है, मुझे लगता है कि पाठकों ने ओम प्रकाश वाल्मीकि की झूठन नाम की जो आत्मकथा है वो जरूर पढ़ना चाहिए, जिसमें कि भारतीय समाज की जो अंतर्निहित व्यवस्था है और जिसमें जो प्रताड़ना और उपेक्षा के साथ साथ एक संघर्ष का हिस्सा है वो इस किताब में है। और मुझे लगता है कि हर पाठक को भारतीय समाज को समग्र रूप से समझने के लिए जरूरी है कि वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की किताब जरूर पढ़े। उसी तरह से तुलसीराम की मुर्दहिया भी एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है, जो कि हमारे परंपरागत समझ और जो हमें विरासत में मानसिकता मिलती है उसकी जड़ता से प्रहार करने के लिए और समग्र समाज को समझने के लिए जरूरी है कि हम इस किताब को भी जरूर पढ़े। एक भारतीय समाज के उस रूप को और व्यवस्था को उजागर करती है जिससे कि अमूमन सामान्य पाठक अछूता रहता है। इन किताबों को इस लिहाज से पढ़ा जाना चाहिए कि समग्र भारत, समग्र समाज किस तरह से है और उसकी क्या क्या दिक्कतें, परेशानी, संघर्ष और सपने क्या क्या है। सारे पाठकों को हिंदी की किताबें जरूर पढ़ना चाहिए, जो उसकी पसंद सुविधा हो उस दिशा में उन्होंने अपना एक कदम बढ़ाना चाहिए। अपनी पसंदीदा किताब इसी तरह से बनती जाएगी, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, किताबों के संसार में दाखिल होते जाएंगे तो नई नई किताबों का भी उन्हें दर्शन होगा और वो इन किताबों को देख सकेंगे, पढ़ सकेंगे और अपने मानस को समझने के लिए, अपने दृष्टिकोण को व्यापक, उदार और समतामूलक बनाने के लिए वो इस दिशा में जरूर एक प्रभावी कदम उठा सकेंगे। कुछ मराठी साहित्यकार है जिनको कि बचपन के समय में पढ़ा था, वामन निंबाड़कर हो, नामदेव ठसाल हो, मनोहर वाकोड़े हो।

0: या फिर अगर मैं बात करूं दया पवार की, इन लोगों को बचपन और किशोरावस्था में पढ़ा था, बाद में प्रेमचंद से जो है कहना चाहिए कि एक अच्छी मुलाकात हुई, जिनके की समग्र साहित्य को पढ़ा गया, राजेंद्र यादव को पढ़ा, तरह के लेखक रहे हैं जिन्होंने मेरे अपने लिखने और समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हर व्यक्ति को जो है किताब जरूर पढ़नी चाहिए, अपने साथ अपनी यात्रा में किताबों का साथ रहना चाहिए, जब भी मौका मिला वो किताबों के पन्ने उल्टे और उसको पढ़ने में अपना वक्त दे। किताबें सबसे अच्छी दोस्त होती है, उससे दोस्ती जो करेगा वो आदमी, वो इंसान जिंदगी भर व्यस्त रहेगा, खुश रहेगा, यही मुझे लगता है।
1: आप सुन रहे थे भारतीय प्रशासनिक अधिकारी और जाने माने कथाकार कैलाश वानखेड़े के विचार। अब एक ऐसे साहित्यकार के विचार जिन्होंने कहानियां भी लिखी हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, संस्मरण भी लिखे हैं, यात्रा वृत्तांत भी लिखा है और अनुवाद भी किया है, ये हैं उर्मिला शिरीष।
2: हिंदी साहित्य में कहानी कहने के नए माध्यम आ गए हैं। मुझे लगता है कि बदलाव की जरूरत इसलिए है कि आज जो भी पाठक हैं, श्रोता हैं, वो इस तरह के साहित्य की तरफ उन्मुख हो रहे हैं जिसका कट सीधे सीधे भाषा के माध्यम से उनके दिल दिमाग में उतर जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना कसाव होगा कथ्य में और भाषा जितनी रोचक होगी, संप्रेषणीय होगी, उतने ही अच्छे ढंग से किसी भी कहानी को आत्मसात किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाकर और कहानी को यदि हम कहते हैं तो जो मूल कहानी का भाव है वो कहीं ना कहीं बाधित होता है। और मुझे लगता है कि आज के इस बदलाव के समय में जब मीडिया और सोशल मीडिया चारों तरफ हमारे है और हम उन माध्यमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे में हमें कथ्य के कसाव पर, कथ्य पर बहुत ध्यान देना चाहिए और भाषा पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए, जो भाषा सीधे सीधे हमारे श्रोताओं को और हमारे पाठकों को हमारी रचना

0: परंपरा का, दोनों का समन्वय मैं मानती हूं कि होना चाहिए।
1: तो ये थे जानी मानी कथाकार उर्मिला शिरीष के विचार। दोस्तों, हिंदी साहित्य में बहुत सारे ऐसे कवि रहे जिन्होंने कविता के क्षेत्र में प्रतिष्ठा पाने के साथ साथ हिंदी सिनेमा को भी यादगार गीत दिए। कुछ कवि और गीतकारों का जिक्र हमने पहले किया। एक जाना माना नाम है कवि और गीतकार शैलेंद्र, प्रगतिशील कवि और गीतकार जिन्होंने गीत लिखा आवारा हूँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, सजन रे झूठ मत बोलो।

शकील बदायूनी, नक्श लालपुरी, शायरी के साथ साथ फिल्मी गीतों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। कभी प्रदीप का नाम भला हम कैसे

0: लीजिए अब सुनिए उनकी बात, जो पेशे से प्रोफेसर हैं, सुधी पाठक हैं और हैं रेडियो प्रेमी विनीत कुमार।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आकाशवाणी, शुक्रिया ममता जी। पिछले 15-20 साल में जो किताबें जो मुझ पर बहुत असर कर पाई, उसमें सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा तुलसीराम जी की मुद्दैया और मणिकर्णिका, ये दोनों किताबें उनकी आत्मकथा है। और एक तो ये जीवन संघर्ष और जीवटता की किताब है। इसके बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जो तुलसीराम जी के बचपन के जीवन संघर्षों को बताती है। छात्रों को ये किताब हर हाल में, या फिर युवाओं को जो संघर्ष कर रहे हैं करियर बनाने की, छोटे शहरों से आकर बड़े शहरों में जद्दोजहद करें, उन्हें ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि उससे बहुत एक हौसला उनका बढ़ता है, मिलता है। और तुलसीराम ने प्रदेश के जिस छोटे से गांव से अपना सफर शुरू किया और बाद में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर तक हुए, लेखक हुए, पूरी किताब की यात्रा से जब गुजरेंगे हमारे युवा और युवा पीढ़ी के लोग, बहुत हिम्मत मिलेगी। दूसरी किताब आई दातापीर, और पटना की पूरी पृष्ठभूमि पर लिखी हुई सुलभ का ये उपन्यास है। ये किताब इसलिए भी पढ़ी जानी चाहिए क्योंकि इसमें जो भाषा की मिलावट और घुलावट है, आमतौर पर हम भाषा में मिलावट शब्द को बड़े ही निगेटिव, बहुत नकारात्मक ढंग से देखते हैं, कितने अलग अलग खित्ते की भाषा बड़ी ही खूबसूरती के साथ आती है। और ये किताब इसलिए पढ़ी जानी चाहिए क्योंकि गलत और सही की बहस से अलग, कैसे अलग अलग जनपद की भाषा, उसकी बुनावट एक मुकम्मल, एक बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमारे ऊपर असर करती है। तो ये किताब मैं चाहूंगा दातापीर लोग पढ़ें, और मुझ पर असर करती है ये किताब बहुत गहरे जाकर। चौथी किताब रेडियो कोसी, पुष्यमित्र ने लिखी है, पेशे से पत्रकार। रेडियो कोसी के बहाने एक मार्मिक कथा बिहार की तो लिखते हैं, लेकिन साथ ही साथ सोशल मीडिया और न्यू मीडिया के जो थोड़े उजास पक्ष हो सकते हैं, जो उजले उसके रूप हो सकते हैं, और उससे कैसे जिंदगी बेहतर हो सकती है, एक तरफ वो कहानी बताती है और दूसरी तरफ इसके जो स्याह पक्ष है उसकी कहानी बताती है। तो नए लोगों को ये किताब बहुत पसंद आएगी और पढ़ी जानी चाहिए। कविता में ईश्वर और बाजार मैंने काव्य संग्रह जयंतिता क्रिकेटा की पढ़ी है, और जो तार्किक समझ होती है जल जंगल जमीन के बीच की, हमारी जो जिंदगी है उसे किस तरह से बचाया जाना चाहिए, उसके क्या तर्क हो सकते हैं, और कैसे वो हमारे पैदा होने के साथ ही सवालों के साथ ये चीजें जुड़ती है, इसके लिए ईश्वर और बाजार किताब मुझे बहुत पसंद आई। एक आखिरी किताब की मैं चर्चा करना चाहूंगा, तुम चुप क्यों रहे केदार। ये हृदयेश जोशी हैं जो पेशे से पत्रकार रहे हैं, टीवी पत्रकार रहे, और हृदयेश जोशी ने 2013 में जो उत्तराखंड में भारी तबाही हुई, साइक्लोन जाने गई, उस दौरान वो कवर करते रहे और तब से लेकर कई सालों तक बार बार फॉलो अप करते रहे, देखते रहे उस घटना के बाद की जिंदगी को। तो उस सिरे से इस किताब को पढ़ने की जरूरत है, तुम चुप क्यों रहे केदार। और यहाँ केदार एकदम बिल्कुल मानवीकृत रूप में हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं, और लगता है कि जितनी जिंदगी हमें कीमती लगती है, उतनी जिंदगी पहाड़ की भी, जंगल की भी, खेतों की भी, नदियों की भी है, और होनी ही चाहिए।
0: जी क्या बात है, बहुत अच्छा लगा इतनी सारी किताबों का आपने जिक्र किया। यहाँ पर दो किताबें हम भी अपनी ओर से जोड़ दें, एक तो ऋषिकेश सुलभ जी की दातापीर का आपने जिक्र किया, तो उन्हीं की किताब जूठी गली, उन्हीं का उपन्यास है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें कैलाश बानखेड़ी की किताब उजला अंधेरा, ये किताब भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आप खुद एक युवा हैं, तो आप युवाओं और आपसे बाद की जो पीढ़ी आ रही है उनके लिए हिंदी पखवाड़े पर, हिंदी दिवस पर क्या संदेश देंगे, कैसे आप हिंदी से जोड़ना चाहेंगे उन युवाओं को जो पढ़ने से, किताबों से कहीं दूर जा रहे हैं।
1: ममता जी, मैं जिस पेशे से जुड़ा हुआ हूँ, टेलीविजन रेडियो और क्लासरूम के बीच जो मेरी दुनिया है, मैं उनको यही संदेश देना चाहूंगा कि चाहे किसी भी रूप में आप

0: को मीडिया और अभिव्यक्ति दिखाई देती है, लेखन और भाषा के बिना कुछ भी नहीं है। आपके पास भाषा नहीं होगी तो आप दुनिया की तमाम चमकीली चीजों को ऊपरी ऊपरी तौर पर समझ पाएंगे, उसके अंदरूनी दुनिया को आप कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हिंदी की जो पूरी बनने की यात्रा रही है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही संघर्ष है इसमें। मैं चाहूंगा कि रील्स वीडियो और नए माध्यमों की चमक के बीच इसे खोने मत दें, वापस मुड़कर पुस्तकालय की तरफ जाएं, किताबों की तरफ जाएं। लेखक पत्रकारों की लिखी दुनिया भर की चीजें हैं, आप एक बार जरूर देखें
1: जी,
0: उससे गुजरें।
1: बिल्कुल, बहुत बढ़िया बातें आपने बोली हैं, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत जी। आप सुन रहे थे प्रोफेसर और सुधी पाठक, रेडियो प्रेमी विनीत कुमार के विचार, हिंदी साहित्य कल और आज। आप सुन रहे थे ये विशेष रूपक। आज के विविधा कार्यक्रम में जिन साहित्यकारों को हमने शामिल किया उनके नाम हैं प्रियमवद, यतीन्द्र मिश्र, मनोज रूपड़ा, कैलाश वानखेड़े, उर्मिला शिरीष और विनीत कुमार। शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का। संपादन सहयोग मनीषा सिंह। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। तो अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

तन्हा दिल एल्बम से ये गीत अभी आप सुन रहे थे शान की आवाज में, राम संपत का म्यूजिक। प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

स्टेडियम यूएई में भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिन्ह चैनल से बोल रहे हैं, एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 12:22 हुए हैं। हमारे प्रसारण की यह सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में आपसे 8:51 पर पुनः भेंट होगी। तब तक दीजिए अनुमति। शुभरात्रि। जय हिंद।